0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। इस कार्यक्रम में आपने सुना राजेश मिश्रा तथा गीतेश मिश्रा द्वारा गायन राग नटभैरव। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात ओडिशा राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare, and pharmaceutical. External Affairs Ministry said that the Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Senior Congress leader D.K. Shivakumar will be sworn in as the Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavar Chand Gehlot will administer him the oath of office and secrecy at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivakumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the top post. The development marks the culmination of a prolonged power tussle within the Karnataka Congress, with Mr. Shivakumar long seen as a contender for the top post since the party's victory in the 2023 assembly polls. Meanwhile, Congress has appointed senior Karnataka leader Siddaramaiah to its highest decision-making body, the Congress Working Committee CWC. The appointment is being seen as a significant organizational decision by the party leadership as it seeks to ensure stability and coordination within its Karnataka unit during a key political transition. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Shubhendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. To ensure local participation, MLAs have been invited to attend the localized events, and the Chief Minister's main program will be broadcast via video conferencing directly to all block and municipal headquarters. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected president of the 81st session of the UN General Assembly, UNGA. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus's Special Envoy for Multilateralism, Andrea.

श्रोताओं, अभी भाई धर्म सिंह जख्मी तथा साथियों की आवाज़ में आपने ये शब्द सुना और इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से प्रसंग।

एक बार की बात है, निराला जी बहुत दिनों से अपने किसी मित्र के यहाँ नहीं गए थे। बहुत समय हो गया था उन्हें बाहर निकले हुए। वे पूरा दिन निरंतर कुछ सोचते रहते और लिखने में लगे रहते। लेखन ही उनका पहला प्रेम था। समय मिलता तो पुस्तकें पढ़ने लगते। एक दिन वह कुछ लिखने में तल्लीन थे। उनके मित्र को आए काफी देर हो गई थी, पर निराला जी का ध्यान निरंतर लिखने में ही था। मित्र ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, निराला जी कहाँ खोए हुए हो, मुझे कितनी देर हो गई तुम्हारे पास खड़े हुए, तुम्हें अनुमान तक भी ना लगा। मित्र की बात पर निराला जी ने सर उठाकर देखा, मित्र की ओर मुस्कुराकर बोले, हाँ मित्र, मन में कुछ नए विचार थे, उनको एकाग्रता से लिख रहा था, क्षमा करिएगा, तुम्हारी तरफ ध्यान जा ही नहीं पाया। इस पर मित्र बोले, कोई बात नहीं, पर फिलहाल तो आप अपनी लेखनी छोड़िए और मेरे साथ बाहर चलिए। देखिए, बसंत ऋतु आ गई है और बागों में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं कि मन खिल जाए। आप यहाँ घर में घुसे हुए हैं, चलिए चलकर बाहर देखते हैं। रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ मानो ऐसे लगता है जैसे हमारे मन को बुला रहे हों। उसकी बात सुनकर निराला बोले, अभी तो आप ही बाहर जाइए, अगर बाहर जाकर मैं इस समय फूल पत्तियों को निहार कर लिखने लगूंगा तो मेरे हृदय में जो बसंत ऋतु आई हुई है और मेरे मन में जो असंख्य रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं वो तो दबी जाएंगे ना। यह सुनकर मित्र अवाक उनकी ओर देखते रहे और बोले, क्या बात है निराला जी, सचमुच आपका जवाब नहीं। मित्र वहां से चुपचाप चले आए और निराला जी फिर से अपने लेखन में मशगूल हो गए। निराला जी हमेशा लीक से अटहट कर लिखा करते थे। कई बार उन्होंने अपने लेखन में अनोखे प्रयोग भी किए। यही वजह थी कि साहित्य जगत के लोग अक्सर उन्हें विक्षिप्त कहा करते थे। कई बार तो उनके प्रतिद्वंदी उन्हें पागल साबित करने की कोशिश भी करते रहते थे। ऐसे ही एक बार एक घटना हुई। वह इलाहाबाद में अपने एक साथी श्री नारायण चतुर्वेदी जी के पास आकर ठहरे। नारायण जी उस समय सरस्वती पत्रिका का संपादन किया करते थे। उन्हीं दिनों निराला जी ने एक कहानी लिखी थी। वह कहानी उन्हें बेहद पसंद थी। इस कहानी में दो पात्रों के संवादों के लिए उन्होंने अंग्रेजी के महान लेखक शेक्सपियर और दूसरे पात्र के संवाद के लिए संस्कृत के महान रचनाकार कालिदास को चुना था। और साहित्य जगत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लेखक ने बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र के दो किरदारों को एक साथ रखा हो और फिर उनके संवाद साथ में रखे हों। यह कहानी श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने पढ़ी, उन्हें बेहद अटपटी लगी और उसी समय उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने तुरंत मन में ठान ली कि अगर यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित हो जाए फिर तो निराला

0: की जो साहित्य जगत में धूम मची हुई है वह यहीं रुक जाएगी और वह सहजता से विक्षिप्त साबित हो जाएंगे। बस उनका यह सोचना था, उन्होंने उस कहानी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कर दिया और दिन रात परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद उनके पास इतने ढेर सारे पत्रों का अंबार लग गया कि उन्हें समझ ही ना आया क्या करें। उस कहानी पर सबसे अधिक पाठकों के पत्र थे। अब नारायण जी बार बार उस कहानी को पढ़ते और मनी मन दुखित होते कि किस घड़ी में उन्होंने निराला जी की उस कहानी को सरस्वती पत्रिका में स्थान देने का निर्णय किया था। इस तरह से निराला जी साहित्य जगत में पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आपने सुना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से प्रसंग।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस बालकांड भाग 75।

बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस बाल कांड भाग 75। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं संस्कृत समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रशासनेन सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ओएसएम इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एक सदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षः क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे द्वादश कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थम् उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलं आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्याय

0: केरलमाहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात गोवा महाराष्ट्रांध्र प्रदेश तेलंगाना पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडित्पातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अंतिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने आनंद लिया ऐश्वर्य आनंद द्वारा गाए भजनों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग।

दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर और लेकर आ गई हूं आपका पसंदीदा शो गीत भरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:33 और मुझे उम्मीद है कि आपकी चाय की चुस्की जो है वो शुरू हो गई होगी और आज का दिन भी आपका शानदार तरीके से शुरू हो चुका होगा। वैसे शानदार तो होना ही है जब बप्पा का आशीर्वाद हमारे साथ है। बुधवार का दिन है और बप्पा हमारे साथ है, यानी कि गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और फिलहाल के लिए चलिए एक बार और उनका आशीर्वाद।

दोस्तों आज आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जो लोग हैं वो राई का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट हैं? लगता है ना? तो भाई बात तो इतनी सी होती है कि हम सोच समझ कर उसे ब्रह्मांड जितना बड़ा बना देते हैं, लेकिन होती वो छोटी सी प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम का नाम होता है ओवरथिंकिंग। और इसी के जाल में आजकल ना हम सब फंसे हुए हैं। जैसे आप हमेशा अपने आप को देखिएगा कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, जिसका मतलब कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उस फालतू की चीज़ पर इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, वो उसे अलग ही तरीके से प्रोसेस करने लगता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको आपके बॉस ने ईमेल भेजा, तो आप ये सोचते हैं क्यों भेजा, क्या मतलब हो सकता था। या आपने कोई स्टोरी डाली, कोई पोस्ट डाला, कोई स्टेटस डाला, और उस पर किसी ने लाइक नहीं किया जिससे आप उम्मीद कर रहे थे, फिर कहें क्यों लाइक नहीं की, क्या हो सकता है। इसी तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं, जिसका प्रॉपर नाम ओवरथिंकिंग है। तो आज मैं ओवरथिंकिंग के बारे में ही बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में भी कोई ओवरथिंकिंग का कीड़ा दौड़ रहा हो तो फिर आप ज़रा इस बात को गौर से सुनिएगा।

दोस्तों ये बात तो सच है कि आजकल हर कोई कहीं ना कहीं ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा हुआ है। रात में सोने के वक्त में भी लोगों के दिमाग में न जाने कितने विचार उथल पुथल मचाते रहते हैं, और इसी के साथ अगर बात करें तो न जाने कितनी सारी बातें हैं जो दिन भर हमारे दिमाग में छाई रहती हैं। तो इन्हीं से जुड़ी और इन्हीं से बचने का एक तरीका लेकर आपके सामने आई हूँ। आपको एक कहानी सुनाती हूँ इस ओवरथिंकिंग के जाल से बचने के लिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर जो थे वो क्लास में आए, उनके हाथ में पानी का एक ग्लास था। उन्होंने छात्रों से पूछा, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। किसी ने कहा 100 ग्राम, किसी ने कहा 200 ग्राम। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, इसका असली वजन मायने रखता ही नहीं है, मायने ये रखता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूँ। अगर मैं इसे 1 मिनट तक के लिए पकड़ूं तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा, मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो क्या होगा, मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे पैरालिसिस जैसा महसूस भी होने लगेगा। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन मैं इसे जितनी देर तक पकड़े रहूंगा वो उतना ही मुझे भारी लगता जाएगा। कुछ समझ में आया दोस्तों क्या समझाना चाह रही हूँ? हमारी चिंताएं और ओवरथिंकिंग भी ठीक इसी पानी के गिलास जैसी हैं। उनके बारे में थोड़ी देर तक अगर सोचना चाहते हैं तो सोच लीजिए, लेकिन अगर आप दिन भर सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा और आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि भाई ग्लास को नीचे रखना सीखो, टेंशन को बाय बाय करना सीखो और आज की सुबह ही नहीं बल्कि आज के पूरे दिन को, अपने हर पल को एंजॉय करना सीखो। और इसी बात पर एक खूबसूरत गाना तो बनता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरती गौर को और कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गाने ने पक्का मूड तो बना दिया होगा। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग की। कभी सोचा है हम ओवर थिंक आखिर करते क्यों हैं? क्योंकि हम जो है ना अक्सर बीते कल में खोए रहते हैं, उसको बदल नहीं पाते और आने वाले जो कल होता है यानी कि फ्यूचर होता है उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल वैसे भी नहीं है। तो हमारे पास जो हाथ में है वो है आज, उसके बावजूद हम कल और आने वाले कल यानी कि बीते हुए कल

आने वाले कल के बीच इस तरह फंस जाते हैं कि उसके बीच में से चुपके से हमारा आज जो है ना वो निकल के भाग जाता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो बीता हुआ कल है उसे हम बदल नहीं सकते और जो आने वाला कल है उस पर हमारा कोई भी वश है ही नहीं। तो क्यों ना आज में जिया जाए। सैड होने की बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये जो गीत है ना इसमें भी हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हीर भाई क्यों सैड हो तुम।

तो भाई हीर तो बड़ी सैड है, लेकिन उस सैड हीर के चेहरे पर चलिए मुस्कान सजाते हैं। कहते हैं कि प्रिटी वुमन आप भी खुश हो जाइए, यानी कि ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ बदलने वाला आपके जीवन में नहीं है। तो जो जीवन है ना, जो आपके पास अभी है, उसमें मुस्कुराना सीखो। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका दिमाग भी थॉट मशीन बन गया है तो बस लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए और खुद से कहिए जो होगा देखा जाएगा। चलिए आपको थोड़ा और रिलैक्स करने के लिए अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा। वैसे भी अपनी तारीफ सुनना तो हर किसी को अच्छा ही लगता है, और इस गीत में तो भर भर के तारीफ ही की गई है।

और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते आपको यही कहना चाहूंगी कि ऑल इज वेल वाली फीलिंग अपने अंदर जगाइए और आज का मेरा

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवान्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेख

0: बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने

0: मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट

0: congratulates him. And in women's cricket, host England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैनल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मईशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फ्राहमी, तजारत और सरमायाकारी, दवा साजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई, दवा साजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस 3 रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर ममालिक के मंदूबीन, पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने, पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाक़े लोक भवन में जनाब शिवकुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिवकुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इक्तदार के लिए जारी रस्साकशी भी ख़त्म हो गई। जनाब शिवकुमार को 2023 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत के वक्त से ही इस आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। जुमेरात को जनाब सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में वाकई अपनी रिहाइशगाह पर सुबह मुनक़िद होने वाली एक मीटिंग में अपनी काबीना के वज़रा को अपने इस्तीफे के ताल्लुक से बताया था और इस बात का इशारा दिया था कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक जनाब शिवकुमार वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत आज समाजी फलाह बहबूद की एक बड़ी पहल अन्नपूर्णा योजना का आगाज़ करेगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस

0: हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की एक दो रोज़ा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती कौंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दतकार अक्टूबर-नवंबर 2023 और ज़िला तरक्याती कौंसिलों की मुद्दतकार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। ख्वातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को अहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जाँच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में BJP सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने दो तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा SJ शंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में

0: तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरी 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चंद्रिमा मजूमदार द्वारा सरोद वादन राग बिलासखानी तोड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आपने आनंद लिया चंद्रिमा मजूमदार द्वारा।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजर हाँ मैं संदीप कौर। अज दे प्रोग्राम विच असीं तुहानूं सुणा रहे हां एक वार्ता कलम दे तनी प्रेम प्रकाश। वार्ताकार होणगे डॉक्टर पृथ्वी राज थापर। इस तों इलावा असीं सुणांगे लोक गीत। दोस्तो अज विश्व साइकल दिवस है। यह दिन मनाउण दा मकसद साइकल दी महत्ता बारे दस के सेहत अते वातावरण दे फायदियां बारे जागरूक करना है। साइकिल चलाउण दे कई लाभ ने। इस नूं निजमत तौर ते चलाउण नाल शरीर तंदरुस्त अते फिट रहिंदा है अते लोकां विच उत्साह दा संचार करदा है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जागरूकता फैलाउण लई 2018 विच विश्व साइकिल दिवस मनाउणा शुरू कीता सी। साइकिल चलाउण नाल शरीरक अते मानसिक सेहत विच सुधार हुंदा है। रोजाना लगभग अद्धा घंटा साइकिल चलाउणा सानू कई बीमारियों तों बचाउंदा है। निजमत साइकिल चलाउण नाल वातावरण भी प्रदूषित नहीं हुंदा। साइकिल चलाउण नाल दिल अते फेफड़िआं नूं भी मजबूती मिलदी है। सो आओ अज दे दिन साइकिल नूं अपनाइए अते अपनी ते समाज दी सेहत विच बणदा हिस्सा पाइए। मित्रो शरीर दी सेहत दे नाल नाल मन दी सेहत भी लाजमी है। मन दी सेहत लई साडे साहित्यकार सहाई हुंदे ने। इस वास्ते अज असीं तुहानूं सुणा रहे हां इक वार्ता कलम दे धनी प्रेम प्रकाश। वार्ताकार ने डॉक्टर पृथ्वी राज थापर।
1: सन 1962 तो बाद पंजाबी कहानी विच नामना खट्टन वाला प्रेम प्रकाश एक महत्वपूर्ण कहानीकार है। वह मालवे नाल संबंधित कहानीकार है। उस दियां मुढ़लियां कुछ को कहानियां विच मलवई सभ्याचार की झलक मिलती है। उसने बहुता समा शहर विच गुजारिया, इसलिए उसकी रचना विच शहरी सभ्याचार विच विचरदे मध्यवर्गी बंदे दे मानसिक संकट का चित्रण होया है। प्रेम प्रकाश ने कचकड़े नमाजी मुक्ति शवितांबर ने कहा सी, प्रेम कहानियां कुछ अनकहा भी सुनदा खलीफा अते पद्मा दा पैर कहानी संग्रह रच के पंजाबी कहानी विच एक विलखण कहानी दी रचना नू उजागर किया। उसने दस्तावेज नां दा एक नावल रचया, जदकि प्रसिद्धि उसनू कहानीकार वजों ही मिली। उस दीआं कई रचनावां विद्यक अदारियां दे सिलेबस दा हिस्सा हन। कलम दे तनी प्रेम प्रकाश नू वन सुवन्नियां कहानियां दे रचयिता वजों जाणिया जांदा है। जदों उसका कहानी संग्रह मुक्ति प्रकाशित होया तां पंजाबी कहानी एक नवें इतिहासक मोड़ उत्ते पुज गई। उसने कलात्मक खूबसूरती नाल जिंदगी दी विडंबना, पूर्णता अपूर्णता, अखौती नैतिकता, दोगले विहार, खंडित मानसिकता, संस्कारां दी टुट भज आदि विषयां नूं एक वक्खरे नज़रिए तों चित्रिया। उस दीआं कहानियां दी पड़त दसदी है कि वह मनुखी मन दे अमूर्त भावां नूं शब्दां राहीं प्रगटाउण वाला सफल कहानीकार है। विषय ते शिल्प पक्षों जिन्ने तजर्बे कहानीकार प्रेम प्रकाश ने किते उन्ने शायद ही किसी होर कहानीकार ने किते होण। दरअसल उसकी दृष्टि बाहरी जगत के नाल नाल मनुख के आंतरिक जगत नूं चित्रण वल वधेरे रुचित है। उस दीआं नवीं प्रवृत्ति वालियां कहानियां बंदे दे जीवन दीआं अस्तित्वी गहराइयां विच उतरन लई यतनशील हन। कहानी कपाल किरिया दे बिरतांत नूं उसने 6 भागां विच वंड के हर भाग नूं सुरत दा नां दित्ता है। इस दा पात्र अर्ध बेहोशी दी हालत विच अपने अतीत संबंधी चेतना नूं जोड़न दे आहर विच है, जदकि उसकी हर बीती याद नूं कहानीकार सुरत दे सिरलेख राहीं अभिव्यक्त करन दी कला जुगत अपनाउंदा है। हरेक सुरत विच कुछ वाक मोटे अक्षरां विच छापे गए हन। नाल ही कहानीकार प्रेम प्रकाश ने फुट नोट दिता है कि मोटे अक्षरां च लिखी गई गल ही बोली गई है। उसकी यह जुगत अनोखी है क्योंकि अजिहा प्रयोग किसी होर कहानीकार वल्लों कीता गया नहीं मिलता। कही हुई गल नूं मोटे अक्षरां विच पेश करन दा मकसद यही हो सकता है कि वह अपने विषय नूं निरोल यथार्थक रंग देना चाहुंदा है। प्रेम प्रकाश ने कहानी दी रचना संबंधी लिखा है, कोई भी घटना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण हन उस घटना दे प्रतिकर्म जिहड़े समाज च इंसानी रिश्ते बदल दिंदे हन, जिंदगी नूं नवें रूपां च जाहिर करदे हन। मेरी कहानी दा मकसद जिंदगी नूं नंगियां करन वाले वध इंकशाफ करना है। प्रेम प्रकाश दा एक नुकता करतार सिंह दुग्गल दीआं कहानियां नाल मिलदा है, क्योंकि उस दीआं कहानियां मनुखी जीवन दे एक नुकते नूं नहीं सगों मानव नाल संबंधित विराट दृष्टियां नूं पेश करदियां हन। उस दीआं कहानियां विच मानसिक रूप विच अतृप्त पात्र संस्कारां दी अवज्ञा करन लई मजबूर हो जांदे हन। मर्द पात्रां दा स्वार्थी वतीरा उन्हां अंदर समाजिक हदबंदियां पार लंघ जाण दा कारण बनदा है। अजिहे बेपरवाह जां मजबूर पात्र मर्द तों आज़ादी दा भरम पालदे होए परिस्थितियां नूं ही जीवन दा आखरी सच मन लैंदे हन। होंद ते होनी दे दवंद दा शिकार हो के इह नारी पात्र अपनी मानसिक संतुष्टी दी कालना विच पए रहिंदे हन। प्रेम प्रकाश दी कहानी कला दी इह खूबी भी है कि उस दे नारी पात्र मखौटे वाली जिंदगी तों किनारा करके हकीकत वाली जिंदगी जिउण दे राह तुर पैंदे हन। अजोके मनुख दियां अतृप्तियां विचों उपजा तनाव उस दियां कहानियां दा मूल सरोकार बनता है। उस दे मुढ़ले कहानी संग्रह मनुखी जीवन की बदलती जिंदगी दर्शाउण लग पए सन। प्रेम प्रकाश ने स्वजीवनी आत्माया विच अपनी रचना दृष्टि बारे लिखा है, मेरे पहले कहानी संग्रह कचकड़े दे छपन तो पहला ही साहित्यक जगत विच मेरिया कहानियां भी वक्री पछाण मान ली गई सी। इस दा कारण यह सी कि मेरा विरसा पंजाबी साहित्य नहीं सी, सगों उर्दू ते हिंदी साहित्य तो इलावा पंजाब दियां लोक कथावां, देखे गए नाटक, रामलीलावां, किस्सियां दियां कहानियां, पुराण कथावां, रामायण, महाभारत भी मेरे विरसे विच शामिल सन। प्रेम प्रकाश दे कहानी जगत विच पेश दलितां दी मनोस्थिति अते रवायतां दे कठोर यथार्थ नूं वेख्या जा सकता है। उस दियां रचनावां विच औरत पात्रां दी स्थिति दमित पात्रां वाली ही पेश हुंदी है। पार्वती वंग दा टोटा, बापू शवितांबर ने कहा सी, बिंदी परफॉर्मेंस, शोल्डर बैग, दूजा विआह, गोई, टैलीफोन अते सड़कां आदि कहानियां विच अजिहे मजबूर पात्रां दे रूबरू होया जा सकता है। अपनी कहानी रचना नूं बयान करदा प्रेम प्रकाश लिखदा है, पुरानी ते नवी पीढ़ी विचकार फर्क पैण दा एक वड्डा कारण यह भी बनिया कि समाज के व्यक्ति की असल स्थिति नूं समझना औखा हो गया। नवा जहन यह मनन लग पिया कि मैं सर्वग्ञाता नहीं, मैनूं जिन्हां गल्लां दी समझ नहीं उन्हां नूं मैं समझण दा यतन कर रहा हाँ, इसे अमल विच मेरी कहानी पैदा हो रही है। प्रेम प्रकाश की रचना दृष्टि औरत मर्द का विरोधाभास भी पेश करती है। मर्द की औरत उत्ते कब्जे की भावना अते औरत की आज़ाद रहन की जदोजहद कारण तनाव उत्पन्न होंदे हन। उस दियां कहानियां दे पात्र अपनी होंद नूं तलाशदे हन। प्रेम प्रकाश दियां कहानियां विच रिश्तियां विचले मानवी संकट बड़ी बारीकी नाल चित्रे गए हन। इत्थे इह गल महत्वपूर्ण है कि उस दे कहानी संसार दा वधेरे बल इसत्री पुरश दे जनसी संबंधां उत्ते रहा है, क्योंकि इस थीम उत्ते जिन्नी पकड़ प्रेम प्रकाश कोल है शायद उह दूजे कहानीकारां दे हिस्से नहीं आई। इस करके उस दियां वधेरे कहानियां इसे थीम नूं दर्शाउंदियां हन। प्रेम प्रकाश बारे रजनीश बहादुर की यह टिप्पणी होर सार्थक जापती है कि प्रेम प्रकाश सभ्याचार, समाजक, आर्थिक अते विचारगत दबावों अधीन बनते विकसते तिड़कते ते विनसते व्यक्तिगत आपे का कहानीकार है। समाज के वर्जित रिश्तों बारे रचा साहित्य आम तौर उत्ते सब तो वध चर्चा का विषय बनता है। इसकी आलोचना भी सब तो वध हुंदी है। पराई औरत जां पराए मर्द नाल स्थापित संबंधों नूं दर्शाउंदियां कहानियां के मद्देनज़र डॉक्टर धनवंत कौर नूं उह रिश्तों विचले लगाओ की थां रिश्तों विचले रगड़ाओ का कहानीकार वध प्रतीत हुंदा है। प्रेम प्रकाश दियां कहानियां विच जमाती दलित अधीन विचरदे पात्रां की दलित मानसिकता नूं सहजे ही पछाणिया जा सकता है। उस दियां कुछ कु कहानियां जिवें मुरब्बियां वाली, माड़ा बंदा, लक्ष्मी, कोठी वाली, रत्नाकर, कर आदि अजिही पीड़ा का अहसास कराउंदियां हन। प्रेम प्रकाश के पात्रां का मानसिक तनाव मिथिहासक घटनावां नाल जुड़ के सामने आउंदा है। यह तनाव आधुनिक होने के बावजूद परंपरक है। उस दे पात्र लोचदे तां आधुनिक बनना है, पर वह परंपरक रौह रीतां दी घूमन केरी विच फस के दलित मानसिक संकट का शिकार हो जाते हैं। ये पात्र बारी तौर पर आज़ाद दिसण के बावजूद मानसिक तौर पर दलित हैं। इन्हां कहानियां विच जातिगत नालों जमाती दलित दियां समस्यावां वधेरे वापरदियां हन। ये पात्र किसी समाजक, आर्थिक जां धार्मिक कारणां करके दलित नहीं, सगों अस्थिर होंद विचों उपजे तनाव करके दलित होण दा संकट भोगदे हन। इस करके प्रेम प्रकाश की रचना बारे सवाल उठने सुभाविक हैं, पर उसकी स्वजीवनी उसके इंटरव्यू अते कहानियां की पढ़त स्पष्ट कर देती है कि वह एक अजिहा चेतन कहानीकार है जो मनुख के आंतरिक सच में बड़ी सजीवता अते कलात्मक छोहां राही चित्रदा है। भारतीय समाज में जिनसी संबंधों बारे वर्जनावां मनुख अंदर पूर्णता अते अपूर्णता का अहसास करवाउंदियां हन। इसे सच में प्रेम प्रकाश दियां कहानियां बेबाकी नाल पेश कर दियां हन। इस दे बावजूद उस दियां कहानियां विच समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, देश वंड, नक्सली लहर, फिरकूपुने अते पंजाब संकट दे वेरवे मिलते हैं। उस दियां कहानियां दी एक खूबी उसनू एक शाकार कहानीकार वजों उभारदी है। प्रेम प्रकाश दियां कहानियां दी बनतर ते बुनतर पाठक नू अक्सर उस दियां कहानियां नू बार बार पढ़न लई मजबूर करदी है। यह भी उसकी विलखणता है कि हर पढ़त नाल पाठक कहानी की नवी परत अते अर्थां दे रूबरू हुंदा है। अनेक मिथां, अखाणा अते मुहावरियां दी सुयोग वरतों उसकी लेखनी नू सफल रचना वजों पेश करते हैं। वह आप मानता है कि मेरी दिलचस्पी हमेशा उन्हां नाटकां नाल रही है जिहड़े बंदे दे अंदर खेडे जांदे हुंदे ने। उन्हां नू समझदियां ते लिखदियां ही मैनू लगता है कि पात्र की पूरी शख्सियत बाहर निकल रही है। यह विधि मैं बहुत सारिया कहानियों वरतदा हाँ। प्रेम प्रकाश चेतना प्रवाह की जुगत राही पाठ विच रौचकता पैदा करता है। इस पक्षों उस दी कहानियां टाकी ते बंगला पढ़न योग हैं। फैंटसी ते मनोविश्लेषणी जुगत दे नाल नाल तनाव ते टकराव दी जुगत उस दीयां कहानियां दे रौचक पहलू हैं। किधरे तनाव औरत मर्द दे जिनसी संबंधां दा है, किधरे पेंडू ते शहरी संस्कृति दा, किधरे संस्कृति ते धर्म वर्गियां बंदशां कारण टकराव पैदा हुंदा है, किधरे अमीर ते गरीब वर्ग दा अते किधरे परंपरा ते आधुनिकता विचकार तनाव वापरदा है। उह कथा सिरजना दा मुख मकसद मनुख दे आंतरिक बिंब दी पेशकारी नूं मन्नदा है। प्रेम प्रकाश की कहानी विच जटिलता असल विच अजोके मनुखी जीवन की जटिलता नूं ही उजागर करती है। वह मनुख के अमूर्त भावां नूं शब्दां राहीं प्रगटाउण वाला सफल कहानीकार है। उसकी हर कहानी विच धर्म समाज अते संस्कृति दे तर्क मिलते हैं, पर नाल ही पाठक नूं इह सीध भी मिलती है कि समाजिक रौह रीतां तों मुख मोड़ के मनुख नूं मानसिक संताप का भागी बनना पैंदा है। भाषा की पद्धर उत्ते प्रेम प्रकाश की रचना विच विकास वेख्या जा सकता है। उसके मुढ़ले कहानी संग्रहों में मलवई उपभाषा की वरतों हुई है, जबकि मुक्ति कहानी संग्रह तक पुजद्या उसने पेंडू संस्कृति को त्याग के मध्यवर्गी लोगों की मानसिकता को प्रगटाउंदी कहानी की रचना शुरू कर दी। फिर उसकी भाषा भी टकसाली हो गई। सो प्रेम प्रकाश एक अजिहा कलम का धनी लेखक है जिसकी रचना मनुखी मन दी गहराइयां नूं अपने कथा विवेक राही पछाणन का दम भरती है।
0: हुणे असीं डॉक्टर पृथ्वी राज थापर होरां तों एक वार्ता सुन रहे सी, कलम दे तनी प्रेम प्रकाश। ते आओ हुण सुनदियां ए लोक गीत, वे में पाणी भरिंदियां सजरा, जिसनूं आवाज़ दित्ती ए चंद्रकांता कपूर ने।

असी सुन रहे सी ए लोक गीत वे में पानी परिंदियां सजरा। हुण पेश है ए लोक गीत जुगनी जिसनू आवाज़ दित्ती है गुरमीत बावा ने।

असी सुन रहे सी छल्ला। सानू उम्मीद है कि तुसी अज दे प्रोग्राम मिट्टी दी महक नू माणिया होवेगा। तुहानू याद ही होवेगा कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम रोजाना इस वक्त प्रसारित किया जाता है। सो अपने इस मनपसंद प्रोग्राम नाल जुड़ना ना भुलना। इस दे नाल ही मिट्टी दी महक प्रोग्राम का समा खत्म हुंदा है। हुण संदीप कौर नू इजाजत दियो।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को है। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी।

0: स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पूर्व में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूँ आपके साथ अल्पना। और ये जो हमारे पास संदेश आया है वो है झारखंड से, मोहम्मद यसीन का, साइमा का, हसन बाबू अहद का, मिफ्रा का, बेबी और सादिया का। आप शुक्रिया भेज रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ से ये संदेश हमको मिला है, ये संदेश है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का ये संदेश है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजत खुराना और केशुरिदान खुराना। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेमा कॉलोनी महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया साजिद गोविंदपुरा से, अहमदनगर से जुनैद, साहिबा साबिहा और जैनब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सीतामढ़ी से हमारे पास संदेश आया अकरम हुसैन का, बेगम इशरत का, वसीम अकरम का, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम और ममता रानी का ये संदेश है, पूनम कुमारी का संदेश है। और बिहार से मोहम्मद आसिफ और निखत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नंदा हनुमान बोर्डरे से हमारे पास हैं उत्तम और स्वराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और संदेश जो हमें दिख रहा है वो है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, और ये गाजीपुर से संदेश है प्रतीक राय और श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय का। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, फिर लेते हैं अगले संदेश। तो ये गीत हमने चुना है फिल्म ताल से, और अलका याग्निक सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत है, संगीत दिया ए आर रहमान ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

और लीजिए हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके संदेशों के साथ। तो ये संदेश जो मिला है वो मऊ से है, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक अंसारी गाजीपुर से, आज़ाद अली हमारे साथ जुड़े हैं, रिजवान जुड़े हैं और परवीन जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। और साथ ही नमस्कार हमें भेज रहे हैं धनश्री बुराड़ी, अनुश्री, अनिल, और ये हमें संदेश भेज रहे हैं पाडर कावड़ा यवतमाल से, ये हमारे पास संदेश आया है। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया बुलंद शहर से, मोहम्मद सईद का, निखत, परवीन का, शहनवाज का, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरजान, अब्बास और समस्त अब्बासी परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। गुरमीत सिंह मीता और साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ में शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और कर्णव वर्मा हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय जितेंद्र श्रोता संघ परभणी से, महाराष्ट्र से रूपेश संघाई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघाई परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विपुल कांबड़े, मीना, अश्वनी, करुणा और आरसी कांबड़े हमारे साथ जवाहर नगर दुर्ग से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा प्यार भरा संदेश भेज रहे हैं गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगे राम सतौड़ जी, और कह रहे हैं कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है और इसके लिए शुक्रिया आपका। और इसके अलावा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं मोहम्मद सईद अंसारी और उनके समस्त परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़े

एंजल भाटिया, सोनू पप्पी भेजे, पप्पी भाटिया से जुड़े हुए जमशेदपुर से, और भी बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रहे हैं। और ये अगला जो संदेश है वो है हमारे पास अनारकली बाज़ार जगरौन से, कमल का सुनील गव्या और सुचा सिंह जी हमारे साथ हैं और दिल से शुक्रिया भेज रहे हैं। आपको भी दिल से शुक्रिया। और चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि हमने चुना है फिल्म मन से, आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनियां। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
2: हो स्वतंत्र भारत उपवन में लोकतंत्र बासंती आया बनने

0: लगी नीति शासन की, जन जन में उल्लास समाया।
1: जन जन के भावों में उपजी आशाओं की अमर कहानी। ऑल इंडिया रेडियो को फिर नाम दिया आकाशवाणी।

0: 1947 में देश के विभाजन से पूर्व भारत में रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या 9 थी। विभाजन के समय ढाका, लाहौर और पेशावर स्टेशन पाकिस्तान में चले गए। जो 6 रेडियो स्टेशन भारत में रह गए उनके नाम थे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली।
1: स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश नव निर्माण और भविष्य की योजनाओं को बनाने में लग गया। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 नवंबर 1948 को नागपुर में रेडियो स्टेशन का शुभारंभ करते समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था,
2: ब्रॉडकास्टिंग का हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा भारी है और उसके लिए जो योजना हमने बनाई है वो कुछ समय लेगी। उसके लिए इंतजाम करने में हमें बाहर मुल्क से जो सामान सरंजाम मंगवाना है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन सब प्रांतों की ख्वाहिश ये थी कि ये काम जल्दी किया जाए तो उनको बहुत सुविधा होगी। इसलिए एक हमने काम चलाऊ योजना बनाई है और ये योजना के अंदर हमने जो प्रोग्राम रखा था उसमें नागपुर में स्टेशन खोलने का इंतजाम किया।
1: सरदार पटेल ने कहा था कि आज रेडियो लोगों की जीवन की आवश्यकता हो गया है, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए।
2: रेडियो आजकल की जिंदगी में कौम के लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई है, उससे बहुत फायदा पहुंचता है लोगों को और भारत की एकता में भी उसका काफी हिस्सा हो जाता है। इसलिए हम मध्य प्रांत के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आग्रहपूर्वक विनंती करते हैं कि हर जगह पर जहां तक हो सके रेडियो लगाया जाए और देहात के लोगों को फायदा पहुंचे, इसलिए आम जनता में रेडियो सुनने की अनुकूलता की जाए।
0: यूं तो आज रेडियो शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन आरंभिक दिनों में इसका उद्देश्य देशवासियों खासकर युवाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था।
1: 10 जनवरी 1959 को लखनऊ के रंग भवन में आयोजित समाज शिक्षा समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे शिक्षा के प्रसार का सशक्त माध्यम बताया था।
3: साक्षरता का बड़ा महत्व है और उसे बढ़ाना चाहिए, मगर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि साक्षरता के अलावे बिना निरक्षर लोगों को भी हमें आज शिक्षित करना है। शिक्षित शब्द एक तरह से संकुचित भाव में आज इस्तेमाल होता है और उसका अर्थ हम ये मान लेते हैं कि जो आदमी लिख लेता है, पुस्तकों को पढ़ लेता है, वही शिक्षित है। मेरा ख्याल ये है कि बिना लिखे हुए, बिना लिखना जानते हुए और बिना पढ़ना जानते हुए भी मनुष्य को बहुत प्रकार की शिक्षा मिल सकती है जो उसके जीवन के लिए, जो समाज के लिए, जो संसार के लिए लाभकारी होगी। आज तो ये शिक्षण का काम बहुत प्रकार से कुछ आसान भी हो गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से गांव-गांव में सब लोग बैठ करके शास्त्रों की कथा, ग्रंथों का पाठ दूसरों से सुना कर

0: करते थे और केवल कान के द्वारा बिना अक्षर पढ़े हुए, बिना पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किए हुए वो बहुत सी बातें जान लेते थे और सीख लेते थे। और इतना ही नहीं, दर्शन के गूढ़ से गूढ़ तत्व भी ऐसी भाषा में लोगों को बताए जा सकते थे कि जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलती और आसानी से समझाई नहीं जा सकती। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी जो जन साधारण में शिक्षण का काम प्रचारित करना चाहे उसको इस साधन को छोड़ना नहीं चाहिए और उससे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
1: राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इच्छा थी कि रेडियो के माध्यम से लोगों तक केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान भी पहुंचे और वो भी सहज और सरल ढंग से।
0: आपने रेडियो का जिक्र किया, रेडियो तो घर घर में पहुंच सकता है। मैं चाहूँगा कि इन साधनों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाकर शिक्षा देने के ख्याल से कार्यक्रम इनका बनाया जाए और इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए कि जिसमें वो लोग भी जो साक्षर नहीं हैं, जो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, जो समाचार पत्र भी नहीं पढ़ सकते, उनको भी सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकें और हर तरह की बातें वो जान सकें। मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है और शायद जितना समय साक्षरता प्रचार के बाद ज्ञान पहुँचाने में लगेगा उससे बहुत कम समय में इस प्रकार से हम साधारण लोगों के पास दूर से दूर के गांवों में, पहाड़ों में और जंगलों में बसने वाले लोगों तक हम ज्ञान पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि उनके पास हम कथा कहानी पहुंचाया करें, उनके पास जैसे बच्चों को कहानियां कह करके बुलाते हैं उस तरह से कहानियां कह करके उनको हम खुश रखने का प्रयत्न करें। उनको कठिन से कठिन विषय में अगर हम ठीक तरह से समझाएंगे तो उनको हम समझा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज के आधुनिक विज्ञान के युग में विज्ञान की बातें भी आसानी के साथ लोगों को मामूली तौर से बताई जा सकती हैं जिनसे उनको साधारण ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो विज्ञान के तत्वों को समझ सके।
2: स्वाधीन भारत में सूचना शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम बना रेडियो। प्रसारण की महत्ता समझने वाले आकाशवाणी में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके धीरंजन मालवे मानते हैं कि आकाशवाणी केवल सूचना और मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी है। वे इसे जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।
3: लोकतंत्र यानी ऐसा शासन जो जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। ऐसी व्यवस्था की सफलता के लिए जनता में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। ऐसे में आज़ादी के बाद देश के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती उभर कर आई कि जो जनता सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी रहती आई है उसे लोकतंत्र के मूल्यों, भावनाओं और प्रक्रिया में कैसे प्रशिक्षित किया जाए। स्वतंत्र भारत में रेडियो ने इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब देश में केवल 12% लोग साक्षर थे। साथ ही भारत की लगभग 80% आबादी गांव में रहती थी। फलतः प्रिंट मीडिया की पहुंच अत्यंत सीमित थी और रेडियो से अधिक कारगर कुछ नहीं हो सकता था।
1: 1950 में भारत ने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। संवैधानिक व्यवस्था

0: 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन इरविन स्टेडियम में किया गया, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इतिहास की इस अविस्मरणीय घटना को जन जन तक पहुंचाया आकाशवाणी ने।
1: 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन राजपथ पर किया जाता रहा है, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है।

और तालियों की गड़गड़ाहट मिल रही है इस टैंक को और यूनिट को। थल सेना अध्यक्ष के 3 प्रशंसा पत्र, जीओसीएनसी के 2 प्रशंसा पत्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है। पीले रंग का ये टैंक देखने में बहुत ही सजीला लेकिन मारक क्षमता में बहुत ही घातक, और ये सलामी दी नाल झुका करके सैल्यूट करते हुए उस पर जो एक सैनिक है, और ये टैंक दस्ता बढ़ता हुआ धीरे धीरे इंडिया गेट की तरफ सलामी मंच के ठीक सामने, और पहले एक टैंक उसके पीछे 2 टैंक और उस

0: पहली लोकसभा के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। नवगठित सरकार में डॉ. बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। वे 10 वर्षों तक इस पद पर रहे।
1: भारतीय संस्कृति के पक्षधर डॉ. बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर को शास्त्रीय संगीत, गीत भजन और लोकगीत बहुत प्रिय थे। उनका मानना था कि फिल्म संगीत समाज को संस्कारित नहीं करता। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म संगीत का रेडियो से प्रसारण कम करा दिया और शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहित किया।

0: रेडियो से फिल्मी गीतों के प्रसारण बंद होने के फैसले का व्यवसायिक लाभ लेते हुए रेडियो सिलोन ने हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गानों पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया। भारत के रेडियो श्रोताओं पर इसका असर ये हुआ कि वे समाचारों के लिए बीबीसी और मनोरंजन के लिए रेडियो सिलोन सुनने लगे।
1: उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक थे जगदीश चंद्र माथुर। उन्होंने श्रोताओं की नब्ज को समझा और आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों का स्वरूप बदल डाला। उनके समय में आकाशवाणी से अखिल भारतीय स्तर के कई नए कार्यक्रम आरंभ किए गए।
0: 1950 में आकाशवाणी में वाद्य वृंद स्थापित किया गया।
1: आइए सुनते हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को।
2: कि वाद्य वृंद, आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्य वृंद, वो इतनी बड़ा एक वो प्रतिष्ठित एक हमारा एक वो आयोजन वो था कि जब भी कहीं देश में किसी बाहरी देश का राष्ट्राध्यक्ष आते थे, चाहे कनेडी जी आए हों चाहे क्रुश्चेव आए हों, तो आकाशवाणी का वाद्य वृंद जाता था वहां पर, राष्ट्रपति भवन जहां भी है तो वहां पर वो अपनी प्रस्तुतियां करने के लिए। और जब भी कोई राष्ट्रीय किसी तरह का राष्ट्रीय आयोजन हो तो हमारा वाद्य वृंद वहां जाता था। जब मैं था तो ये प्रयास हमने किया कि जो भी कलाकार थे उनको लिया और बाहर से कलाकार लिए और वाद्य वृंद को पुनर्जीवित हुआ। बल्कि एक बार तो वहां जाके एक राष्ट्रीय आयोजन में भी बजाया हमारे वाद्य वृंद में जाकर के, फिर जाकर जो हमारा ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो वहां प्रस्तुति दी, हैबिटेट सेंटर में दो बार प्रस्तुति दी, पूरा सभागार।

बिस्तर भरा हुआ था और 45 लोग जो है करीब करीब 50 लोग सांस लेके तरह तरह के बैठे हैं। वो दृश्य अपने आप में बड़ा अनुपम होता है जब वो भारत को तरह तरह की उसमें नए नए वो प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें एक भारत वाली प्रस्तुति थी कि कैसे वाद वृंद के माध्यम से कश्मीर से लेके फिर पंजाब से लेके चलते चलते और पूरे कन्याकुमारी दक्षिण भारत तक जाना और संगीत के माध्यम से पूरी यात्रा, या फिल्म संगीत क्योंकि 100 साल हुए थे सिनेमा के तो उस पर एक विशेष जो प्रस्तुति थी, लोग दीवाने हो जाते थे, इतनी शानदार वो प्रस्तुति होती थी। और देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में हमारा वाद वृंद गया तो बहुत जगह पर प्रस्तुतियां दी और बहुत सारी प्रशंसा लूट करके वो लोग लाए। उनका समर्पण और उनका उनकी प्रस्तुतियां उसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी एक काम, मतलब आकाशवाणी दिल्ली की एक बहुत बड़ा योगदान इस तरह का था कि उस वाद्य वृंद को एक रिवाइव करना। और यही वो कार्यक्रम था एक बार जब इस वाद्य वृंद की प्रस्तुति में शायद ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ होगा जब भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू दोनों ने वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे सिर्फ आकाशवाणी के वाद्य वृंद को सुनने के लिए। और वो आप सोचिए कि फिल्म संगीत के जो पुरोधा अनिल विश्वास, वो अपना सिनेमा का वो सारा ग्लैमर छोड़ करके और इस राष्ट्रीय उसमें शामिल हुए। इसमें पंडित रविशंकर भी जुड़े थे, इसमें देश के बड़े मूर्धन्य जो है वो संगीत के कलाकार, उन्होंने मतलब कंपोजर के नाते या प्रस्तुति में किसी दूसरे रूप में वो शामिल रहे।

0: जुलाई 1952 में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जुलाई 1953 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स, अक्टूबर 1954 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और अगस्त 1955 में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान माला शुरू की गई।
1: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण शुरू किया गया। साथ ही 15 अगस्त 1956 से नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम, 16 अगस्त 1956 से रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम और 1961 से संसद समीक्षा की शुरुआत की गई। हिंदी वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं दिनों में की गई थी।
0: कार्यक्रमों में इन बदलावों का असर ये हुआ कि देश के करोड़ों श्रोता आकाशवाणी के दीवाने हो गए। केवल श्रोता ही नहीं बल्कि देश के कई विद्वानों, साहित्यकारों, चिंतकों और विचारकों पर भी इन कार्यक्रमों का असर हुआ और वे भी आकाशवाणी से जुड़ने लगे।
1: सुमित्रा नंदन पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपेंद्रनाथ अश्क, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, गोपाल दास, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, अली सरदार जाफरी, आद्य रंगाचार्य शास्त्री, सआदत हसन मंटो, इला चंद्र जोशी, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खुशवंत सिंह, प्रभाकर माचवे जैसे कवियों, शायरों, गीतकारों, नाट्यकर्मियों ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने प्रशंसकों के दिलों में स्थान बनाया।
0: भारतीय श्रोताओं की रेडियो सिलोन के फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रमों में रुचि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी अपना स्वयं का एक मनोरंजन चैनल शुरू करने का फैसला किया।
1: इसकी परिकल्पना की पंडित नरेंद्र शर्मा ने। परिणाम ये हुआ कि रेडियो के श्रोताओं ने 3 अक्टूबर 1957 को एक ऐसा अनाउंसमेंट सुना जिसको सुनकर सभी के दिल झूम उठे। वो घोषणा थी,
0: ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। पंचरंगी यानी पांच रंगों वाले कार्यक्रम। विविध भारती के पांच रंग थे, गीत, संगीत, नाटक, समाचार और साहित्य। विविध भारती के पंचरंगी कार्यक्रम शुरू हुए तो फिर वे छा गए श्रोताओं के दिलों पर। इनमें से कुछ कार्यक्रमों की संगीत में पहचान आज भी श्रोताओं के दिलों में ताजा है।
2: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: सरिता
1: तीन अक्टूबर 1957 को विविध भारती के प्रसारण का शुभारंभ पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे और सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए इस गीत से हुआ।

0: यही वो दिन था जब ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी उद्घोषित किया गया।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से कार्य करते हुए आकाशवाणी से ऊंच नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषाई संस्कृति का भेद किए बिना सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रसारण होता रहा। यही कारण है कि आज देश के हर वर्ग का श्रोता आकाशवाणी को अपना मानता है और इससे जुड़ना चाहता है।
0: आकाशवाणी के विकास और विस्तार की कुछ और रोचक कहानियों और जानकारियों को लेकर हम अगली कड़ी में फिर उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रसारण की प्रतिध्वनिया, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: वाह, ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर? अरे क्यों बैठी है मुंह लटका कर? खेल का टाइम है। कुछ खो गया है क्या?
1: खो ही जाएगा, आने वाले समय में लोग मैप लगा कर ढूंढेंगे। फोन में रास्ता बताने वाली दीदी का काम बढ़ने वाला है।
0: अरे क्या खो गया है?
1: इस बोतल का पानी, जो अब नहीं है। तूने अपनी साइकिल की सीट पर डाल दिया फिजूल में।
0: अरे सीट गर्म हो गई थी।
1: मुझे प्यास लगी है, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
0: अरे तो ला देता हूँ ना पानी।
1: जा ढूंढ, आगे जीपीएस लगेगा तब पानी मिलेगा।
0: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी बाणी है तेरी।
1: याद रखियो, पानी बाणी और कहानी बचा कर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
0: बात तो तेरी काम की लगती है।
1: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में। फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा सा सेव कर, तभी तो मिलता रहेगा सबको वाटर।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा,

0: प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू करेंगे। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका के ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव के मध्य बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India from today. During the visit, she will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi to review the full spectrum of India-Venezuela relations. The two countries will explore avenues for cooperation in key sectors including trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said Ms. Rodriguez will be accompanied by a higher-level delegation including ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology.
2: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
1: Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru. More from our correspondent.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत लीजिए सुनते हैं राग शुद्ध सारंग में गायन। कलाकार हैं उज्ज्वल नागर।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में गायन, कलाकार थे उज्जवल नागर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: आज भी ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं कि मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूँगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस किए हैं, किट नहीं किस फेमस, आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला

0: क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
3: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं। जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को, जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
2: वेस्ट बंगाल्स फॉर्मर रूलिंग पार्टी द तृणमूल कांग्रेस इज इन टर्मोइल एंड ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट। एक्सपेल्ड टीएमसी एमएलए ऋतुब्रत बनर्जी claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift control of the assembly. His faction has already written to Speaker Rathindr Bose asking to be recognized as the real TMC. In a counter move, TMC announced Shobhanandeb Chattopadhyay as the leader of the House, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process.

0: घर आंगन।
1: नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है विश्व साइकिल दिवस। यह हर साल 3 जून को मनाया जाता है। ये साइकिल के अनूठे

लंबे समय तक चलने वाले बहुमुखी उपयोग को उजागर करता है। साइकिल चलाना सेहत के लिहाज से तो फायदेमंद है ही, इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है और मेंटल हेल्थ भी मजबूत होती है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये बहुत जरूरी है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखलाता है जीवन भर स्वस्थ रहना और पर्यावरण को सुरक्षित करना। अब सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जहां पर्दे पर नूतन अपनी सहेलियों के साथ साइकिल चलाती नजर आ रही हैं।

इतने खूबसूरत नगमे हम ले आते हैं आपके लिए, और ये हमारा थोड़ा छोटा सफ़र नहीं है, ये हमारा 90 सालों का सफ़र है आपके साथ। रेडियो आपके हर पल में आपके साथ है। जी हाँ, आकाशवाणी आपका 90 सालों से हम सफ़र रहा है, और आज हम आपको बताएंगे कि आकाशवाणी में फ़ोन इन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। 10 जनवरी 1993 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहली बार फ़ोन इन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जी हाँ, दशकों से चली आ रही एक तरफा प्रसारण व्यवस्था को बदलते हुए श्रोताओं को केवल एक निष्क्रिय सुनने वाला नहीं रहने दिया गया, बल्कि उन्हें प्रसारण का एक जीवंत हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे पहले खत भेजे जाते थे, खत आकाशवाणी पहुंचते थे, श्रोताओं की पसंद के गीत

बजाए जाते थे, श्रोताओं की पसंद सुनी जाती थी। जी हाँ, लेकिन वो तब उनका संवाद नहीं होता था। संवाद शुरू हुआ फोन इन कार्यक्रम से। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, तकनीक, शिक्षा, सरकारी नीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर श्रोता सीधे सवाल पूछने लगे, जिससे सूचना का आदान प्रदान हुआ और भी सटीक हो गया। ये सेवा विशेष रूप से इंटरैक्टिव और युवा केंद्रित प्रसारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस कदम ने रेडियो को अधिक पारदर्शी, संवादात्मक और सहभागी माध्यम में बदल दिया, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें और जान सकें कि आपके मन में क्या है। और यही वादा हम हमेशा से करते आए हैं, आकाशवाणी 90 सालों से आपके साथ।

0: ताजमहल फिल्म की ये रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तंबाकू के खतरनाक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर संजय सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर लोगों तक यह संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी है कि तंबाकू केवल आदत नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है।
1: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि वर्ल्ड नो टोबैको डे क्यों मनाया जाता है।
2: वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रति जागरूक करना है। यह दिन लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित भी करता है। इस बार की थीम है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन।
1: तंबाकू किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है?
2: तंबाकू विभिन्न रूपों में यूज किया जाता है, जैसे कि तंबाकू को सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, गुटखे के रूप में, खैनी, पान मसाला, हुक्का और ई सिगरेट जैसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है।

0: इनमें मौजूद जो निकोटिन व्यक्ति को लत का शिकार बना देता है।
1: तंबाकू से शरीर को किस तरह का नुकसान होता है?
0: तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इससे मुंह और गले और फेफड़ों का कैंसर होता है, हार्ट अटैक स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, सांस की बीमारियां होती हैं, दांत और मसूड़ों की समस्याएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बुरा असर होता है। ये सभी तंबाकू के गंभीर दुष्प्रभाव हैं।
1: क्योंकि मैंने सुना था पहले कहते थे तंबाकू से कैंसर हो सकता है, लेकिन अब हो गया है कि तंबाकू से कैंसर होता ही है, तो 100% कैंसर हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: क्या तंबाकू का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो खुद इसका सेवन नहीं करते?
0: जी हाँ, तंबाकू का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इसका खुद सेवन नहीं करते हैं, जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोक भी कहते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के आसपास मौजूद लोग भी धुएं के जरिए हानिकारक रसायनों के संपर्क में आते हैं और ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है।
1: यानी जो व्यक्ति खुद सिगरेट पी रहा है वो तो नुकसान है ही, आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है।
0: बिल्कुल सर।
1: आजकल युवा पीढ़ी तेजी से तंबाकू की ओर आकर्षित हो रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: युवाओं को समझना होगा कि तंबाकू कोई स्टाइल या फैशन नहीं है, यह धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। स्वस्थ जीवन, खेल, योग और सकारात्मक गतिविधियां अपनाना ज्यादा बेहतर है।
1: जी हाँ, मतलब कहना चाहते हैं आप कि अगर खेल में या गेम जो पसंद है, कोई हॉबी उनकी है, अगर उसमें लग जाए तो स्मोकिंग और सिगरेट से और तंबाकू से दूर हो सकते हैं वो लोग।
0: बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि स्मोकिंग या तंबाकू को यूज करना इस तरह से है जैसे घुन लगना, आदमी के शरीर को अंदर अंदर ये बिल्कुल घुन की तरह खोखला कर देता है, बीमारियां घर कर लेती हैं, ये इसके दुष्प्रभाव हैं, इसलिए तंबाकू को छोड़ना बहुत जरूरी है।
1: अगर कोई व्यक्ति तंबाकू या सिगरेट छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए?
0: अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है, पहले तो उसको इच्छा शक्ति रखें कि वो तंबाकू छोड़ना चाहता है, परिवार और दोस्तों का सहयोग लें, डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लें, तनाव कम करने के लिए योग और व्यायाम करें, तंबाकू की जगह हेल्दी आदतें अपनाएं, और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से एक्यूट लाइन सर्विसेज में भी वो फोन कर सकते हैं, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800112356। इस टोल फ्री नंबर पे वो तंबाकू छोड़ने के लिए सलाह दे सकते हैं।
1: आपने सही बताया, क्विट लाइन नंबर आपने बताया हमारे श्रोताओं को 1800112356, जिस पर सलाह लेकर ये तंबाकू या सिगरेट छोड़ी जा सकती है। वर्ल्ड नो टबैको डे का पखवाड़ा चल रहा है, जैसे कि आपने बताया था कि 31 मई से लेकर 14 जून तक ये गतिविधियां की जाएंगी, तो कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है सर?
0: वर्ल्ड नो टबैको डे फोर्टनाइट के पखवाड़े पे हम विभिन्न तरह की एक्टिविटीज करते हैं, उसमें स्कूलों और कॉलेजों में पोस्टर कंपटीशन कराना, जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे हेल्थ टॉक कराना, स्लोगन लेखन, रैली, शपथ ग्रहण, जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि समाज में तंबाकू के खिलाफ जागरूकता बढ़े। साथ ही एनफोर्समेंट ड्राइव भी की जाती है, जिसमें कोटपा 2003 और दिल्ली एक्ट 1996 के तहत कार्रवाई की जाती है।
1: अंत में श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपके श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आइए हम सब मिलकर तंबाकू मुक्त जीवन का संकल्प लें। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के लिए तंबाकू से दूरी बेहद जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है हमारे श्रोताओं को।
0: दोस्तों याद रखिए, तंबाकू छोड़िए, जिंदगी को अपनाइए, इसी संदेश के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार सर।

0: औतन फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

एफएम गोल्ड से चल रहा है हमारा कार्यक्रम घर आंगन, जो खास महिलाओं के लिए हम लेकर आते हैं। और अभी तंबाकू और सिगरेट सेहत के लिए कितना हानिकारक है, ये डॉक्टर संजय स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ने आपको बता ही दिया। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से जो लोग समझते हैं ना कि फैशन है, ये फैशन नहीं है बल्कि एक बुरी आदत है, और सकारात्मक गतिविधियों से इस पर काबू पाया जा सकता है, जिसमें से एक गतिविधि है योग। जी हाँ, योग के नियमित अभ्यास से शरीर, मन और विचारों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये केवल वजन घटाने का साधन नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की एक पूरी प्रणाली है। और 21 जून को हम विश्व योग दिवस भी मनाएंगे, तो शुरुआत क्यों ना अभी से कर दें। बहुत सारे फायदे हैं योग के, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है शरीर में, मांसपेशियां जो हमारी कैड़ी हो जाती है ना उनका कड़ापन दूर होता है, शरीर का लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, शरीर की ताकत बढ़ती है, बेहतर मुद्रा हमें मिल पाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जिससे बैठने और खड़े होने का जो पोस्चर है वो सुधर जाता है, वजन तो नियंत्रित रहता ही है, तो सबको ही पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो योग इसीलिए करते हैं कि उनका वजन ठीक रहे। सूर्य नमस्कार जैसे गतिशील आसन कैलोरी बर्न करने और मोटापा घटाने में मदद करते हैं, और सभी को पता है कि मोटापा ही सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। अगर आपने वजन को नियंत्रित कर लिया तो समझ लिए बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो गए, पाचन क्रिया में सुधार आता है, वज्रासन और पवन मुक्तासन जैसे आसन गैस, कब्ज और अपच की समस्या को ठीक करते हैं, और मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मानसिक फायदे हैं योग के, तनाव में कमी आती है, प्राणायाम और ध्यान करने से मानसिक तनाव और चिंता और डिप्रेशन भी कम होता है, बेहतर फोकस मिल पाता है, मन शांत रहता है जिससे काम और पढ़ाई में एकाग्रता रहती है, नींद भी अच्छी आती है क्योंकि दिमाग की नसें शांत रहती हैं, अनिद्रा की बीमारी भी दूर होती है, दिल मजबूत होता है, फेफड़ों की क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है, प्राणायाम से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। क्या बताऊँ, बहुत सारे फायदे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर भी है योग। अब देखिए ना, शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, तो क्यों नहीं हमारी महिलाएं घर के समय क्यों नहीं निकाल पा रही हैं। अब देखिए ना, अब आज का प्रोग्राम सुनकर आप लोगों को योग के लिए सोच लेना है कि बस हमें योग की शुरुआत कर देनी है, हमें नहीं सोचना कि आज की बात कल पे डालनी है, आज और अभी से हम योग की शुरुआत करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत भाभी फिल्म से था। अब हम अपने श्रोताओं से इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी चर्चाएं कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम में लेकर आते हैं हम बहुत सारी बातें। अब ये संवाद एक तरफा नहीं रहना चाहिए, आप भी हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। फिर से बता देते हैं, fm

goldgea@gmail.com। आप ईमेल हमें भेजिए प्रोग्राम में क्या चाहते हैं और प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अब हम बात करेंगे बिजली बचाने की। देखिए, पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आज के जो हालात हैं ना, उसमें पर्यावरण जो है वो बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण को बचाया जाए। देखिए ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठंड है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी जो इतनी ज़्यादा हो रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिजली बचाइए, एक आदत बनाइए इसको। बिजली बचाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली और आदत है। जब आप छोटी छोटी बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो बिजली की बचत अपने आप होने लगती है। बिजली बचाने के लिए आप कुछ खास काम, यानी खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटी छोटी आते हैं। कमरा छोड़ते ही बटन बंद कर दें, यानी कि जो स्विच है वो बंद कर दें। कमरे से बाहर निकलते समय वहाँ की लाइट, पंखा और एसी बंद करने की आदत डालनी चाहिए। और इसके लिए दूसरे जो सदस्य हैं घर में, उनको भी कहिए कि जहाँ से निकले अगर एक्स्ट्रा लाइट जल रही है तो उसे बंद कीजिए। अब फैंटम लोड पड़ता है, जिसे आप गैजेट्स लगे छोड़ देते हैं, टीवी को रिमोट से बंद कर देते हैं, मोबाइल को चार्ज होने के बाद चार्जर को स्विच में लगा छोड़ देते हैं, या एसी को भी रिमोट से बंद कर देते हैं। ये स्विच ऑन रहने पर ये जो उपकरण है लगातार बिजली सोखते रहते हैं, इसलिए मेन स्विच बंद करना ज़रूरी है। चार्जर, लैपटॉप, टीवी, माइक्रोवेव के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म होने के बाद जब आपका काम हो जाए तो मेन बोर्ड से स्विच बंद कर दीजिए। देखिए, इस बारे में हमें और भी बातें करेंगे, एक पहले गीत सुन लेते हैं।

शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना। बात चल रही थी बिजली बजाने की, जी हाँ, और उसमें हमने आपको बता दिया कि स्विचेस बंद करने हैं और प्लग को सॉकेट से बाहर निकालना है। एक चीज़ और है, सूरज की रोशनी का सम्मान कीजिए, यानी नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए। दिन के समय कमरों की खिड़कियों के पर्दे खोल कर रखिए ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके और आपको बल्ब या जो रोशनी या आप लाइट जलाते हैं उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। धूप में कपड़े सुखाइए, वॉशिंग मशीन के ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें। आजकल तो गर्मी है, धूप में कपड़े सूख जाते हैं। कपड़ों को धूप में सुखाने की जो आदत है ना, इससे बहुत बिजली बचती है। फिल्टर की सफाई कराइए, अगर एसी आपका है उसकी फिल्टर अगर साफ नहीं है तो भी वो बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं। और फ्रिज में बेवजह जो सामान ठूस दिया जाता है ना कि आप फ्रिज में भरे जा रहे हैं, उससे भी फ्रिज बहुत बिजली खाता है। इसलिए थोड़ी सी जगह खाली रखें ताकि उसमें अंदर एयर सर्कुलेशन यानी हवा घूमती रहे। गर्म खाना सीधे फ्रिज में नहीं रखना है, पहले बाहर ठंडा करना है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे आप बिजली बचा सकते हैं। अब गर्मी के दिनों में एसी को 24 डिग्री पर अगर आप चलाएंगे तो ये आदत बहुत अच्छी है, ताकि जो आप ये तापमान है मानव शरीर के लिए आरामदायक है और बिजली के बिल को भी नियंत्रित रखता है। रात को सोते समय टीवी एसी में स्लिप टाइमर लगाने की आदत डालें ताकि वो रात भर बेवजह चलते ना रहें। कई बार चला हुआ टीवी छोड़ देते हैं, अरे ऐसा नहीं है, आप आदत डालिए कि ये चीज़ें बंद करनी है। सोने से पहले सारा घर एक बार चेक करना है कि कोई बेवजह बिजली तो नहीं चल रही, कोई सॉकेट में कुछ प्लग तो नहीं लगा हुआ। ये आदतें ना सिर्फ घर का बजट सुधारेंगी बल्कि देश में ऊर्जा के संकट को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देंगी।

अनपढ़ फिल्म की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। और अब बात करेंगे गर्मी की, जो इतनी लू चल रही है ना, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों देश के ज्यादातर इलाकों में लू और प्रचंड गर्मी का असर है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कुछ हिस्सों में लू जैसी समस्याओं को लेकर रेड अलर्ट भी हो गया है। गर्मी के चलते बच्चे, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग, बीमार या पहले से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है। इस लापरवाही से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सूती कपड़े पहने, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें अगर आपको बाहर जाना है। गर्मी के चलते अगर थकान हो रही है तो कुछ लोग इसे सामान्य मानकर टाल देते हैं, जबकि ये शरीर के भीतर बिगड़े संतुलन का संकेत हो सकता है। गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे आसान तरीका है स्वयं के स्तर पर बचाव करें, लक्षणों को गंभीर होने से पहले ही रोक दें। अगर गर्मी के चलते चक्कर या बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाना चाहिए। उसे ढीले कपड़े पहनाकर आराम दीजिए, गीले कपड़े लगाएं, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और पंखा भी किया जा सकता है उसके ऊपर। अगर आप सड़क पर हैं तो हाथ से पंखा कीजिए या किसी कागज से थोड़ा सा उसे साइड में ले जाइए। बेहोशी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इतनी गर्मी में अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तेज़ गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें। चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल कम कर दें। ORS और नींबू पानी को पीना भी लाभदायक हो सकता है।

इंसान जाग उठा इस फिल्म में अभी आपने सुना गीता दत्त और आशा भोसले को। बात चल रही थी गर्मी की। अब गर्मी है तो प्यास तो लगेगी ही। अब बार बार प्यास ना लगे और प्यास लगे तो भी पानी पीते रहे, मतलब ये ना सोचिए कि प्यास लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना बहुत जरूरी है। धूप में बाहर निकलते समय सिर को ढक कर रखें, हल्के रंग और सूती कपड़े पहने, दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें, ORS, नींबू, पानी, छाछ ये सब इनको पीते रहें, इनका सेवन करते रहें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अब सावधानी अगर बरती जाएगी तो शरीर जो है आपका सुरक्षित रहेगा। तेज गर्मी जो लू चल रही है ना, उसमें शरीर हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। मौसमी फल खाएं, ताज़ी सब्जियां लें, दही, छाछ, नारियल पानी का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब किसी को कैसे हीट स्ट्रोक लगेगा, ये ना आपको लगता है कई बार, अब हमारे घर की महिलाएं हैं, बच्चा बाहर से ट्यूशन पढ़ के आया, अब पता नहीं चलता कि क्या हुआ, अगर बच्चे को तेज़ सिर दर्द है, कमज़ोरी है, चक्कर आ रहे हैं या तेज़ बुखार है, एकदम से शरीर का तापमान बढ़ गया, वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब डिहाइड्रेशन कैसे होता है, मुँह सूखना, बार बार प्यास लगना, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस करना, अगर इसमें से कोई भी लक्षण है सबसे पहले तो ORS का घोल दिया जाए, नींबू पानी दिया जाए, उसके बाद अगर समस्या ज़्यादा है तो डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। लेकिन लू से बचना बहुत ज़रूरी है, गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है।

इज्जत फिल्म के इस गीत में आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। अपना और अपनों का ध्यान रखें, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, और इस कार्यक्रम से यानी घर आंगन से मुझे यानी राधा पाठक को दें इजाजत। नमस्कार।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
0: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे

0: दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डी के शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also expressed grief over the tragic loss of lives in the fire incident. In a social media post, Ms. Gupta said that immediately after receiving information about the incident, teams of Delhi Fire Services, Delhi Police, District Disaster Management Authority, CATS Ambulance Services and other emergency response agencies were mobilized and launched the rescue and relief operations. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
2: PM Janman Yojana ke tehat janajatiya samuday mein bhi sabse pichle samuh ke 20,000 se adhik gaon tak vikas karyakram ko pahunchane ka lakshya hai. Hum sab jante hain 75 jo groups aur hai PVTG. PVTG sabse pichle abhi bhi koi पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
1: वेस्ट बंगाल फॉर्मर रूलिंग पार्टी द तृणमूल कांग्रेस इज इन टर्मोइल एंड ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट। Expelled TMC MLA Ritabrata Banerjee claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Rathindra Bose asking to be recognized as the real TMC.

0: A counter move, TMC announced Shobhandeep Chattopadhyay as the leader of the House, with Ashima Patra and Nayan Bandyopadhyay as deputies and Farhad Hakim as chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues, observed and scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for Class 12 students. The facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. In a social media post, CBSE informed that payment gateways of SBI, Canara Bank, Bank of Baroda and the Indian Bank are available on the verification and re-evaluation portal for students applying for post-result services. CBSE has clarified that students are not required to hold accounts with any of these banks to complete the payment process. India has surpassed the United States in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. In Karnataka, Congress Legislature Party leader D.K. Shivkumar will be sworn in as the 25th Chief Minister of the state by Governor Thavarchand Gehlot at 5 past 4 p.m. in Bengaluru today. Former Home Minister Dr. G. Parmeshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है दोपहर के 1:10 और ये हुए पूरे 18 सेकंड। स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, ये जो वक्त है ये किस चीज़ का है? ये है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज इस सफ़र में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। तो कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। और जो पहला गाना मैं आपके साथ में यहाँ पर साझा करने वाली हूँ, यही बता देगा आपको कि हमारी आज की फ़िल्म कौन सी है। और वो हमेशा जो मैं पहले आपसे पूछती रहती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि हमारी फ़िल्म कौन सी है, और इस फिल्म से जुड़ी आपकी यादें भी मैं ज़रूर यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहूँगी। तो आप लोग बस इस गाने को सुनिए। इतना ज़रूर बता दूँ कि ये 60 के दशक की फ़िल्म है। चलिए मैं आपको साल भी बता देती हूँ, ये 1966 की फ़िल्म है। तो बस आप इस गाने को सुनिए, और ये भी कि ये फ़िल्म अपने आप में एक पूरा पूरा दस्तावेज़ है एक ऐसे लेखक का जिसने अपनी और अपना नाम साहित्य की दुनिया में बहुत बहुत मकबूल किया। तो बस ये तो बहुत सारे मैंने आपको हिंट्स दे दिए, इन सबको अपने दिमाग में जगह दीजिए और अब इस गाने को सुनकर मुझे बताइए कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ।

जी हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सही समझे, ये फिल्म है तीसरी कसम। तीसरी कसम ना केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और एक निष्कलुष प्रेम का एक ऐसा सिनेमाई दस्तावेज है जिसकी प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती गई। आज इसे भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिना जाता है, जबकि रिलीज के समय ना ये अगर देखा जाए तो कमर्शियली उतनी ज़्यादा सफल नहीं हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की, तो ये जो कहानी है, ये इस फिल्म की कहानी प्रसिद्ध हिंदी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कालजय कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिकता के सबसे बड़े हस्ताक्षरों में माने जाते हैं। उन्होंने बिहार के ग्रामीण जीवन, बोली, लोकगीत और लोक विश्वासों को अपनी रचनाओं में जीवंत किया है, है ना दोस्तों? और अगर आपको बता दें कि ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले लिखा था नबेंदु घोष ने, और इसके संवाद ना स्वयं रेणु जी, जी हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखे थे। इसीलिए फिल्म में ना जो ग्रामीण भाषा और परिवेश की प्रामाणिकता है ना, वो अद्भुत है। अच्छा, आपको ना इसमें एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने कभी गौर किया हो कि इस फिल्म में ना बार बार जो हमारे हीरो हैं, जी हाँ, राज कपूर जी, तो हमारे हीरामन साहब, वो बार बार ना कुछ भी बात होती है तो उसके बाद में इश ऐसा कहते थे। अब ये जो इश कहना है ना, आप इसको भले ही बंगाल से जोड़ें, लेकिन जो पूरा वो जो आंचलिक, वो जो अंचल है ना, वहाँ पर ग्रामीण लोगों के मुँह से इस तरह की बातें ज़रूर निकलती हैं। तो अगर आपने अगर इस फिल्म को नहीं देखा हो तो दोबारा देखिए, और अगर आपने देख लिया हो तो मेरी इश के लिए दोबारा उसको देखिएगा। लेकिन लेकिन अभी हम आपकी बातें भी शुमार करेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रा इन मैडम को सुन लेते हैं, जो बहुत खूबसूरती से क्या कह रही हैं। देखिए।

तो देखिए ये जो खूबसूरत सी नायिका है और बड़ी खनकदार आवाज़ में जो गाना गा रही है, ये कौन है? ये है हमारी फिल्म की नायिका वहीदा रहमान और आवाज़ है आशा भोसले की। तो ये जो फिल्म की हम बात कर रहे हैं, कौन सी है? तीसरी कसम 1966 की बनी हुई और आज हमारी फिल्म ही तीसरी कसम है। और आपसे मैं कुछ पहेली पूछूं और आप उसका सवाल का जवाब ना दें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखिए कितने सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कौन है? ये है सुर संगम रेडियो श्रोता वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसर प्रमिला जी साथ हैं, हमें नमस्कार कह रहे हैं। ये फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पे देखी थी और इनको प्रस्तुति और गीत सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कौन है? ये है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और कह रहे हैं कि हाँ शानदार गीत से आगाज़ किया है, सच बात है, शुक्रिया। फिर ये लिख रही हैं कौन? सुरेश कंगनेजा, पूनम कंगनेजा जी ये लिख रहे हैं कि आपका दिल से धन्यवाद फिल्म तीसरी कसम की कहानी और गीत सुनाने के लिए। फिर ये हैं अनिल मोहन जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, ये लिख रहे हैं इनके साथ हैं उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। एक ही फिल्म के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम फिल्म तीसरी कसम के गीतों को सुन रहे हैं। फिल्म से संबंधित दी जा रही जानकारी बेहद पसंद आ रही है, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारी बधाई अवश्य स्वीकार करें। स्वीकार किया जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और ये हैं प्रोग्राम पेशकर्ता मैडम सोनाली जी, प्यार भरी नमस्कार, आप द्वारा प्रस्तुत फिल्म तीसरी कसम की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है जी, जो जानकारी आप दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, इस फिल्म की कहानी व सारे गीत बहुत बढ़िया हैं जी। ये हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। फिर ये हैं समडिल नवाबारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। ये हैं कमल, ये और पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, सारा गुप्ता परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये हैं वर्णिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और कौन है गांव नथाना से पंजाब से हैं हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी फिल्म तीसरी कसम की और ये सफ़र आप तय कर रही हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ। तो ये जो फिल्म है ना, इसके निर्माता और निर्देशक हम आपको बता दें, तो निर्देशक कौन थे? वो हैं बासु भट्टाचार्य, जो बीमल रॉय के सहयोगी रह चुके थे और ये उनकी पहली डायरेक्शनल वाली फिल्म है ये। उन्होंने फिल्म को अत्यंत संयमित, यथार्थवादी और एक बहुत पोएटिक शैली में ना रचा है। फिर इसके निर्माता थे महान गीतकार शैलेंद्र, जी हाँ उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र जी इस फिल्म के निर्माता थे और यह उनके जीवन की पहली और कहते हैं अंतिम निर्मित फिल्म थी। कहानी से वे इतने प्रभावित हुए थे कि इसे फिल्म बनाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था, लेकिन कहते हैं कि फिल्म की जो ये क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी उस समय, तो इस फिल्म की असफलता ने उन्हें बहुत गहरा आघात पहुँचाया था। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये फिल्म बहुत महान कहानीकार, महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणू के ओरिजिनल उपन्यास मारे गए गुलफाम पर आधारित है। तो आइए अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये एक और गाना।

जी हाँ, मारे गए गुलफाम, ये है इस कहानी का मूल नाम, इस उपन्यास का मूल नाम जिस पर आधारित फिल्म तीसरी कसम की आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस फिल्म के कलाकारों की बात करते हैं तो राज कपूर हैं, जिनका किरदार इस फिल्म में हीरा मन नाम का एक व्यक्ति है उसका है। फिर उसके बाद वहीदा रहमान है, वो हैं हीरा बाई की भूमिका में। इफ्तिखार हैं ठाकुर विक्रम सिंह, ए के अंगल हैं, किशोर मुखर्जी हैं, असीत सेन हैं, दुलारी हैं। अब ना इस फिल्म में चूंकि हीरामन और हीराबाई दोनों के नाम ही एक जैसे हैं, तो एक बहुत प्यारा सा इसमें एक वो वहीदा रहमान का एक बहुत प्यारा सा एक शब्द है जो वो अपने हीरामन को कहती हैं, वो है मीता। मीता इसलिए कहती हैं क्योंकि दोनों के नाम शुरू होते हैं हीरा से, तो क्योंकि दोनों एक नाम है, हम नाम हैं, इसीलिए वो पूरे सफ़र में उनको मीता नाम से बुलाती हैं। मीता मतलब दोस्त। तो ये तो हुआ इस फिल्म के बारे में। अब इस कहानी का जो सार है वो इस तरह का है कि हीरामन ना एक सीधा साधा बैलगाड़ी चलाने वाला इंसान है। उसने जीवन में दो घटनाओं जो हो चुकी हैं उसके जीवन में, उसके बाद उसने दो कस्में खाई हैं। पहला तो ये है कि कोई ऐसा सामान वो अपनी बैलगाड़ी में नहीं ले जाएगा जो प्रतिबंधित हो, क्योंकि वो इस बारे में एक बार जब लेके जा रहा था तो किसी मुश्किल में फंस गया था। तो उसने पहली कसम खाई थी कि अब वो ये प्रतिबंधित किसी भी तरह का सामान अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। दूसरी उसने एक और कसम खाई थी, वो थी कि वो अपनी गाड़ी में कभी भी बांस लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार उसने बांस ढोया तो बांस ढोने की वजह से उसकी गाड़ी का एक और गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट हो गया था, और इस वजह से उसने दूसरी कसम खाई थी। कौन सी? कि मैं बांस वाली कोई भी चीज़ अपनी गाड़ी में नहीं ढोऊंगा। तीसरी कसम क्या थी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले

आपको बता दूं कि वो तीसरी कसम खाने तक की नौबत क्यों आती है। वो इसलिए आती है कि एक दिन उसे नौटंकी में नाचने वाली मतलब नर्तकी हीरा बाई को मेले तक पहुंचाने का काम मिलता है। लगभग 30 घंटे की का ये सफ़र है और इसमें दोनों के बीच ना एक बहुत प्यारा सा दोस्ताना आत्मीय रिश्ता बन जाता है। हीरामन हीराबाई को एक देवी की तरह देखता है जबकि समाज उसे एक नर्तकी स्त्री के रूप में देखता है। यही सीना फिल्म प्रेम, सामाजिक दृष्टि और मानवीय गरिमा का मार्मिक आख्यान बन जाती है। और अंत में जो हीरामन जो एक कसम खाता है वो यही होता है कि वो कभी भी अपनी गाड़ी में किसी भी नर्तकी को नहीं लेके जाएगा। ये उसकी तीसरी कसम होती है। लेकिन वो इस तक पहुंचता कैसे है, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगी और आपकी मेल्स भी ज़रूर अपने साथ लूंगी। लेकिन उसके पहले ये बहुत प्यारा सा एक गाना है जो अगर आपने कभी देखा हो तो बहुत क्यूट सा गाना है और इसको आप देख के दुल्हनों की आपको ज़रूर याद आ जाएगी। तो आइए सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम का ये एक और गीत।

तो आपको ये गीत याद है? हाँ, बैलगाड़ी में एक नई नवेली दुल्हन जा रही है, पीछे पीछे पूरे बच्चों की एक टोली उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी में जा रही है। तो ये है फिल्म तीसरी कसम। और अब मैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों की मेल शामिल करती हूँ। तो ये हमारे साथ कौन है? जी हाँ, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। फिर ये है अजीत भावसार जी, वीरम गाँव गुजरात से, और लिख रहे हैं कि प्रिय आरजी होस्ट सोनाली जी नमस्कार, और राज कपूर और गीतकार मित्र शैलेंद्र ने बनाई है, इस बारे में भी लिख रहे हैं, शुक्रिया। फिर ये कौन है? ये हैं, अरे वाह, आपने तो बहुत सारी जानकारी इसमें लिख दी है जो मैं धीरे धीरे आपको बताने ही वाली थी। तो इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कौन है? ये हैं जिन्होंने हमें पूरी जानकारी से भरी हुई मेल दी है, वो गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये हैं कौन? ये हैं चिरमिरी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालंदरी लहरे, और इन्हें वो गीत बहुत पसंद आया, कौन सा? मारे गए गुलफाम जी, धन्यवाद। ये हैं ग्राम नागरकोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, और लिख रहे हैं कि इन्हें रोचक जानकारी और मधुर गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। रोहित वशिष्ठ जी लिख रहे हैं, सर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी, हम तीसरी कसम की बात कर रही हैं, तीसरी मंजिल की नहीं। और लेकिन आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये हैं प्रेम सागर, शुभ लता, ये हैं खजाने गेट अमृतसर से, खजाना गेट अमृतसर से। फिर हैं ये भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये दतरेंगी से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर ये हैं गंज गुंडवारा से, रामसुल, कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, अनु खान, और लिख रहे हैं सोनाली जी आदाब, और इन्हें कहानी और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, और आपको भी मेरा आदाब। फिर ये कौन है? ये हैं मारे गए गुलफाम उपन्यास से बनी फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र ने बनाई थी, ये है, अच्छा हम ले चुके हैं, ये हैं सुरसंगम रेडियो श्रोता ग्रुप। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसके निर्देशन की विशेषताओं की, तो चलते आपको ये भी बता दूं कि भासु भट्टाचार्य ने फिल्म को मेलोड्रामा बनने नहीं दिया, उन्होंने ना कैमरा पात्रों का पीछा नहीं, उनका जो कैमरा है वो ना कैरेक्टर्स के पीछे पीछे नहीं जाता, उनके साथ चलता है, और ना संवादों से अधिक उन वहाँ पर इस कहते हैं कि संवाद से ज़्यादा मौन बोलता है इस फिल्म में। जी हाँ, जो बातें बोलकर नहीं की जाती उससे ज़्यादा अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से हमारे कलाकारों ने इस फिल्म में अपने आप को बोला है, अपने आप को जाहिर किया है। फिर ना एक चीज़ और भी है कि इसमें ना कहते हैं कि निर्देशन की विशेषताओं में एक चीज़ और आती है कि आप किस तरह से प्रेम को दर्शाते हैं, तो इसमें ना प्रेम को व्यक्त नहीं किया जाता, इसमें प्रेम को महसूस कराया जाता है। पूरा जीवन इस फिल्म में जो है वो एक लोक जीवन की लय में बहता हुआ चलता है हमारे साथ। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के उस दौर में बनी जब भव्यता और नाटकीयता का बोलबाला था, इसीलिए इस फिल्म की जो सादगी है ना, ये सादगी इस फिल्म की क्रांतिकारी चीज़ मानी गई थी। तो अब हम आपको इस फिल्म का वो गाना सुनाते हैं जो इस फिल्म का बहुत ज़्यादा ही फेमस गाना है और हमें भी बहुत पसंद है, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

देखिए, गाना तो इतना ज़्यादा सबको पसंद किया जाता है, सबके द्वारा पसंद किया जाता है कि इसके बारे में क्या बोले। बैकग्राउंड भी बज रहा है, मैं आपको इसके फिल्म के बारे में दो तीन बातें और बताना चाहूँगी। देखिए, इस फिल्म में ना कभी हीरो को एकदम हीरो जैसा नहीं बताया गया, उसे बहुत एक सामान्य इंसान की तरह दिखाया गया है। इस फिल्म में भी ना, इस गाने की पिक्चराइजेशन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो राज कपूर बड़े आराम से आते हैं, ढफली उठाते हैं और ढफली बजाना शुरू कर देते हैं एक आम इंसान की तरह। तो ये इस फिल्म की खासियत है। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे दोस्त हैं, ये हैं पुंजाली नवाकर, रोजी डिकोस्ट्रा और धर्मेंद्र छिपा। ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसे गाया है मन्ना डे ने और उनके साथ हैं उनके बहुत सारे साथी कलाकार। हमारे साथ धर्मेंद्र छिपा जी जुड़े हुए हैं, कपिल छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। और देखिए, वक्त ना बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो मैं आपको फटाफट आपके नाम बता देती हूँ। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। फिर उषा मोहन जी हमारे साथ जुड़ी हैं और रोडी, मैंने आपको बता दिया, रोजी डी कास्ट्रो जुड़े हैं हमारे साथ, पर्ल डिकैस्ट्रो, जॉन डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिर अजीत भावसार जी हमारे साथ हैं, स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाने वाली हूँ जो अलग ही जॉनर का है, एक अलग ही तरह का है। बता दूँ आपको कि संगीत दिया है संगीतकार शंकर जय किशन ने, शैलेंद्र के बोल हैं हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने साथ में इसके गीत लिखे हैं। और इसका जो अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के कुछ रोचक तथ्यों की, तो वो यही है कि इस फिल्म में ना कहते हैं कि राज कपूर ने सिर्फ 1 रुपया का अपना पारिश्रमिक लिया था और मूल कलाकार राज कपूर और वहीदा रहमान नहीं थे। शुरुआत में महमूद और हीराबाई, पहले हीरामन के रोल के लिए महमूद और हीराबाई के लिए मीना कुमारी पर विचार हुआ था। फिर उसके बाद में राज कपूर और वहीदा रहमान चुने गए। रिलीज के समय दर्शकों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था और बाद में लेकिन इसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया और ये बहुत खूबसूरत फिल्म है।

दोस्तों, घड़ी की सुइयां लगातार इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि कार्यक्रम का सफर यहीं पर खत्म करना होगा हमें। लेकिन इस गाने के साथ आपको छोड़ूंगी। आपको बता दूं कि इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म का 1966 में, और अन्य सम्मान इसको मिले हैं बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और इसे मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी नामांकन मिला था। तो ये थी आज की फिल्म तीसरी कसम। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे पंजाबी में।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं रमेश लाल। पहला चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच एकीकृत कबायली विकास एजेंसियां अते एकीकृत कबायली विकास प्रोजेक्टां नूं मजबूत करन बारे राष्ट्रीय सम्मेलन दा उद्घाटन कीता। दिल्ली दे मालविया नगर विच अज एक होटल विच अग लगन कारण 21 लोकां दी मौत। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत लड़ी की परिभाषा अते सीमा तय करने संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा करने लई एक उच्च पदरी माहर कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस के डीके शिवकुमार अज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे अते भारत अमरीका नूं पिछे छड्डदिआं सालाना सूरजी ऊर्जा समर्था वाधे विच 2025 तक दुनिया का दूजा सब तो वड्डा सूरजी ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच एकीकृत कबायली विकास एजेंसियां अते एकीकृत कबायली विकास प्रोजेक्टां नूं मजबूत करन बारे राष्ट्रीय सम्मेलन दा उद्घाटन कीता। इस मौके राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर दे कबायली भाईचारे सभ्याचारक तौर ते अमीर ने अते उनां दे विकास नूं अगे वधाउण लई यतन करने चाहीदे ने। उनां जोर दे के कहा कि विकास देश दे हर पिंड अते व्यक्ति तक पहुंचना चाहीदा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने चिंता प्रगट की कि कुछ कबायली भाईचारे अजे भी वख-वख सरकारी योजनावां तों अनजाण ने। यह समागम जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 दे तहत कीता जा रहा है। यह सम्मेलन देश भर विच कबायली विकास लई जिम्मेवार संस्थागत प्रणालियां नूं मजबूत करन ते केंद्रित होवेगा, जिस विच शासन सुधार, तालमेल विधि अते तकनालोजी आधारित सेवा प्रदान करना शामिल है। कांफ्रेंस विच 26 राज्यां अते 4 केंद्र शासित प्रदेशां दे प्रतिनिधि हिस्सा लै रहे ने। अज सवेरे दिल्ली दे मालविया नगर विच एक होटल विच अग लगन कारण 21 लोकां दी मौत हो गई अते 40 होरां नूं बचा लिया गया है। दक्षिणी दिल्ली दे डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि अग बुझाउण वालियां 8 गड्डियां दी सहायता नाल अग नूं सफलता नाल बुझा दिता गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अग बुझाऊ सेवा अते होर हंगामी प्रतिक्रम देण वालियां दे तालमेल वाले यतना राही 40 तों वध व्यक्तियां नूं बचाया गया है अते डाक्टरी इलाज लई नेड़ले हस्पतालां विच भेज दिता गया है। वधेरे जानकारी दिंदा उन्होंने दस्सिया,
2: हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इंटेक्शन लिया जाए। सीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने उनका दिए ताकि रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे कि इस तरह के रूटीन चेक कार्रवाई अपनी करते रहेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना च हुए जानी नुकसान ते दुख प्रगट कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों नूं हर संभव सहायता प्रदान कर रहे ने। उन्होंने जख्मियों के छेती ठीक होने की कामना भी की। श्री मोदी ने यह भी ऐलान किया कि हरेक मृतक के रिश्तेदार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड विचों 2-2 लाख रुपए की राहत रकम दी जाएगी। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने भी घटना में हुए जानी नुकसान से दुख प्रकट किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने जख्मियों के छेती ठीक होने की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना में हुए जानी नुकसान से दुख प्रकट किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने तो तुरंत बाद दिल्ली अग बुझाऊ सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आफत प्रबंधन अथॉरिटी, एम्बूलेंस सेवावां अते होर हंगामी एजेंसियां दीआं टीमां बचा अते राहत कार्यां विच लगे हुए ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति ते नेड़ों नजर रख रही है अते प्रभावित परिवारां नूं लोड़ींदी डाक्टरी सहायता अते सहायता दित्ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत लड़ी की परिभाषा अते सीमा तय करने संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा करने लई एक उच्च पदरी माहर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की प्रधानगी भारतीय जंगलात खोज अते सिक्ख्या परिषद के डायरेक्टर जनरल कंचन देवी करनगे। कमेटी नूं इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली चुगिरदा सिलसिले की संभाल नाल संबंधित मुख्य मुद्दों नूं हल करने लई एक निरपक्ष अते विज्ञानक मुलांकण जरूरी है। इस तों पहलां पिछले साल अक्तूबर विच अदालत ने चुगिरदा अते जंगलात मंत्रालय वल्लों पेश कीती गई रिपोर्ट नूं लागू करन ते रोक ला दित्ती सी अते माहरां वल्लों एक नवीं समीक्षा दा निर्देश दित्ता सी। कमेटी इस गल की जांच करेगी कि की अरावली पहाड़ा की पछाण लई तजवीजत मापदंड चुगिरदा सुरक्षा अधीन खेतर नूं काफी घटा सकते ने अते चुगिरदे पक्षों संवेदनशील खेतरां विच खुदाई जां होर गतिविधियां दी आग्या दे सकदे ने। इह कमेटी रिपोर्ट विच वरते गए उचाई मापदंडां दे विज्ञानिक आधार दा वी घोख करेगी अते मुलांकण करेगी कि की मौजूदा नेमबद्धी सिलसिले अराबी पर्वत लड़ी की रक्षा लिए ढुकवें ने। कमेटी विच जंगलात, भू विज्ञान, चौगिरदा अते वातावरण के माहर शामिल ने। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डी के शिव कुमार अज शाम राज के 25वें मुख्यमंत्री वजों सहु चुकणगे। राज्यपाल थावर चंद गहलोत लोक भवन में उन्होंने सहु चुकाउणगे। साबका गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री वजों सहु चुकणगे। अज लगभग 10 विधायकों के मंत्री वजों सहु चुकण की संभावना है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सकत्र के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला तो इलावा धार्मिक आगुआ, मजदूरां, लेखकां, अदाकारां अते प्रमुख कारोबारियां ते सनअतकारां नूं सहु चुक समागम लई सद्दा दित्ता गया है। सहु चुक समागम वाली थां लोक भवन विच 3000 तों वध पुलिस मुलाजमां नूं तैनात कीता गया है। इह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुण रहे हो। साडा एक्सहैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरअंदेशी अगवाई हेठ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अते सबका प्रयास के सिद्धांतों तो प्रेरित होकर भारत ने पिछले 12 सालों में बेमिसाल तब्दीली वेखी है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबां, किसानां, औरतां अते नौजवानों की भलाई अते शक्तिकरण लई कई महत्वपूर्ण पहलकदमियां शुरू कीतियां ने। आकाशवाणी खबरां पिछले 12 सालां दौरान मुख खेतरां विच सरकार दे यतनां ते विशेष लड़ी प्रसार कर रहा है। अज असीं मध वर्ग की भलाई लई सरकार वल्लों चुके गए कदमां बारे चर्चा करांगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालां विच वख-वख योजनावां अते सुधारां राहीं मध वर्ग दे लोकां नूं समर्थ बनाया है। सरल टैक्स प्रणाली, बेहतर बैंकिंग, बीमा अते पेंशन सहूलतां ने मध वर्ग दी आर्थिक सुरक्षा यकीनी बनाई है। नवीं टैक्स व्यवस्था तहत सालाना 12 लाख रुपए तक दी कमाई करन वाले लोकां नूं कोई आमदन टैक्स नहीं देना पैंदा है। इस दे नाल ही GST ने भी टैक्स प्रणाली नूं सरल बना के अते रोजाना वरतों दीआं चीजां दी कीमत घटा के मध वर्ग नूं राहत दित्ती है। 2015 विच शुरू कीती गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लखां लोकां नूं पक्के मकान प्रदान कीते ने। इस योजना तहत मंजूर कीते गए 1.25 करोड़ मकानां विचों 98 तों वध मकान बना के लाभपात्रियां नूं दित्ते जा चुके ने। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत 43.52 करोड़ सेहत कार्ड जारी कीते जा चुके ने, जिस नाल लोकां नूं बेहतर सेहत सुरक्षा मिली है। इस तों इलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना तहत जन औषधि केंद्रां राहीं लोकां नूं किफायती अते गुणवत्ता वालियां दवाईयां मिल रहियां ने, जो बाजार नालों 80% सस्तियां दरां ते उपलब्ध ने। 2015 विच शुरू कीती गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कारण लोक अपने कारोबार शुरू कर रहे ने अते दूजियां नूं वी रोजगार दे रहे ने। इस योजना तहत लाभपात्रियां नूं हुण तक 40 लाख करोड़ रुपए दे कर्जे दित्ते जा चुके ने। भारत दे मध वर्ग दे लोकां दी आमदन विच वाधे अते नवे मौके मिलण नाल ओह हुण देश दी आर्थिक तरक्की, विकास अते खुशहाली विच अहम भूमिका निभा रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट नाल जलंधर तों आकाशवाणी खबरां लई मैं काजल।
1: भारत अमरीका नूं पिछे छड्डदिआं सालाना सूरजी ऊर्जा समर्था वाधे विच 2025 तक दुनिया दा सब तों वड्डा सूरजी ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीं अते नवियाउणयोग ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश दी सूरजी ऊर्जा विकास कहानी आलमी पदरी मापदंड कायम कर रही है अते मजबूत नीति सहायता अते आलमी पदरी बुनियादी ढांचे राहीं रिकार्ड समर्था वाधे नूं अगे वधा रही है। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी CEO आनंदिता मित्रा ने जानकारी दी है कि वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR अधीन वोटरां नूं प्री मैपिंग जां अगाऊं निशानदेही दी गति नूं तेज करन लई 7 जून नूं राज भर दे सारे पोलिंग स्टेशनां ते विशेष कैंप लाए जाणगे। हुण तक 90% दे निर्धारित टीचे दे मुकाबले राज विच प्री SIR मैपिंग दा 84.62% पूरा हो चुका है। आखिर विच चोणवीआं खबरां इक वार फेर सुण लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच एकीकृत कबायली विकास एजेंसियां अते एकीकृत कबायली विकास प्रोजेक्टां नूं मजबूत करने बारे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के मालविया नगर विच अज एक होटल विच अग लगन कारण 21 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत लड़ी की परिभाषा अते सीमा तय करने संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा करने लई एक उच्च पदरी माहर कमेटी का गठन किया है। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलुकीन के अफराद खानदान के लिए 2,00,000 रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस बहरान का शिकार हो गई है क्योंकि पार्टी से निकाले गए रुकन असेंबली ऋतप्रता बनर्जी ने मगरबी बंगाल असेंबली के तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरीह का दोबारा जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहिरीन का पैनल तश्कील दिया है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार आज सहपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। भारत शमसी सलाहियतों में सालाना इजाफे के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शमसी तरक्की का बाजार बन गया है। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज मर्दों के सिंगल्स में HS प्रणॉय और आयुष शेट्टी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस वाकये में 40 अफराद को बचा लिया गया। जुनूबी दिल्ली के DCP अनंत मित्तल ने बताया कि आग बुझाने वाली 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने पुलिस, फायर खिदमात और दीगर हंगामी एजेंसियों की मुश्तरक कोशिशों से 40 से ज़्यादा लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है और उन्हें तिब्बी इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालविया नगर इलाके में आग लगने के वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुक्काम सभी मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवायकीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी राहत फंड से 2,00,000 रुपये की फौरी मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने भी दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह आग लगने के अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानों के इतलाफ पर ताज़ियत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में मुतासर ख़ानदानों के लिए हिम्मत और हौसले की दुआ की। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी मालविया नगर में आग लगने के हादसे में जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कुदरती आफत से निमटने की ज़िला अथॉरिटी, कैट्स, एम्बुलेंस खिदमात और दीगर हंगामी खिदमात की एजेंसियों की टीमों को मुतहरक किया गया और राहत और बचाव कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। वज़ीर आला ने कहा कि इन टीमों की तेज़ और बरवक्त कार्रवाइयों ने कई अफराद को बचाने और मुतासरा अहाते के इनखला में मदद की। वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है और मुतासरा कुंभों को हर तरह की तिबी मदद और मावनत की पेशकश की जा रही है। मगरबी बंगाल की साबिक हुक्मरान पार्टी तृणमूल कांग्रेस TMC में अफरातफरी का आलम है और ये पार्टी तकसीम होने के दहाने पर पहुँच गई है। TMC से निकाले गए रुकन असेंबली ऋतब्रता बनर्जी ने तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। इस तादाद से असेंबली कंट्रोल में फैसला कुन तब्दीली हो सकती है। उनके ग्रुप ने पहले ही असेंबली स्पीकर रथिंद्रा बोस को एक खत तहरीर करके खुद को हकीकी TMC के तौर पर तस्लीम किए जाने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब TMC ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को ऐवान का लीडर और अश्मिता पात्रा को और न्याया बंदोपाध्याय को उनका नायब मुकर्रर कर दिया है, जबकि फरहाद हकीम चीफ विप होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली में BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो TMC में फूट डालने की कोशिश कर रही है। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں انٹیگریٹڈ قبائلی ترقیاتی ایجنسیوں اور انٹیگریٹڈ قبائلی ترقیاتی پروجیکٹوں کو مستحکم کرنے سے متعلق قومی کانکلیو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک بھر میں رہ رہا قبائلی سماج ثقافتی اعتبار سے کافی گوناگونیت کا حامل ہے اور قبائلی برادری کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی جانی ضروری ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ آخری گھر اور آخری گاؤں تک ترقی کا پہنچنا ضروری ہے۔ محترمہ مرمو نے اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا کہ اب بھی کچھ قبائلی طبقات حکومتی اسکیموں سے واقف نہیں ہیں۔
5: پی ایم جن من یوجنا کے تحت جنجاتی سمودائے میں بھی سب سے پچھڑے سموہوں کے 20,000 سے ادھک گاؤں تک وکاس کاریہکرم کو پہنچانے کا لکھیہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 75 جو گروپس وہ ہے پی وی ٹی جی، پی وی ٹی جی سب سے پچھڑے، ابھی بھی کوئی پیڑ کے مونچ کے رہ پہ رہتے ہیں، ان کے کوئی زمین نہیں، زمین تھا لیکن ریکارڈڈ نہیں، اسی لیے ان کو زمین دے کر گھر بنانا، ان کے ہر چیز کے لیے ادھیکاری لوگوں کو جتنے کرمچاری لوگوں کا دائتو ہے۔
4: سپریم کورٹ نے اراولی پہاڑی سلسلے کی تشریح اور اس کی نقشہ سازی سے متعلق مرکز کی رپورٹ کا ایک آزادانہ جائزہ لینے کی غرض سے ماہرین کی اعلی اختیارات والی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بھارت کی جنگلات سے متعلق تحقیق اور تعلیم کی کونسل کے ڈائریکٹر جنرل کنچن دیوی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ پینل سے اس سال 31 اگست تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اراولی ایکو نظام کے تحفظ سے متعلق کلیدی مسائل حل کرنے کی غرض سے ایک غیر جانبدارانہ اور سائنسی جانچ کی ضرورت ہے۔ کرناٹک قانون ساز پارٹی کے رہنما ڈی کے شیو کمار آج کرناٹک کے 25ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ گورنر تھاور چند گہلوت آج سہ پہر 4:05 پر بنگلورو میں جناب ڈی کے شیو کمار کو حلف دلائیں گے۔ سابق ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ 12 قانون ساز اراکین بھی آج وزرا کے طور پر حلف لیں گے۔ منتخب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار آج حلف لینے والے قانون سازوں کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ سدھرمیا، بی جے پی کے سینئر لیڈر بی ایس یدیورپا اور جنتا دل سیکولر کے سینئر لیڈر ایچ ڈی دیوے گوڑا سے آج صبح ملاقات کی۔ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کانگریس رہنما راہل گاندھی، قومی صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال اور رندیپ سنگھ سرجیوالا، مذہبی رہنماؤں، مزدوروں، ادیبوں، اداکاروں اور سرکردہ کاروباریوں اور صنعت کاروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے جائے مقام لوک بھون کی حفاظت کے لیے 3,000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ عوام کے لیے شہر کے مختلف مقامات اور 230 سرکاری بس اسٹینڈس پر بڑے ایل ای ڈی اسکرینز لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ حلف برداری کی تقریب کا براہ راست نظارہ کر سکیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے شمسی توانائی کی سالانہ پیداوار کی اپنی صلاحیت کے معاملے میں امریکہ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور اب وہ 2025 میں شمسی توانائی پیدا کرنے والی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا ہے۔ بھارت نے قابل ذکر 155 گیگا ویٹ سے زیادہ نصب شدہ شمسی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کی بدولت ملک کی 50% غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے این ڈی سیز کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ تقریباً 40,000 طلباء نے کامیابی کے ساتھ اپنے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کی درخواستیں پیش کی ہیں اور اس پورے عمل کو بغیر کسی پریشانی کے مکمل کر لیا گیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپیوں میں پائے گئے معاملات کی ویریفیکیشن اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق آن لائن پورٹل کل شروع کر دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج مرکزی وزیر چراغ پاسوان کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کیا ہے، جس میں لداخ میں نئے مواقع اور امکانات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ لداخ کا ایک مقامی باشندہ جدت ترازی، اختراع اور مواقع کی ایک داستان تحریر کر رہا ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو انڈونیشیا اوپن کے سخت شروعاتی مقابلے میں کامیابی کے بعد دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں۔ وہیں مردوں کے سنگلز میں آج ایچ ایس پرونوئے کا مقابلہ آئرلینڈ کے نیٹ یونگین اور آیو شیٹی کا مقابلہ چین کے وینگ ہینگ یونگ سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے افراد خاندان کے لیے 2,00,000 روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ ترنمول کانگریس بحران کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی سے نکالے گئے رکن اسمبلی ریتبرتا بینرجی نے مغربی بنگال اسمبلی کے تقریباً 60 اراکین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اراولی کی تشریح کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ اختیارات کے حامل ماہرین کا پینل تشکیل دیا ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر ڈی کے شیو کمار آج سے پہر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ اور انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں آج مردوں کے سنگلز میں ایچ ایس پرنوئے اور آیوش شیٹی اپنے اپنے مقابلے کھیلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
6: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم انوجا کمار ود دا مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritobrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivakumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And in Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon. And now the news in detail. 21 people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, the Prime Minister said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Vice President C.P. Radhakrishnan, Home Minister Amit Shah and Delhi Chief Minister Rekha Gupta have also extended condolence over their loss of lives. More from our correspondent.
7: The fire incident occurred at 8:48 this morning. Soon after the incident, teams from Delhi Fire Services, Delhi Police, the District Disaster Management Authority and other emergency response agencies were swiftly mobilized and launched rescue and relief operations. More than 40 people have been rescued and shifted to nearby hospitals for treatment. The fire has been brought under control with the help of 8 fire tenders. Rescue and search operations are still underway and all concerned agencies remain deployed at the site to provide every possible assistance to those affected. The cause of the fire is yet to be ascertained. Delhi police has registered an FIR in connection with the incident. With Dipendra Kumar, Ankit Kumar, Akashwani.

0: Somali and West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Shing Kang and Aaron Tai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritubrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतुब्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र

0: स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गाँव और बस्तियाँ दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि यह कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: जी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज

0: पुरुष सिंगल्स में एच एस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार से। जी हाँ दोस्तों, आज ये कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी हाजिर हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत और फिर आपसे ही पूछेंगे कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, आज हम बात करेंगे अभिनेत्री सारिका की। जी हाँ, जिनकी आंखें समंदर जैसी गहरी और जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनकी जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे, साथ ही बचपन में जिसने मास्टर सूरज बनकर दिल जीता, जवानी में जो गीत गाता चल की गूंज बनी, और आगे चलकर जिसने 2 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम सारिका की। तो शुरू करते हैं सारिका जी के सफरनामे का यह खूबसूरत सफर, और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों देखिए, हमारे पास संदेश भी आ गए हैं हमारे दोस्तों के। तो हमारे पास संदेश आया है चिरमिरी कोरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे जी का। इन्होंने बिल्कुल सही कलाकार हमें बताया है कि आज हम बात कर रहे हैं सारिका की। और दूसरा जो हमारे पास संदेश आया है वो आया है हीरामणि वर्मा दत्रेगी भाटापार से। इन्होंने भी हमें सही, बिल्कुल सही गैस किया है कि आज हम बात कर रहे हैं सारिका की। जी हाँ दोस्तों, सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में हुआ था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पिता जो थे वो परिवार को छोड़कर किसी कारणवश चले गए थे। घर की जो हालत थी वो कुछ खास नहीं थी, तो सिर्फ 5 साल की मासूम सारिका ने कैमरे के सामने खड़ा होना सीख लिया। वो कभी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि उनकी घर की हालत ठीक नहीं थी और उनके कंधों पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्मों में एक लड़के का किरदार निभाया और नाम मिला उन्हें मास्टर सूरज। और उस बच्चे ने, यानी सूरज ने, हम सभी का दिल जीत भी लिया था। क्या आप जानते हैं फिल्म बालक का वो मशहूर गाना सुन ले बाबू ये पैगाम, जिस बच्चे पर फिल्माया गया था, वो कोई लड़का नहीं था साथियों, बल्कि वो हम सबकी चहेती थी सारिका। जी हाँ दोस्तों, तो सुनते हैं उन्हीं की एक फिल्म अभिनय की हुई ये गीत।

दोस्तों, अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जी का। अगला संदेश आया है हमारे पास गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का। साथियों, आप अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं और देखिए, अभी हमने आपको बताया कि सारिका ने सबसे पहले जो अपनी शुरुआत की थी वो एक लड़के के रूप में की थी और बाद में वो बेबी सारिका बनी और फिल्म हमराज में विम्मी की बेटी के रोल में उन्होंने सबका ध्यान खींचा। लेकिन साथियों, असल कामयाबी उनकी तब आई जब साल 1975 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज हुई। सचिन पिलगांवकर और सारिका की जोड़ी ने स्क्रीन पर जो

जादू बिखेरा वो तो हम सभी को पता है, और हम सभी को वो जोड़ी बहुत पसंद भी आई थी। तो लीजिए सुनते हैं उनकी अभिनय की इस फिल्म का ये गीत।

जिन्हें बहुत सा समय, बहुत कठिन दौर भी अपनी ज़िंदगी में देखा है, लेकिन इस फौलादी महिला ने हार कभी नहीं मानी और अपने दम पर दोबारा से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। इस संघर्ष के बीच उन्हें प्यार मिला साउथ के सुपरस्टार कमल हासन का। दोनों एक साथ रहने लगे। साल 1986 में उनकी बड़ी बेटी श्रुति हसन का जन्म हुआ, जिसके बाद 1988 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सारिका ने एक्टिंग से दूरी बना ली, लेकिन सिनेमा से उनका नाता नहीं टूटा। दोस्तों, वो कमल हासन की फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने लगी और यहाँ भी उनके हुनर का डंका बजा। फिल्म हे राम 2000 में जो आई, उनके लिए सारिका को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला।

दोस्तों 2005 की फिल्म परजानिया में एक बेबस और पीड़ित माँ के किरदार में उन्होंने ऐसा जीवंत अभिनय किया कि पूरा देश रो पड़ा। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं और 3 बजे आप सुनेंगे स्पॉन्सर प्रोग्राम NCERT। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, अरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस

0: जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ, जरूर।
1: श्रोताओं, गोबी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट दो कुबड़ वाले होते हैं
1: जी,
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
1: जी
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: जी,
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
8: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
9: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे?
10: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
9: ये तो रीछ की आवाज है।
11: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है।
9: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
9: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
9: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
5: मैं ऐसा करता

0: जमीन पर ले जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
1: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
0: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
1: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
0: बच गए, लगता है रीच चला गया।
1: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
1: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
0: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई?

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
1: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
2: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
3: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
2: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
4: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
5: अरे इस बार भी नहीं लगी।
6: अरे
4: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
4: हा?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
4: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
5: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
4: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
2: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
3: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
2: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
3: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
7: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
7: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
8: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
7: आप तो काम करती है ना?
8: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
7: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
2: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
3: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है।

0: खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ, हम सब तैयार हैं।
6: किसी भी हाल में जंगल कटने
4: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
7: मिट्टी पानी और बया,
3: मिट्टी पानी और बया,
7: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से
8: तुम इनकी बातों में बताओ।
9: मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
4: छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे।

0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
1: नहीं लगाने देंगे बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
3: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
3: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
4: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन इकराम, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से अदब। जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको अदबी दुनिया से रोशनास कराते हैं। सामईन, अदबी दुनिया और समाजी दुनिया का चोली दामन का साथ है। हमारा शायर व अदीब जो कुछ समाज में देखता है, सुनता है, उसे अदब के मुख्तलिफ जावियों में पिरो कर हमारे सामने पेश करता है। फिर उसकी तख्लीक को हमारा नया जहन पढ़ता, देखता और समझता है। वो माजी की खामियों और कोताहियों से सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी के राह का तायुन करता है और एक बेहतर समाज की तश्कील करता है। तो सामईन, आज हम आपको रेडियो की तारीख से रोशनास कराएंगे। आपको बखूबी मालूम है कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो ने अपना 90 साल सफ़र मुकम्मल किया है। तो आइए इस 90 बरसों के सफ़र पर मुहित एक तकरीर सुनवाते हैं। आज के हमारे मुकर्रर हैं डॉक्टर सरफराज जावेद। तो लीजिए समाअत कीजिए डॉक्टर सरफराज जावेद से। ये तकरीर मौजू है तालीम के शोबे में ऑल इंडिया रेडियो का किरदार।
1: टॉक का उन्वान है तालीम के शोबे में ऑल इंडिया रेडियो का किरदार। हिंदुस्तान में ऑल इंडिया रेडियो की पहचान तफरी, गैर रस्मी तालीम और आवामी बेदारी के नशियाती प्रोग्राम्स की हैसियत से नुमाया है। यह चार दीवारी और रस्मी तालीम की कैद से आज़ाद है। इससे रस्मी और गैर रस्मी तालिब इल्म इस्तिफादे के मजाज हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने 1936 के बाकायदा नशियाती आगाज़ से ही मुल्क के कोने कोने में ख़बरों और तफरीही मवाद को पेश करने के साथ तालीमी मवाद की सौती फराहमी को भी आसान कर दिया। रेडियो तालिब इल्मों के निसाब से मुतालिक बहुत सा मालूमाती मवाद भी फराहम कराता है। ऑल इंडिया रेडियो हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों के आवाम तक तालीम को पहुंचाने में बड़ा मुसबत किरदार अदा कर रहा है। रेडियो अपने तालीमी प्रोग्राम में स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए ख़ास तालीमी नशरिया का भी अहतमाम करता है, जो तालीमी इदारों और तालीमी इल्मों के ज़रूरी निसाब पर मबनी होते हैं। माहिरीन तालीम के ताउन से मुख्तलिफ मजामीन, ज़बान, तारीख, जुग्राफिया, रियाजी और साइंस वगैरह के मौजूआत पर खुसूसी प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। तालिब इल्मों के इम्तहानात के दौरान माहिरीन तालीम के ज़रिए उनकी रहनुमाई की खातिर मुख्तलिफ मौजूआत पर प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। मज़ीद बहुत सी तजावीज़ भी पेश की जाती हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर बहुत सी तालीमी सरगर्मियाँ और ज़बानों के फ़रोग के लिए, ज़बानें सिखाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी नशर किए जाते हैं। नई नस्ल में इल्म व अदब का ज़ौक़ और शौक़ परवान चढ़ाने के लिए प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। ज़राती तालीम में किसानों के लिए जदीद काश्तकारी के तरीक़े, मौसमी हालात, मिट्टी और फसलों के लिए बीजों के बारे में अमली तालीम पर मालूमाती प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। हिफ्ज़ान सेहत के प्रोग्रामी नशरिए में आवाम को सेहत की बाबत, बीमारियों से बचाव और सफाई सुथराई पर तवज्जो मबजूल कराई जाती है। तहजीबी व सकाफती प्रोग्राम के नशरिए में हिंदुस्तानी आवाम को अपने तहजीबी व सकाफती वर्षे की मालूमात फराहम की जाती है। नई नस्ल को आलमी सतह पर राइज ताज़ा तरीन नई तालीमी कोर्सों से मुतालिक आगाही फराहम की जाती है। हिंदुस्तान में ऑल इंडिया रेडियो बहुत से स्टेशनों के ज़रिए करिया करिया तालीमी बेदारी में खातिर खा किरदार अदा कर रहा है। ऑल इंडिया रेडियो इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग के ज़रिए ऐसा प्लेटफार्म फराहम करता है जिस पर दूर दराज के आम तालीबी इल्म कॉल करते हैं। वो माहिरीन तालीम से अपने मजमून के मुतालिक सवालात और इश्कालात का हल पाते हैं। یہ اقدام فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کے تحت طالب علموں کی علمی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو نے ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے اور نئی زبانیں سیکھنے اور مواصلاتی بنیادی مہارتوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بہت سے منصوبے اور اہداف بنائے ہیں۔ نوجوانوں میں خواندگی اور بیداری، یہ پروگرام قومی خواندگی مشن کے تحت بڑے فعال انداز میں نشر کیے جاتے ہیں، جس میں نوجوان لڑکے، لڑکیوں، مردوں اور خواتین کو صحت و اخلاق، گھریلو کام کاج کی آگاہی اور بہت سے ہنر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو اساتذہ کے تعلیمی و تدریسی خاکے تیار کر کے تربیتی پروگرام نشر کرتی ہے، جس کے ذریعے اساتذہ گھر بیٹھے اپنی درسی استعداد اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی خاطر بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ ہندوستانی ریڈیو کے نشریے کی تاریخ میں اردو سروس پروگرام کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اس کی ابتدا اردو خبروں کے مختصر نشریے سے ہوئی، مگر جلد ہی دیگر پروگرام بھی نشر ہونے لگے۔ اردو سروس کے ذریعے سرحدوں کے دونوں جانب کے عوام کی خاطر ایسے پروگرام جو جذباتی ہمدردی کا رشتہ قائم کرنے اور مغالطے پر مبنی قدرتیں رفع کرنے کے لیے نشر کیے جاتے رہے، جن عزیزوں اور رشتہ داروں کے نام پیغامات ترسیل کرنا، عوامی سیاسی شعور پیدا کرنا اور پاکستانی حکومت کے ہند مخالف غلط سیاسی بیانیے کی تردید کرنا وغیرہ شامل تھا۔ دہلی اسٹیشن کے نشریے میں خاص طور سے اردو مجلس کی کہکشا کے ذریعے مختلف نوعیت کے پروگراموں میں ننھے بچوں، نوجوانوں کی ذہنی نشو نما اور مردوں و خواتین کی شعوری بیداری کے پروگرام پیش کیے جاتے رہے۔ مزید ادبی مباحث و مذاکرے، تقریریں، حفظان صحت، سائنس، کھیل، فلم اور بین المذاہب ہم آہنگی کا شعور پیدا کرنے والے پروگرام نشر ہونے لگے۔ غرض زندگی کے بیشتر شعبہ جات کے پروگرام اردو مجلس کے ذریعے ہوتے رہے، حتیٰ کہ کورونا کی وبا کے دوران دونوں نے بڑے اہتمام سے اپنے نشریے جاری رکھے۔ اردو پروگراموں میں روبرو کے ہفتہ واری پروگرام میں ملکی و بیرونی شخصیات کے تفصیلی انٹرویو نشر کیے جاتے۔ براڈ کاسٹرز میں زبیر رضوی، کے کے نیر اور عمیق حنفی وغیرہ اہم نام ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو نئی نسل کے خصوصی پروگرام کے ذریعے نوجوانوں میں تعلیم، کیریئر اور سماجی مسائل سے دلچسپی اور فکری و ذہنی رہنمائی کرنا نئی

0: रोशनी के प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल में मौजूद सलाहियतों को फ़रोग देना, उनकी तालीम, सेहत, समाजी मसाइल पर तवज्जो मबजूल कराना, मज़ीद इंटरव्यू और फीचर के ज़रिए उनकी रहनुमाई करना। ऑल इंडिया रेडियो का बज़्म ख़वातीन मकबूल तरीन प्रोग्राम रहा है, जिसके ज़रिए औरतों की फलाह व बहबूद, खानगी मसाइल, सेहत, तालीम, समाजी बेदारी और ज़िम्मेदारी और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारना और मंजर आम पर लाना। हिफ्ज़ान सेहत इस मकबूल और मालूमती प्रोग्राम के ज़रिए आवाम में बीमारियों से बचाव, तिब्बी उसूल में गिज़ा और दवा से मुतालिक तिब्बी माहिरीन का मशवरा फराहम करना। ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्मी दुनिया से मुतालिक नशरियाती प्रोग्राम के ज़रिए फिल्मों, गीतों और फनकारों को हिंदुस्तानी आवाम के घर घर तक पहुंचाया है। साइंसनामा बड़ा मकबूल और मालूमाती साइंसी प्रोग्राम है। उसका बुनियादी मकसद सामईन और नौजवान नस्ल में साइंसी मैलान और रुझान को फ़रोग देना, जिसके ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी, तिब्बी दरियाफ्तें, खलाई तहकीकात, मौसमी तब्दीलियाँ और माहौलियात से मुतालिक मौजूआत पर मबनी प्रोग्राम नश्र करना। मकबूल खेल खिलाड़ी नशियाती प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्टेशनों से हिंदुस्तान की बहुत सी इलाकाई जबानों में आवाम को खेल की खबरों से मुतालिक मालूमात फराहम करना। ऑल इंडिया रेडियो ने ड्रामे और फीचर प्रोग्राम में अपने आगाज़ ही से रेडियाई ड्रामों और फीचर के ज़रिए हिंदुस्तान के अदबी व सकाफती विरसे से सामईन को आगाह कराने और उसको फ़रोग देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। अंदाज़े नज़र ये उर्दू का मकबूल मालूमाती और तजज़ियाती प्रोग्राम है, जो मुल्की और बैरूनी ममालिक से मुतालिक हालात हाजरा के मसाइल और अदबी दुनिया की सरगर्मियों पर मबनी होता है। कहकशा ये उर्दू सर्विस का मकबूल और तारीखी प्रोग्राम था। इसमें अदबी और तफरीही मालूमात के साथ बेहतरीन नगमे, गज़लें और मालूमाती फीचर पेश किए जाते थे, जो सामईन की तवज्जो का ख़ास मरकज़ होते थे। बज़्म नौबहार ये मकबूल तारीखी और सकाफती प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए उर्दू ज़बान व अदब, शेर व शायरी और रेडियो ड्रामों से दिलचस्पी को फ़रोग देने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। आप उर्दू मजलिस की बज़्म में शेर व शायरी, गज़ल, नगमे, ड्रामे, तंज़ो मिज़ा, अदबी तकरीरें और अपने पसंदीदा शायर व अदीब से सौत के ज़रिए मुलाकात करते हैं। उर्दू मजलिस का ये नशरियाती प्रोग्राम पहले आधे घंटे, फिर एक घंटा, फिर सुबह शाम और हाल में दोपहर के वक्त बड़ी पाबंदी से नशर हो रहा है। रेडियो की उर्दू मजलिस इन सब के बाइस आवाम में अपनी मकबूलियत के उरूज को बरकरार रखने में हनूज कामयाब नज़र आती है। आज मैं ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल सफ़र को कामयाबी से मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं रेडियो मुस्तकबिल में भी अपनी खिदमात बहुसन खूबी अंजाम देती रहेगी। शुक्रिया।
1: सामईन कराम, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सरफराज जावेद से ये मालूमाती तकरीर, तालीम के शोबे में ऑल इंडिया रेडियो का किरदार।
2: लीजिए अब समाअत कीजिए नासिर काज़मी की ये गज़ल, दयारे दिल की रात में चराग सा जला गया। दयारे दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। गुलाम अली और आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे नासिर काजमी का कलाम गुलाम अली और आशा भोसले की आवाज़ों में। अब लीजिए आखिर में समाप्त कीजिए प्रोफेसर अखलाक आहन से उनका कलाम खुद उनकी आवाज़ में।
1: एक गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। गर जो बतलाएं लुटे हैं कू बकू तो किस तरह, गर जो बतलाएं लुटे हैं कू बकू तो किस तरह, इश्क़ जाना में किए हैं हाओ हू तो किस तरह। तुमसे है हम सोहबती की चाह मुद्दत से मगर, तुमसे है हम सोहबती की चाह मुद्दत से मगर, एक बुते खारा से जो हो गुफ्तगु तो किस तरह, एक बुते खारा से हो ये गुफ्तगु तो किस तरह। सुनते हैं वो मुल्तफित था मेरी गीबत में तो अब, सुनते हैं वो मुल्तफित था मेरी गीबत में तो अब, शौक़ दिलबर फिर से हो जो हू बहू तो किस तरह। दस्त अंगुश्ते मोहब्बत फिर रहे हर पेच व खम, है तमन्ना सैर दीदा मुँह बमू तो किस तरह। होता है वो हम नशीं भी और बगल गिरो करीब, हो मगर वसलो विसाले तुंद खू तो किस तरह। और रीत है ये इब्तिदा से इब्ने आदम में हनूज, बच रहे जो हासिदों में आबरू तो किस तरह। मक्ते का शेर है कि है तलाशो मूशे गाफी जान ले असरार यार, आह ना हो आशिकों की जुस्तजू तो किस तरह। गर जो बतलाएं लुटे हैं कू बकू तो किस तरह, इश्क जाना में किए हैं हाओ हू तो किस तरह। एक गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। अब तमाशा ही तमाशा है हर एक सू जाना, अब तमाशा ही तमाशा है हर एक सू जाना, सब बुतो बुतगरो बुतजाद हैं हम खू जाना, और गुलशन इज़्ने खुदा में है हर एक सू मातम, गुलशन इज़्ने खुदा में है हर एक सू मातम, बुलबुले मर्ग नशीं जाग हैं कूकू जाना। और कौन कहता है मोहब्बत के चलन हैं बाकी, कौन कहता है मोहब्बत के चलन हैं बाकी, बाग खाकी में हुआ हर कोई दोरू जाना, बाग खाकी में हुआ हर कोई दोरू जाना। और है चली अब के यहाँ ऐसी हवाएं मसमूम, है तड़पता दिल मगमूम हो खुशबू जाना। और ख़ास तौर से ये कि दौर गुज़रे हैं बहुत तिश्नए खूने आदम, दौर गुज़रे हैं बहुत तिश्नए खूने आदम, और निकले हैं ताफ़ुन से वो बदरू जाना। और मक्ते का शेर अर्ज़ है कि आहने रम्ज़ गुशाए गमे अफकार व जुनून, आहने रम्ज़ गुशाए गमे अफकार व जुनून, हाय करते हुए कहता है वो हू हू जाना। अब तमाशा ही तमाशा है हर एक सू जाना, सब बुतो बुतगरो बुतजाद हैं हम खू जाना। एक गज़ल आपकी समातों की नज़र। हम हैं असीर जुल्फ़े महब्बत मुदाम बस, हम हैं असीर जुल्फ़े महब्बत मुदाम बस, हम राह बुए क़ुर्ब सनम हो खराम बस, और पीते हैं जाम होश व खरस से बयाद यार, मशरूब दर के मस्तियो असबाब दाम बस, और सुनते हैं और सुनते रहेंगे शबो सहर, सुनते हैं और सुनते रहेंगे शबो सहर, अपना वजूद कर तो बस, अपना वजूद कर तो बगोशे पयाम बस। है बज़्म यार या है सितम गाह रोज़गार, है बन गया यहाँ पे अनादि निज़ाम बस। और मक्ते का शेर अर्ज़ है कि आहन गरी के हर्फ हिकायात दिलबरां, आहन गरी के हर्फ हिकायात दिलबरां, रहता है वो हमेशा ही यहाँ खुद कलाम बस। हम हैं असीर जुल्फ़ महब्बत मुदाम बस, हम राह बुए क़ुर्ब सनम हो खराम बस। और एक गज़ल है जो वली दक्कनी की एक मशहूर गज़ल की ज़मीन में है, जादू है तेरे नैन गज़ालां सु कहूँगा, तो ये उसी ज़मीन में गज़ल है, मुलाहिज़ा फरमाएं। कि दर्दे दिले महजूं तो हकीमा सु कहूँगा, दर्दे दिले महजूं तो हकीमा सु कहूँगा, जिस तरह उजाड़ा है बयाबा सु कहूँगा, और देखे हैं बहुत नाज व अदा बज़्म तरब में, जैसे हैं तेरे नाज निगारा सु कहूँगा, और आई है दोबारा ये यजीदी रविश आंधी, आई है दोबारा ये यजीदी रविश आंधी, अब आह दिला शाम गरीबा सु कहूँगा, अब आह दिला शाम गरीबा सु कहूँगा, और पूछे है भला कौन परेशानी दिल को, पूछे है भला कौन परेशानी दिल को, दिल में है मगर जुल्फ़ परेशान सु कहूँगा, और आती है जो आहिस्ता से ख्वाबों में मेरे रोज़, उस कब रवि को मैं खरामा सु कहूँगा, उस कब रवि को मैं खरामा सु कहूँगा। और मक्ते का शेर आपकी खिदमत में, मुलाहिज़ा फरमाएं। कि चुभती है हर एक लम्हा मेरे दिल में कोई शय, चुभती है हर एक लम्हा मेरे दिल में कोई

0: शय आहन जो कहो खारे मुगीला सो कहूँगा, दर्दे दिले महजूं तो हकीमा सो कहूँगा, जिस तरह उजाड़ा है बयाबां सो कहूँगा।
1: वाह वाह वाह, क्या कहने हैं सामईन। अभी आप सुन रहे थे अखलाक आहन से उनका कलाम। इसके साथ ही आज का हमारे प्रोग्राम अक्से अदब यहीं खत्म होता है, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। और अब आप समाचार सुनिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे विमानन क्षेत्र से जुड़े 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
4: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज का एक ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
3: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
3: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच

0: She will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles pair of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Xing Kang and Aron Tai by 6-11 in their match today. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का। साथियों, इस क्रम में सबसे पहले खोए व्यक्ति का नाम है अंशु। इनके पति का नाम है बीपी सिंह। अंतिम बार अंशु को इनके घर पर यानी राजौर में देखा गया है। आयु 22 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है। कद 5 फुट 2 इंच है। प्रार्थी का पूरा पता है बीपी सिंह। पिता का नाम मुंशी लाल, निवासी ग्राम राजौर। यदि इनके बारे में आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना अनूप शहर, बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है निक्की। इनके पिता का नाम है परमानंद। अंतिम बार इन्हें 27/4/2026 दिन सोमवार ग्राम अहमदानगर में देखा गया है। आयु करीब 18 वर्ष है। कद 5 फुट है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है और चेहरे का रंग गेहुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना बीबी नगर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है कुमारी सोनम। इनके पिता का नाम है जुगेंद्र सिंह। अंतिम बार इन्हें 30/4/2026 को ग्राम नगला थाना आहार बुलंदशहर में देखा गया है। इनकी आयु 18 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है। सोनम का कद 5 फुट 2 इंच है और रंग गोरा है। इनके ऊपर इनाम राशि भी है जो कि 10,000 रुपये है। यदि इनके बारे में आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना अनूप शहर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है ब्रह्मपाल। पिता का नाम है रघुबीर। अंतिम बार इन्हें ग्राम मडोना जाफराबाद दिन शुक्रवार तारीख 3/4/2026 को देखा गया है। इनकी आयु करीब 56 वर्ष है। कद 5 फुट 7 इंच है। शरीर की बनावट पतला शरीर है और चेहरे का रंग गेहुआ है। इनका पता है ग्राम मडोना जाफराबाद, पुलिस स्टेशन बीबी नगर, बुलंदशहर। यदि इनके बारे में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना बीबी नगर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है अर्जुन सिंह। इनके पिता का नाम है पप्पू सिंह। निवासी मोहल्ला लोहान, थाना जहांगीराबाद, बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार इनके घर लोहान मोहल्ला तारीख 8/1/2026 तक देखा गया है। इनकी आयु 18 वर्ष है। शरीर की बनावट आँख नाक कान सामान्य है और शरीर पतला है, रंग गेहुआ है। अर्जुन का कद 5 फुट 8 इंच है।

0: यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है मनोज कुमार जैन, इनके पिता का नाम है विमल प्रसाद जैन। मनोज को अंतिम बार अंसारी रोड चौराहा, जनपद बुलंदशहर में देखा गया है 14/3/2026 दिन शनिवार तक। मनोज की उम्र 53 वर्ष है, कद 5 फुट है, शरीर की बनावट सामान्य शरीर है और चेहरे का रंग गेहुआ है। मनोज अपने घर से किसी निजी कार्य के लिए निकले थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रिहाना, पति का नाम है दानिश, निवासी वीसा कॉलोनी, अंतिम बार इन्हें वीसा कॉलोनी बुलंदशहर में देखा गया है 4/4/2026 तक। इनकी आयु 30 वर्ष है, कद 5 फुट 4 इंच है, इनकी शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरे का रंग गोरा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रागनी उर्फ काजल, इन्हें अंतिम बार 27/3/2026 ग्राम अघापुर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में देखा गया है। इनकी आयु 23 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य शरीर है, कद 4 फुट 6 इंच है। प्रार्थी का पूरा पता है रागनी उर्फ काजल, पत्नी धर्मेंद्र सिंह, पिता का नाम विकास सैनी, निवासी ग्राम अघापुर, थाना सेक्टर 49, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। यदि इनके बारे में आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 49, नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों का विवरण। 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 4:30 पर आप सुनेंगे समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा। साथियों, 5:10 पर आप आनंद लेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी का। 5:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 6:10 पर आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। 6:30 पर आप सुनेंगे ग्राम संसार कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व साइकिल दिवस पर। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। 7:30 पर आप आनंद लेंगे कुछ प्यारी सी गजलों का। रात्रि 8 बजे आप आनंद ले सकेंगे गीत मालिका में फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के कुछ प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम।

कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 4:20 होने को है और 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।

0: on deputation or short-term contract basis. The director administration post is in level 13 as per the 7 CPC, and while the FA and CAO post is in level 12. Applications must be submitted within 30 days from the date of publication in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.ignca.gov.in. I repeat, it is www.ignca.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में लेडी इरविन कॉलेज इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी का एक पद रिक्त है जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉलेज की वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन निदेशक लेडी इरविन कॉलेज सिकंदरा रोड नई दिल्ली कॉलेज की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई संशोधन हो तो उसे कॉलेज की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। ये जानकारी 30 मई 2026 से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लेडी इरविन कॉलेज में ही एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीनियर असिस्टेंट और एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद डेपुटेशन आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ladyirwin.edu.in। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। संयुक्त निदेशक कैपिटल मार्केट 2 पद, उपनिदेशक बैंकिंग 2 पद, उपनिदेशक कॉरपोरेट लॉ 2 पद, उपनिदेशक फॉरेंसिक ऑडिट 1 पद, उपनिदेशक अन्वेषण 3 पद, प्रधान निजी सचिव 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक बैंकिंग 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कैपिटल मार्केट 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कॉरपोरेट कानून 4 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक 1 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक अन्वेषण 2 पद, वरिष्ठ सहायक निदेशक कराधान 1 पद, वरिष्ठ अभियोजक 3 पद, सहायक निदेशक अन्वेषण 12 पद। ये सभी 38 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार समाचार दिनांक 28 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के अंक में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों पर वर्तमान रिक्ति परिपत्र के लिए विचार किया जाएगा। अतः जो उम्मीदवार पहले के रिक्ति परिपत्र के विरुद्ध आवेदन कर चुके हैं उन्हें उसी पद के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता, वेतनमान और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.sfio.nic.in। इसके अतिरिक्त आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं www.mca.gov.in। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 के लिखित परिणाम की घोषणा। आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा 1 2026 के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा कर दी गई है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.upsc.gov। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ हम हैं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु जी।
4: नमस्कार मुनीश, हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू आर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। एंड आई एम रेणु कटारिया, एज मुनीश हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मी, एंड His full name is Munish Sharma. And dear listeners, as Munish has informed, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India reports, capsules, tributes, and so much more, all for you over the next 30 minutes. And let's begin with the news headlines first, Munish.
3: Yes, Renu. So the first headline, Delhi ke Malviya Nagar sthit ek hotel mein bhishan aag lagne se 21 logon ki maut. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा।
4: तृणमूल कांग्रेस फेसेस टर्मोइल एज एक्सपेल्ड, एमएलए ऋतब्रता बैनर्जी क्लेम सपोर्ट ऑफ नियरली 60 एमएलएज इन वेस्ट बंगाल असेंबली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
4: सीनियर कांग्रेस लीडर डी के शिवकुमार सोन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका।
3: भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा।
4: एंड इन इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन, एचएस प्रणॉय एंड आयुष शेट्टी टू प्ले इन मेन सिंगल्स दिस आफ्टरनून। And dear listeners, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Bicycle Day. And here I would like to quote Albert Einstein, Munish. He said, "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." So, this day is celebrated annually on June 3rd to acknowledge the simple, affordable, reliable and environmentally fit sustainable means of transport, fostering environmental stewardship and health. The day was adopted through a UN General Assembly resolution recognizing the uniqueness, longevity and versatility of the bicycle. Theme of this year is Cycling for a Greener Future. It highlights the bicycle's role in cutting carbon emissions, combating traffic congestion and promoting sustainable, healthy urban environments.
3: दरअसल साइकिल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के सबसे असरदार साधनों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि को बढ़ते उत्सर्जन से अलग करके साइकिल चलाना शहरी हवा की गुणवत्ता को सक्रिय रूप से बेहतर बनाता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और इस मुहिम को इतनी ज़्यादा लोकप्रियता मिली है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें साइकिल चलाने को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में मुख्य धारा के तौर पर शामिल करने को बढ़ावा दिया गया है, चाहे इसका इस्तेमाल रोजाना शहरी सफर के लिए किया जाए या फिर सप्ताहांत में मनोरंजन के लिए किया जाए। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, सीधे तौर पर कम होता है.
4: एंड नॉट ओनली दिस मुनीश, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग और डूइंग स्पोर्ट्स हैज सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ. एट ऑल एजेस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फिजिकली एक्टिव आउटवे पोटेंशियल हार्म, फॉर एग्जांपल थ्रू एक्सीडेंट्स. सम फिजिकल एक्टिविटी इज बेटर देन नन. By becoming more active throughout the day in relatively simple ways, people can quite easily achieve the recommended activity levels. And here I'm remembering another thing, Munish. When we were kids, aajkal to bachchon ko sirf hum cycle dete hain ki chaliye aap park tak cycling kar lijiye ya apni colony ke andar hi aap cycle chalaiye. But I remember those days when we used to cycle to school aur hum log itne active rehte the aur itna acha lagta tha cycling karke aur hum dekhte rehte the ki आज मार्केट में कोई नई साइकिल आई है तो चलिए पापा को बोलते हैं कि हमें वो वाली आज साइकिल खरीदवाइए.
3: इंडीड एंड इवन नाउ वी वुड लव टू, बट यू नो द सेफ्टी फैक्टर इज अ बिग कंसर्न.
4: एग्जैक्टली,
3: दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और देखिए रेणु जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका तो कहना यह है कि पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करना स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने का भी एक जरिया है.
4: जी.
3: शहरी क्षेत्रों के सबसे गरीब तबके के लिए, जो अक्सर निजी वाहन खरीदने में असमर्थ होते हैं, पैदल चलना, साइकिल चलाना परिवहन का एक साधन बन सकता है. साथ ही ये हृदय रोग, स्ट्रोक, कुछ प्रकार के कैंसर, मधुमेह और यहाँ तक कि मृत्यु के जोखिम को भी कम करता है.
4: And meeting the needs of people who walk and cycle continues to be a critical part of the mobility solution for helping cities decouple population growth from increased emissions and to improve air quality and road safety. Aur yahin par hi COVID-19 pandemic ke time pe hame yaad aata hai that many cities also led to rethink their transport systems.
3: जी हाँ, एंड द गुड थिंग इज दैट एट लीस्ट इन बिग मेट्रो सिटीज यू कैन सी द डेडिकेटेड बाइसिकल लेन्स कमिंग अप फास्ट. सो मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे सारे देश में ये साइकिल क्रांति जो है ये लोगों को पसंद आएगी और वो इसको बढ़ावा देंगे. विश्व साइकिल दिवस दरअसल साइकिल के इस्तेमाल से होने वाले फायदों की ओर तो ध्यान दिलाता ही है. ये परिवहन का एक आसान, किफ़ायती, साफ, पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है. साइकिल हवा को साफ रखने, भीड़ भाड़ कम करने में योगदान देती है. साथ ही ये सबसे कमजोर तबके के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सामाजिक सेवाओं को ज़्यादा सुलभ बनाती है. एक ऐसा टिकाऊ परिवहन सिस्टम जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, असमानताओं को कम करे और साथ ही जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करे, वो टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी भी है.
4: जी बिल्कुल. इन इंडिया ऑन वर्ल्ड बाइसिकल डे टुडे, द मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया हैज अर्ज्ड यूथ टू एम्ब्रेस साइकिलिंग एंड लीड द मूवमेंट फॉर अ फिटर, हेल्दियर एंड ग्रीनर नेशन. शेयरिंग अ वीडियो मैसेज ऑन द ओकेजन, द मिनिस्टर नोटेड दैट अडॉप्टिंग साइकिलिंग एज अ रेगुलर हैबिट कैन एनकरेज अ बैलेंस्ड एंड डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल वाइल ऑल्सो सपोर्टिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being but also contributes towards building a healthier and greener nation.
5: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है. यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है. जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा.
4: So true, Munish. There are also so many countries bahar humne dekha hai jahan par ki wo cycling ko bahut importance dete hain and they urge their employees, many of these offices, they are urging their employees to cycle down to the offices. And that's also another reason humne dekha hai ki साइकिल्स आप देखिए कि कितनी तरह की आ गए हैं. देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ बाइसिकल्स. आपको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो साइकिलिंग है, आपको माउंटेन अगर चढ़ना है तो उसके लिए एक अलग तरह की साइकिल होती है. एंड ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिलिंग एंड वन ऑफ देम इज अल्ट्रा साइकिलिंग, विच इज एनी बाइसिकल राइड दैट इज मोर देन 200

0: kilometers or 125 miles in length or 6 hours in duration, completed in a single effort, जो कि आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है. एंड फॉर डेकेड्स वी हैव सीन मुनीश दैट गोल्फ यूज टू बी द गो टू स्पॉट फॉर बिजनेस नेटवर्किंग एंड डील मेकिंग. एंड टूडे मेनी साइक्लिस्ट सी अल्ट्रा साइक्लिंग इमर्जिंग एज अ सिमिलर स्पेस दो इन अ मोर ऑर्गेनिक वे. तो हम तो अपने लिसनर्स को सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, राइड सेफली, स्टे एक्टिव एंड हेल्प क्रिएट अ ग्रीनर फ्यूचर.
1: तो रेनू, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे ये जानने का क्या कुछ है खास आज उनके पास. दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और जैविक विविधता के प्रति जागरूकता आज वैश्विक प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कच्छ के कोरी क्रीक क्षेत्र में विकसित किए गए मैंग्रोव लर्निंग सेंटर का उल्लेख किया. ये केंद्र न सिर्फ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि सीमावर्ती पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा को भी एक नई दिशा दे रहा है. आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की ये खास रिपोर्ट.
2: देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात का कच्छ जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है. अरब सागर और थार रेगिस्तान के बीच स्थित यह क्षेत्र जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है. इसी कच्छ में सीमावर्ती कोरी क्रीक के पाडाला क्षेत्र में गुजरात वन विभाग के द्वारा स्थापित मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का एक अनूठा उदाहरण बनकर उभरा है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं.
3: गुजरात के कच्छ में भी इन दिनों मैंग्रोव प्लांटेशन बहुत जोरों पर हो रहा है. वहाँ कोरी क्रीक में मैंग्रोव लर्निंग सेंटर भी बनाया गया है. साथियों, पेड़ पौधों की, वृक्षों की यही तो खासियत होती है. जगह चाहे कोई भी हो, वो हर जीव मात्र की बेहतरी के लिए काम आते हैं.
2: नारायण सरोवर कोटेश्वर पर्यटन सर्किट के निकट स्थित इस मैंग्रोव लर्निंग सेंटर की स्थापना तटीय पारिस्थितिक तंत्र, मैंग्रोव वनों के संरक्षण तथा सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है. यहां ऑडिटोरियम, व्याख्यान केंद्र, पैदल पथ, अवलोकन मीनार और अन्य सुविधाएं विकसित की गई है. इस केंद्र की विशेषताओं और पर्यावरणीय जागरूकता में इसकी भूमिका के बारे में बताते हुए गुजरात वन विभाग के अधिकारी संदीप कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि यह केंद्र पर्यटकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के अलावा जलवायु परिवर्तन और तटीय जैव विविधता के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है.
4: मैंग्रोव लर्निंग सेंटर बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि लोग जब वहाँ पे समुद्री सीमा दर्शन के लिए जाएं और जब मैंग्रोव के एक इकोसिस्टम के और मैंग्रोव के कोस्ट को देखते हुए, प्लांट्स को देखते हुए जब उस जगह पर पहुंचे, तो वहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ मैंग्रोव का जो समस्त जो साइंस है उसको एक अंडरस्टैंड करने को वहाँ पर मौका मिले. तो वहाँ जो सेंटर है, सेंटर में बेसिकली इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें कि मैंग्रोव का लाइफ साइकिल, मैंग्रोव का जो रोल है, मैंग्रोव का सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या रोल है, इकोसिस्टम में जो दूसरे जीव है उसको किस प्रकार से करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है उसमें किस प्रकार का मैंग्रोव का रोल होता है, ये सारी चीजें बताई गई है. तो ये सारे सिस्टम के बारे में हम एक रिसर्च कर सके, ये सेंटर का डेवलपमेंट किया गया है.
2: गौरतलब है कि समूचे गुजरात के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 71% हिस्सा अकेले कच्छ में स्थित है. मैंग्रोव समुद्री तटों को चक्रवात, सुनामी और तटीय कटाव से बचाने में प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं. इसके अलावा वे मछलियों, केंकड़ों, प्रवासी पक्षियों और अनेक जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी उपलब्ध कराते हैं. वन विभाग के द्वारा मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स जैसी योजनाओं के माध्यम से मैंग्रोव विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक चुनौतियों के इस दौर में मैंग्रोव का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि तटीय सुरक्षा और सतत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. ऐसे में कच्छ का मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरणीय शिक्षा, प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है. परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी.
0: एंड लेट्स मूव ऑन टू छत्रपति संभाजी नगर. मुनीश, 3 youths from here have developed a mobile app for the blind. With the help of this app, the blind can complete their daily tasks. Among the 3, Shaunak Savargaonkar, an engineer, gave more information about this app. So let's listen in.
5: We have created an app called Let's See, which is made for the blind. This app uses the latest AI from Google to give an auditory description of all

0: सराउंडिंग. दिस ऐप इज़ वेरी सिंपल एंड हैज़ फोर बटन्स टू डिस्क्राइब द सराउंडिंग. वन बटन इज स्मार्ट व्यू, सेकेंड वन इज रीड, थर्ड वन इज आस्क एनी थिंग ऑन एन इमेज, एंड फोर्थ बटन इज आस्क एनी थिंग टू ए आई. स्मार्ट व्यू, वेन यू क्लिक दैट बटन, इट टेक्स द इमेज फ्रॉम द फोन एंड गिव्स एन कम्प्लीट ऑडिटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द सराउंडिंग. सेकेंड बटन, रीड टेक्स्ट, इज यूज फॉर रीडिंग. दिस बटन इज यूज द लेटेस्ट ए आई मॉडल्स टू रीड एनी टेक्स्ट फ्रॉम एनी बुक और अ न्यूज पेपर. इट डजेंट मैटर द ओरिएंटेशन ऑफ द पिक्चर टेकन, द काइंड ऑफ टेक्स्ट, पैराफ्रेजिंग ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ द पैराग्राफ्स आर स्टोर्ड. इट रीड्स इट स्मार्टली टू द यूजर. Third, ask anything on an image. This is the most powerful button we have. So when you click this button, an image is captured, then a mic turns on of the phone. User can ask any question on the given image, such as ask the value of the check that is there if the image is of a check. Ask what just the headings of the newspaper. If the image is taken of a surrounding, ask where the particular phone or item is respective to the other objects. He can also ask regarding his medications. What take the picture, ask what medication this is, when it is supposed to be taken, and what content it has. The fourth button, ask anything to AI, gives is like a chatbot where users can ask general information about his surroundings. This app also has a translation button which user can choose his language, which currently supports Marathi and English. Then when in the read text, if the image input contains any language, let it be English, Russian or Chinese, when the read text and auto translation is turned on, it reads it loud in Marathi. This app is used by hundreds of blind people right now and it has changed their life a lot.
1: Well, Renu, time now to take our listeners to Arena of Sports.
2: Yes.
1: And know the latest.
2: Yes, so the latest in badminton. India's men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback at the Indonesia Open after losing to Malaysia's Kang Kai Xing and Aron Tai by 6-11 today. Meanwhile, India's campaign in the women's singles event will gather pace later in the day when Unnati Hooda takes on Japan's former world champion Nozomi Okuhara.
1: और दोस्तों, सैफ महिला चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में पांच बार की चैंपियन भारत का मुकाबला आज गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भूटान से होगा. ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा. भारत ने मालदीव और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को हराकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. फॉरवर्ड मनीषा कल्याण की वापसी से मेज़बान टीम को और भी मजबूती मिली है. फीफा रैंकिंग में भारत 69वें स्थान पर है, जबकि भूटान 164वें स्थान पर है.
2: एंड मूविंग ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड विद मॉडरेट लॉसेस टुडे. द बीएसई सेंसेक्स ड्रॉप 304 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,346. द एनएसई निफ्टी स्लिप्ड 78 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,406. The broader market at the National Stock Exchange also ended in negative zone. The mid-cap 100 index fell over 0.4% and the small-cap 100 index dipped 0.1%. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 1,58,900 rupees per 100 grams, while silver was trading down at 2,66,190 rupees per kilogram when reports last came in. And dear listeners, for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और दोस्तों, आइए अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें उन महान विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन.
3: On 3rd June 1857, the First War of Independence reached Neemuch, Madhya Pradesh, as the sepoys rose in the uprising against British rule. A brigade of native Bengal troops stationed at Neemuch mutinied and marched to Delhi. Neemuch was the most southerly place to which the uprising extended. European officers took refuge in the fort in the city and were later besieged by independence activists from Mandasaur. The British defended the city until relieved by the Malwa field force.
4: Historically, Neemuch was the location of a palace in the district of the Ajmer province. Originally a part of the territory of

0: Wow, what music?
1: Indeed, it is. दोस्तों, आज पुण्यतिथि है त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल की। भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे दरअसल श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसके जनक वर्गीज कुरियन साहब के साथ मिलकर जिस हस्ती ने देश में सहकारी दूध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी, उनका ही नाम है त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल।

0: दोस्तों, वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला संयंत्र स्थापित किया था। ये दुनिया में अनोखा अकेला प्लांट था जो भैंस के दूध को पाउडर में बदल देता था, और इस तरह अमूल की स्थापना हुई। सामुदायिक नेतृत्व के लिए त्रिभुवन दास पटेल को 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और वर्ष 1964 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था।
1: जी, एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू एंटनी क्विन, हु वाज अ मेक्सिकन अमेरिकन एक्टर, पेंटर, राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर। और अगर हम इनकी मूवीज की बात करें तो पुरानी मूवीज में मुनीश सबको जरूर याद होगा, लास्ट्राडा, द गन्स ऑफ नेवरॉन, जोरबा द ग्रीक, गन्स ऑफ सैन सेबेस्टियन, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, The Shoes of the Fisherman, The Message, Lion of the Desert, Last Action Hero and A Walk in the Clouds. And today we are also going to talk about Kerry Ray King, who is an American musician best known for being the guitarist and songwriter for the American thrash metal band Slayer. He co-founded the band with Jeff Hanneman in 1981 and remained a member for nearly four decades. Aur yahan par hum Munish sunne wale hain the metal band Slayer's song Where I Reign by Kerry King.

0: दोस्तों आज जयंती है हरविलास शारदा की, जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक थे। दरअसल पहले भारत में लड़कियों के बाल विवाह की बड़ी एक चिंताजनक प्रथा थी। इन्होंने केंद्रीय असेंबली से इसे रोकने के लिए 1925 में एक बिल पेश किया और शारदा बिल के नाम से मशहूर ये बिल सितंबर 1929 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के मकसद से बहुचर्चित शारदा एक्ट उन्हीं के नाम पर है। हरविलास जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में भी काम किया था। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था हिंदू सुपीरियॉरिटी, जिसमें उन्होंने सप्रमाण ये साबित किया कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हमारे देश की सभ्यता अन्य देशों से काफ़ी आगे थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाराजा कुंभा, महाराजा सांगा, शंकराचार्य, दयानंद और लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की पदवियों से भी सम्मानित किया गया। आज ही मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि गोविंद शंकर कुरूप की भी जयंती है। और दोस्तों अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का, तो इजाज़त दीजिए हमें, यानी मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आपसे हम अनुमति लेते हैं। आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो सुनिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
3: ETF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ETF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ETF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटना क्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। देखिए लोकेंद्र भाई, हम अपने भाइयों के लिए लेके आए हैं कुछ ठंडे कुछ गर्म इस तरह के गाने, और देखिए नोक झोंक वाले भी हैं इसमें कुछ। हमारे जो लोकगीत होते हैं देखिए लोकेंद्र भाई, उनमें कुछ प्यार भी होता है, कुछ तकरार भी होती है, तो सब तरह के ही लोकगीत हैं हमारे पास आज। तो सबसे पहले जैसे कि मौसम गर्मी का चल रहा है और आपको पता है ठंडा पानी कितना अच्छा लगता है, मीठा लगता है, और वो भी मिट्टी के बर्तन में, वो एक अलग ही स्वाद होता है। तो आज ऐसे ही लोकगीत सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई और साथियों की आवाज़ में।

0: वंदना बहन, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये पुष्पा गोसाई की आवाज़ में ये लोकगीत, और देखिए इसमें कितनी नोक झोंक थी और सकोरा तेरा ठंडा पानी, वाकई में हमें पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि आजकल तो फ्रीज का ज़माना है और सकोरे का कहाँ है, मटके
1: बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ लोग अब देख के कि हमें जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए या हमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मिट्टी के घड़े अब किचन में आ गए हैं।
0: हाँ,
1: तो वो एक बहुत ही अच्छी पहल है लोगों की। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए और सुनवाते हैं अगला लोकगीत
0: महेंद्र शर्मा से
1: जी।

0: बिल्कुल, हरी भरी धरती रहेगी तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, ठंडक रहेगी और गर्मी भी कम लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला लोकगीत सुनवाते हैं
1: कृष्णपाल राठौर से।
0: जी।

0: तो वंदा बहन,
1: जी
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे इस रागनी को, लोकगीत, माफ कीजिए, लोकगीत को, और कलाकार थे कृष्णपाल सिंह राठौर।
1: जी तो ये तो लोकगीत देखिए नोकझोंक भरे होते हैं, और अगला लोकगीत भी हम ऐसे ही सुनवाते हैं, तो सुनते हैं वीणा ढिल्लोर की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे वीणा ढिल्लोर और सखियों की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत। और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी है संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं, अब से शाम के 5:30 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे खेलों पर आधारित कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं सिमरन।
3: नमस्कार साथियों।
2: सिमरन, आज के इस अंक में बात होगी फीफा विश्व कप की, जो 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होना है। साथ ही इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन की चर्चा होगी, बात नॉर्वे चेस की करेंगे, जहां प्रज्ञा नंदन ने मैग्नस कार्लसन को एक ही टूर्नामेंट में 2 बार हरा दिया है। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी पे भी बात होगी, पहली योगासन विश्व चैंपियनशिप जो कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है उस पर भी खास रिपोर्ट है। बात भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच जो T20 सीरीज हुई उस पर भी होगी। इसके अलावा भी अन्य खेल खबरें होंगी। तो क्यों ना सिमरन, हम शुरुआत करें फीफा वर्ल्ड कप से, दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल। तो पेश है ये फीफा वर्ल्ड कप पर जो ग्रुप बटे हुए हैं जो 48 टीमों के बीच, उसमें ग्रुप सी पर ये खास रिपोर्ट।

0: फीफा विश्व कप की शुरुआत का बिगुल बस बजने ही वाला है। तीन देशों अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के 16 शहरों में 48 टीमों के बीच 104 मैच खेले जाएंगे, जो रोमांच की नई पटकथा लिखेंगे। ग्यारह जून से शुरू होने वाले फीफा विश्व कप में टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया है, यानी हर ग्रुप में 4 टीमें हैं। फीफा विश्व कप में हमारी इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज चर्चा होगी ग्रुप सी की, जिसमें 5 बार की चैंपियन ब्राजील के अलावा मोरक्को, स्कॉटलैंड और हैती की टीमें हैं। ब्राजील और मोरक्को को इस ग्रुप से नॉकआउट दौर का दावेदार माना जा रहा है। ब्राजील के पास सर्वाधिक 5 बार विश्व चैंपियन होने का तमगा है, लेकिन यही उसके लिए दबाव का भी सबब है। सांबा की धुन पर थिरकते उसके दीवाने फुटबॉल प्रेमियों को 2 दशक से अधिक समय से विजेता ट्रॉफी का इंतजार है। कोच कार्लो एंसिलोटी की टीम में विनिसियस जूनियर, नेमार, राफिना, एलिसन, गैब्रियल और एड्रिक जैसे खिलाड़ी हैं। अगर नेमार अपने रुतबे के मुताबिक प्रदर्शन कर पाए तो दिग्गज पेले का ये देश इस बार फीफा विश्व कप में कमाल कर सकता है। विनिसियस और नेमार पर आक्रमण का दारोमदार रहेगा तो मिडफील्ड में ब्रूनो गुइमारेस, कैसेमिरो, लुकास शामिल हैं। पिछली बार टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। पिछला सेमीफाइनल 2014 में खेला, जहां जर्मनी ने उसे 7-1 से हराया। दोस्ताना मैचों में ब्राजील को फ्रांस से 1-2 से हार मिली, जबकि क्रोएशिया के खिलाफ टीम 3-1 से विजयी रही थी।
1: ब्राजील के बाद अब ग्रुप की दूसरी बड़ी टीम मोरक्को की बात करें तो 2022 में विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचने वाली ये टीम अब किसी भी बड़े प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने की क्षमता रखती है। अफ्रीकी क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए मोरक्को ने टिकट हासिल कर लिया था।
0: जी सिमरन, और मोरक्को की टीम में पेरिस सेंट जर्मन क्लब के अशरफ हकीमी और रियल मैड्रिड के ब्राहम डियाज भी शामिल हैं। पिछली बार मोरक्को ने स्पेन और पुर्तगाल जैसी टीमों के खिलाफ बड़ा उलटफेर किया था। अब देखना यह है कि छुपे रुस्तम मोरक्को अपनी सफलताएं जारी रख एलीट टीमों में अपनी गिनती शुमार कर पाती है कि नहीं। दुनिया की 8वें नंबर की टीम मोरक्को की पहली टक्कर 13 जून को ब्राजील से है।
1: वहीं स्कॉटलैंड की बात करें तो 28 साल बाद स्कॉटलैंड विश्व कप खेलने जा रहा है। 1998 के बाद पहली बार स्कॉटिश टीम विश्व कप में उतरेगी। यूरोपीय क्वालिफायर में दमदार प्रदर्शन करते हुए उसने सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था और अब उसकी नजरें नॉकआउट के दौर पर पहुंचने पर होंगी।
0: दुनिया में 43वें नंबर की टीम स्कॉटलैंड ने डेनमार्क को क्वालिफाइंग दौर में हराया भी था। टीम 8 विश्व कप खेल चुकी है, लेकिन कभी ग्रुप दौर से आगे नहीं बढ़ी। पहला मैच हैती के खिलाफ है, फिर मोरक्को और ब्राजील से खेलना है। स्कॉट मैक्टुमिनी पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते थे, उसके बाद 2024 में नेपाली क्लब में शामिल हो गए हैं।
1: स्कॉटलैंड के बाद अगर हैती की बात करें तो हैती की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। 1974 के बाद पहली बार हैती विश्व कप में वापसी कर रहा है। लगभग 5 दशक के इस इंतजार के बाद ये टीम फिर से फुटबॉल में सबसे बड़े मंच पर दिखाई देगी और अपने प्रशंसकों को यादगार प्रदर्शन करने की कोशिश भी करेगी।
0: क्वालिफाइंग दौर में टीम ने कोस्टारिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर को पछाड़कर फुटबॉल के इस महामेले में अपनी जगह सुनिश्चित की है। स्कॉटलैंड से अपने पहले मैच के बाद टीम को ब्राजील और मोरक्को से खेलना है। टीम के स्टार डकेंस नाजोन हैं और गोल करने की उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी।
1: कागजों पर ब्राजील इस ग्रुप का सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहा है, लेकिन मोरक्को की हालिया उपलब्धियों को देखते हुए उसे हल्के में लेना भी बड़ी भूल होगी। स्कॉटलैंड भी अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर नॉकआउट की दौड़ में रहेगा।

0: जी हाँ, फुटबॉल की बात को जारी रखते हैं और चर्चा करते हैं मडगांव में चल रही सेफ महिला फुटबॉल की, जहां आज भारतीय टीम को सेमीफाइनल में भूटान के साथ खेलना है। भारतीय टीम दो मैच में 6 अंक से ग्रुप बी में शीर्ष पर रही है। मालदीव को 11-0 से हराया था और बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से विजय रही थी। हालांकि भूटान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह भी लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। और जहां तक बात अन्य सेमीफाइनल की है, तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला चल रहा है और ताजा अपडेट तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थी।
1: तो अब बात करते हैं इंडोनेशियन ओपन की और सुनते हैं इंडोनेशियन ओपन पर ये रिपोर्ट। इंडोनेशिया ओपन 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा, जहां कुछ शानदार जीत मिली तो कुछ निराशाजनक नतीजे भी सामने आए। सबसे बड़ी खबर मिक्स डबल से आई, जहां भारत की रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी ने शानदार उलटफेर करते हुए विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर काबिज चीनी ताइपे की यांग हो हुआन और हु लिंग फांग की जोड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इस जीत ने भारतीय अभियान को नई ऊर्जा दी। हालांकि भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों के लिए एक निराशाजनक खबर भी सामने आई। पुरुष युगल में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इंडोनेशिया ओपन 2026 से हट गए हैं। सात्विक चोट के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके और ये जोड़ी आगामी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए रिकवरी और रिहैबिलिटेशन पर फोकस करेगी। पुरुष एकल में भारत के अनुभवी शटलर HS प्रणय का सफर राउंड ऑफ 32 में ही समाप्त हो गया। प्रणय को वियतनाम के युगेन हाई डांग के खिलाफ 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में 17-21, 21-16 और 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। तो इंडोनेशिया ओपन 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान जारी है। रोहन कपूर, ऋत्विका शिवानी गड्डे की बड़ी जीत, आयुष शेट्टी की चुनौती और प्रणय की करीबी हार के बीच अब भारतीय प्रशंसकों की नजरें अगले दौर के मुकाबलों पर टिकी रहेंगी। और अब आपको आज की ताजा खबर की तरफ लेकर चलते हैं। आज भारतीय खिलाड़ी और 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने चीन के 26 वर्षीय वेंग होंग यांग को हरा दिया है। 46 मिनट तक ये मुकाबला चला। आयुष शेट्टी अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और अब उनका मुकाबला हांगकांग के ली चिओ से होगा।
0: हाँ बिल्कुल सिमरन, अब हॉकी के मैदान पे चलते हैं और बात जापान में चल रही महिला एशिया कप अंडर 18 हॉकी की करें तो दोनों ही वर्गों यानी कि महिला और पुरुष दोनों टीमों से अच्छी खबर है। दोनों टीमों ने जीत हासिल की है। भारतीय महिला टीम ने सिंगापुर को 25-0 से रौंद दिया। इससे पहले भारत ने मलेशिया को 2-1 से हराया था, तो लगातार दूसरी जीत है। सिंगापुर के खिलाफ नौशीन नाज ने सबसे ज़्यादा 7 गोल किए, जबकि गीता श्री ने 5 गोल किए, स्वीटी ने भी 4 गोल किए। भारत के कुल 10 खिलाड़ियों ने गोल किए। गीता श्री को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रियंका मिंज ने भी मैच में हैट्रिक लगाई, जबकि दिया, नैन्सी सरोहा, श्रुति कुमारी, पुष्पा मांझी, रश्मिन कौर और संदीप कुमारी ने भी गोल दागे। भारत का सेमीफाइनल में 5 जून को चीन से और जापान का कोरिया से मुकाबला होगा। बात पुरुष वर्ग की करें तो भारत ने चीनी ताइपे को 13-1 से पराजित किया। मध्यांतर तक टीम 6-1 से आगे थी। जो आशीष हैं उन्होंने 3 गोल किए, जबकि 2-2 गोल सिद्धार्थ और गाजी खान ने किए। अन्य गोल करण गौतम, प्रेमचंद, केतन कुशवाहा, राहुल यादव और वरेंद्र सिंह ने किए।
1: अब बात करते हैं महिला क्रिकेट टीम की। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा अनिर्णायक मुकाबला टॉन्टन में खेला गया। इंग्लैंड ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया और सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की कप्तान चार्ली डीन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। ऐसे में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। भारत के लिए सर्वाधिक 56 रन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बनाए। हरमनप्रीत कौर अब तक अंक तक नाबाद रही थी। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके लगाए थे। इसके अलावा यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा ने भी 32-32 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने 181 रन का टारगेट 18.3 ओवर में 6 विकेट रहते चेज कर लिया था। एलिस कैप्सी इस रन चेज में इंग्लैंड की हीरो रही थी।

0: ने 119.70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंद में 82 रन की शानदार पारी खेली। कैप्सी ने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। उनकी ये बहुत अच्छी पारी भी रही थी। नाइट में 10 चौकों की मदद से वो नाबाद 70 रन उन्होंने भी बनाए थे। आपको बता दें कि 12 जून से इंग्लैंड में महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने वाला है। वर्ल्ड कप से पहले 8 जून को भारत वेस्टइंडीज तो 10 जून को इंग्लैंड के साथ वार्म अप मैच खेलेगा और ये दोनों टीमों का इससे पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच था। इस हार के बाद भारतीय टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: Me and Shifu both, I think we definitely are timing the ball well, but unfortunately are not able to contribute in big ways for the team. But yeah, again, for both of us, I think go back in the nets, keep working hard and make sure that come back stronger both of us as a opening pair, because I think both of us pride ourselves to give good starts and keep the momentum going. But unfortunately, we could not do that in this series. But yeah, again, we'll take it in our stride and try and work hard.
0: साथ ही साथ पुरुष क्रिकेट की भी बात करते जाएं तो भारतीय क्रिकेट टीम इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच न्यूजीलैंड का दौरा भी करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम होम समर सीजन 2026-27 के इस तहत मल्टी फॉर्मेट सीरीज का शेड्यूल जारी उन्होंने कर दिया है। दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक मैचों की संख्या के लिहाज से ये न्यूजीलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा घरेलू दौरा होगा। दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर से व्हाइट बॉल सीरीज के साथ होगी। इसके बाद वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे।
2: जी सिमरन, क्रिकेट की बात को ही जारी रखते हैं और बात T20 विश्व कप की करते हैं जो महिला वर्ग में खेला जाएगा और ये इंग्लैंड में होगा। 10 दिन उसके भी शेष रह गए हैं, जैसे फीफा विश्व कप में अब 9 दिन शेष हैं। तो अब 10वें संस्करण में 12 देश 24 दिनों में 33 मैच खेलेंगे। पिछली चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम है। अभी आपने पुरुष टीम का दौरा भारत के साथ जो होना है उसका जिक्र किया और पिछली चैंपियन T20 वर्ल्ड कप की महिला की न्यूजीलैंड है। भारत एक ही बार 2020 में फाइनल में पहुंचा है जब ऑस्ट्रेलिया ने उसे हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक 6 बार का T20 विश्व कप विजेता है महिला वर्ग में। और भारतीय महिला टीम की अगर बात करें तो उसके प्रदर्शन में निरंतरता है, लेकिन सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन इसके अलावा 4 बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और ये 4 बार ऐसा 2009, 2010, 2018 और 2023 में हुआ था जब भारतीय महिला टीम अंतिम 4 तक पहुंची थी। श्रोताओं, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है और यहां 70 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं और पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और उसकी मेजबानी भारत को मिली है। पेश है ये खास रिपोर्ट।

0: भारत में योग की जड़ें गहरी हैं। युगों युगों से यह भारत की संस्कृति में घुला मिला है और आज पूरा विश्व इसी योग का गुणगान कर रहा है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति का मार्ग भी प्रशस्त करके पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। पूरी दुनिया हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। अब यही योगासन खेल के रूप में भी अपनी वैश्विक पहचान बना रहा। इसी कड़ी में भारत को पहली योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली बार विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें दुनिया के 70 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनका एक ही नारा है, वन ब्रेथ वन स्टेज वन वर्ड, यानी पूरी दुनिया को एक मंच पर समेटे सुकून से भरी वो गहरी सांस जो दिल की गहराइयों में उतरे और विश्व को शांति और खुशहाली की राह पर ले आए। अहमदाबाद के एका एरेना में होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन योगासन भारत और विश्व योगासन की ओर से किया जा रहा है। 12 श्रेणियों में होने वाली प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक रिदमिक पेयर और टीम स्पर्धाएं होंगी। जूनियर यूथ और एलिट श्रेणी में 6-6 आयु वर्ग होंगे। भाग लेने वाले देशों में नेपाल, जापान, श्रीलंका, केन्या, ओमान, मॉरिशस और नीदरलैंड शामिल हैं। चैंपियनशिप का शुभंकर वीर द लॉयन है, जो साहस, संतुलन और भारतीय विरासत का प्रतीक है। भारतीय टीम का चयन पिछले माह सोनीपत में हुए ट्रायल के जरिए किया गया और उसके बाद अहमदाबाद के नरनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया। योगासन भारत के अध्यक्ष उदित शेठ मानते हैं, योगासन हमारी परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम है।
1: स्पोर्ट जो है यूथ को जाता है और पारंपरिक वैल्यूज वहाँ से उगते हैं, तो अगर हम अभी स्पोर्ट के माध्यम से जाए तो कल योगा वे ऑफ लाइफ तो वो जिएंगे ही। उनको न्यूट्रिशन का पता होगा, सस्टेनेबिलिटी का पता चलेगा, कंपटीशन का पता चलेगा और हमारी जो 5000 इयर्स की हेरिटेज है, योगासन स्पोर्ट जो है एक फ्यूजन है, मॉडर्न एंड हेरिटेज को साथ लेके आती है एंड दैट इज व्हाट द न्यू यूथ नीड। के 12 हमारे सेक्शंस हैं कंपटीशन के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग है, तो हमारे जजेस हैं FOP के चारों ओर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर एलिमिनेट हो जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, होल्डिंग टाइम होता है, स्टिलनेस होता है, कमिंग इनटू द आसना होता है, कमिंग आउट ऑफ द आसना होता है, तो पूरा हम मेजर करते हैं। 12 कैटेगरीज है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, पेयर है, रिदमिक है, आर्टिस्टिक है, ग्रुप है, सब जूनियर है, जूनियर है, सीनियर है, सीनियर ABC भी है, क्योंकि हमको अभी ये नया स्पोर्ट है, नया फेडरेशन है, तो हमको स्प्रेड करने की जरूरत है, तो जितना हम इंक्लूसिव रखें तो हमारे लिए भी अच्छा है, ग्लोबल में भी अच्छा है। धीरे धीरे जाके शायद ये 12 को हम 4 में लेके आएंगे, ये 6 कैटेगरीज एज ग्रुप के हैं जो 2 में लेके आएंगे, लेकिन अभी कंपटीशन के साथ बैलेंस करके स्प्रेड को भी बैलेंस करना पड़ता है।
0: पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के बारे में योगासन भारत के राम चावला बताते हैं, विश्व चैंपियनशिप का शुभारंभ एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए होगा।
2: बहुत ही भव्य उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और गुजरात सरकार के चीफ मिनिस्टर, खेल मंत्री भी वहाँ उपस्थित होंगे और अन्य बहुत गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। एक योग जो आश्रम से अरेना में आ रहा है और विश्व पटल पर छा रहा है, प्रोग्राम होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे, सभी फ्लैग मार्च भी करेंगे, लगभग जो 71 देशों से आए खिलाड़ी हैं अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, तो एक तरह से बहुत ही उत्साह नजर आ रहा है। 28 देशों से जो खिलाड़ी हमारे पास आ रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, बाकी अन्य कॉन्टिनेंट से भी आ रहे हैं और यूरोप से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, सभी कॉन्टिनेंट से खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, बहुत ही उत्साहित हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए।
0: वर्ल्ड योगासन की सचिव एकता मानती हैं कि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और एक खेल के रूप में भी योगासन की लोकप्रियता विश्व में और बढ़ेगी और एक दिन योगासन ओलंपिक का भी हिस्सा हो सकता है।
3: नेशनल टीम का पार्टिसिपेशन जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता है तो उस कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इस तरीके से जैसे जैसे हर देश अपने यहाँ योगासन का एक एक चैप्टर खोलता जाएगा, वैसे वैसे ये स्पोर्ट दुनिया में पॉपुलर होता जाएगा। इसी तरह से जब सर्टेन नंबर ऑफ कंट्रीज अडहियर टू दिस एज अ प्रोग्राम, एज अ फेडरेशन, देन वी हैव अ पॉसिबिलिटी टू गो टू द ओलंपिक।
0: योगासन न केवल खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए जरूरी है बल्कि खेल के मानचित्र पर भारत की सफलता के ग्राफ को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। योगासन को इस साल सितंबर अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया गया है। वर्ष 2030 में भारत की मेजबानी में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में योग भारत के कुल पदकों का योग भी बढ़ाएगा। पहली विश्व चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। भारत 2036 ओलंपिक का दमदार दावेदार है। ऐसे में ये विश्व चैंपियनशिप योगासन के ओलंपिक प्रवेश का नया सूत्रधार हो सकता है।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे भी है और जिस पर हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने भी देश को संदेश दिया था। तो सुनते हैं विश्व साइकिल दिवस पर ये जानकारी। हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिवस का उद्देश्य साइकिल के महत्व और उसके सकारात्मक प्रभावों को प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस 2026 की थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, यानी हरित भविष्य के लिए साइकिलिंग। ये थीम साइकिल को एक सरल, किफायती और शून्य उत्सर्जन वाले परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देती है। इस दिन पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया

0: सेवेरिया जी ने देश को संदेश दिया।
1: आप सभी को वर्ल्ड बाइसिकल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आइए आज वर्ल्ड बाइसिकल डे के अवसर पर हम सभी संकल्प ले कि साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और एक फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
2: बिल्कुल, साइकिलिंग के बाद बात 64 खानों के खेल यानी शतरंज की करते हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल मुकाबले में हरा दिया। ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रज्ञानंदा ने इस टूर्नामेंट में दूसरी बार मैग्नस कार्लसन को हराया है। पहले वो सफेद मोहरों से खेले थे, इस बार काले मोहरों से उन्होंने जीत हासिल की है और 12 अंक के साथ प्रज्ञानंदा तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। इससे पहले किसी एक टूर्नामेंट में कार्लसन को दो बार हराने वाले भी एक भारतीय ही रहे हैं और वो भारत के दिग्गज विश्वनाथन आनंद हैं, जिन्होंने 2007 में नीलारे शतरंज में ऐसा किया था। तो बात भारत के अन्य खिलाड़ियों की करें तो भारत के डी कुकेश को अपने क्लासिकल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके खिताब जीतने की संभावनाओं को झटका लगा है। महिला वर्ग में कुनारू हम्पी ने आमेड गेडन में जीत दर्ज की। दिव्या देशमुख को क्लासिकल मुकाबले में बिबिसारा से हार मिली। 8वें दौर के बाद बिबिसारा अस्सा उबायवा भारत पर पहुंच गई हैं। पुरुष वर्ग में 8वें दौर के बाद अमेरिकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली शो 14 अंक के साथ भारत बनाए हुए हैं। प्रज्ञानंदा शीर्ष दावेदारों में बने हुए हैं, जबकि गुकेश के 8 अंक हैं और वो 6वें स्थान पर हैं। उनकी चुनौती थोड़ी कमजोर पड़ी है। अगर प्रज्ञानंदा खिताब जीतते हैं तो नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय होंगे। महिला वर्ग में शीर्ष पर मौजूद बिबिसारा के 15.5 अंक हैं, अन्ना मोजीचेक के 10.5, जू चिनेर के 10 और भारत की दिव्या देशमुख के भी 10 अंक हैं और भारत की दिव्या देशमुख 4वें स्थान पर हैं। हम्पी 8 अंक से 6वें स्थान पर हैं।

0: बात डायमंड लीग की करते हैं, और जहां रोम चरण में भारत के सचिन यादव, जो कि भाला फेंक एथलीट हैं और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पिछले साल उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था। सिमरन, अब बात ट्रैक एंड फील्ड की करते हैं, तो कल यानी 4 जून से रोम में होने वाली गोल्डन गाला डायमंड लीग में भारत की सबसे बड़ी दिलचस्पी भाला फेंक एथलीट सचिन यादव के प्रदर्शन की रहेगी। यह सचिन के करियर की पहली डायमंड लीग है। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा चोट से उभरने और पुनर्वास कार्यक्रम के कारण इस चरण में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सचिन के पास इस बड़े मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन करने का अवसर है। सचिन ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.27 मीटर का अपना व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। सचिन को जर्मनी के जूलियन वेबर, चेक के याकूब वेल्टलेज, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, ओलंपिक चैंपियन जर्मनी की थॉमस रोहलर की चुनौती का सामना करना होगा। श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिरागा भी इस सत्र में 79 मीटर से अधिक की थ्रो कर चुके हैं। भाला फेंक के अलावा प्रतियोगिता में अन्य एथलीटों की बात करें तो 43 ओलंपिक और विश्व चैंपियन और 80 से अधिक वैश्विक पदक विजेता एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। 100 मीटर की रेस में अमेरिका के नोह लायल्स और इटली के मार्सेल जैकब के बीच एक अच्छी होड़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा लेट सिले टोबैगो भी दावेदार हैं। लंबी कूद में ग्रीस के मिल्टियाडिस हाई जंप में और न्यूजीलैंड के हामिश केर भी उनको चुनौती देंगे। महिला वर्ग की 800 मीटर की ओलंपिक चैंपियन ब्रिटेन की केली हॉजकिंसन 400 मीटर में दौड़ेंगी। 100 मीटर की चैंपियन जूलियन अल्फ्रेड 200 मीटर की रेस में भाग लेंगी। यह डायमंड लीग का चौथा चरण है। इससे पहले 3 चरण शंघाई, शियामेन और रबाट में हुए।
1: अब आपको लेकर चलते हैं WTT की ओर, जो कि नॉर्थ मैसेडोनिया में हो रहा है। WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस, जो कि स्कोपजे 2026 है, जहां पर भारतीय खिलाड़ी

0: यात्रियों ने काफी उतार चढ़ाव का भी सामना किया। तो सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: जी बिल्कुल, अब बात सिमरन से पहले करते हैं कुश्ती की। मंगोलिया के उलान बटेर ओपन सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है, जो 7 जून तक आयोजित की जाएगी, जिसमें पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन के अलावा महिला वर्ग की फ्री स्टाइल शैली के मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट में भारत के अलावा ईरान, चीन और बुल्गारिया जैसे मजबूत देशों के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। अस्ताना में जो अक्टूबर में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होनी है, उससे पहले ये एक क्वालिफाइंग और चयन प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण रैंकिंग सीरीज है। भारत की ओर से महिला वर्ग में 50 बार वर्ग में नीलम स्वेटी, जबकि 53 बार वर्ग में मीनाक्षी और मुस्कान, 55 में हंसिका लांबा, 57 में मनीषा, 59 में नेहा और मानसी, और इसके अलावा 62 वर्ग में नीतिका हिस्सा लेंगी। पुरुष फ्री स्टाइल में के 57 बार वर्ग में अंकुश और सुमित उतरेंगे। ग्रीको रोमन में अमन 77 बार वर्ग में, अंकुत कुलिया भी 77 बार वर्ग में, सुनील प्रिंस भी इसी भार वर्ग में हिस्सा लेंगे, जबकि रोहित 97 भार वर्ग में और नितेश इसके अलावा 130 में जोगिंदर राठी उतरेंगे। और बिल्कुल टेबल टेनिस की बात करते हैं सिमरन।
0: सुनते हैं टेबल टेनिस यानी वर्ल्ड टीटी कंटेंडर की ये रिपोर्ट।
2: नॉर्थ मैसेडोनिया में खेले जा रहे WTT कंटेंडर स्कोपजे 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफिकेशन और शुरुआती मुकाबलों में मिश्रित प्रदर्शन किया। महिला एकल वर्ग में भारत की स्वास्तिका घोष ने शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप 10 के मुकाबले में उन्होंने इटली की मिरियम कार्नवाले को 3-1 से हराया। स्वास्तिका ने पहला, दूसरा और चौथा गेम 11-3, 11-9 और 11-9 से अपने नाम किया। एक और मुकाबले में भारत की सिंड्रेला दास ने मेजबान नॉर्थ मैसेडोनिया की सारा स्टोजानवोस्का को एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराया। सिंड्रेला ने लगातार 11-3, 11-2 और 11-2 के स्कोर के साथ मुकाबला अपने नाम किया और शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया। हालांकि महिला एकल में भारत की हार्दिक पटेल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ग्रुप 9 के मुकाबलों में उन्हें लग्जमबर्ग की सारा डे नुट्टे के खिलाफ 1-3 से हार झेलनी पड़ी। हार्दिक ने पहला गेम 12-10 से जीता, लेकिन इसके बाद सारा ने लगातार 3 गेम 11-6, 11-3 और 11-6 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। पुरुष एकल वर्ग में भारत के स्वर्णेंदु चौधरी को स्पेन के राफेल डे लास हेरास के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले का स्कोर 11-6, 11-8 और 14-12 रहा। वहीं मुख्य ड्रॉ में भारत के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल मानव ठक्कर की चुनौती भी देखने को मिलेगी। पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में उनका मुकाबला पुर्तगाल के अनुभवी खिलाड़ी टियागो ओपलोनिया से होगा। इस मुकाबले पर भारतीय प्रशंसकों की खास नजर होगी। कुल मिलाकर WTT कंटेंडर स्कोपजे 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ शानदार जीत दर्ज की, जबकि कुछ खिलाड़ियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब सबकी नजरें मुख्य ड्रॉ के आगामी मुकाबले पर टिकी हैं।
1: जी हाँ, बात सिमरन फ्रेंच ओपन टेनिस की करते हैं। तो रूस की मीरा एंद्रीवा और यूक्रेन की मार्ता कोस्तयुक सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। महिला वर्ग के 19 साल की रूस की मीरा एंद्रीवा ने क्वार्टर फाइनल में रोमानिया की सोराना क्रिस्टो को 6-0, 6-3 से हराया, जबकि अन्य क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की मार्ता कोस्तयुक ने 7वीं वरीय यूक्रेन की एलिना स्वीटोलिना को 6-3, 2-6, 6-2 से पराजित किया। आर्या सबालेंका पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। सबालेंका ने जापान की नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से हराया था। और पुरुष वर्ग की बात करें तो 29 साल की जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव अंतिम चार में पहुंच गए हैं और इस दौर में उन्होंने 5वीं बार प्रवेश किया है। उन्होंने 19 साल के राफेल जॉर्डर को 7-6, 6-1, 6-3 से हराया। इसके अलावा ताजा अपडेट की अगर बात करें तो याकूब मेंसिक ने फ्रेंच ओपन के पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जो फ्रांसे को 6-4, 6-3, 7-6 से मात दी है। तो घड़ी की सुइयां हमें ज्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं। तो प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा और
0: सिमरन सारवान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, अभिव्यक्ति, संघर्ष और उत्कर्ष की अविरल यात्रा। वार्ताकार हैं कन्हैया झा, वरिष्ठ पत्रकार।
1: श्रोताओं, इस बार का हमारा विषय है हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, अभिव्यक्ति, संघर्ष और उत्कर्ष की अविरल यात्रा। दरअसल हिंदी पत्रकारिता अपने गौरवमयी 200 वर्षों की यात्रा पूरी करने जा रही है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड अखबार के

रूप में पहला बीज बोया था, तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि यह नन्हा पौधा एक दिन विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह यात्रा केवल कागज़ और स्याही की नहीं बल्कि भारत के पुनर्जागरण, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिकता की कहानी प्रतीत होती है। दरअसल हिंदी पत्रकारिता का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी बल्कि उस पर औपनिवेशिक पहरा था। यही कारण रहा कि सरकारी संरक्षण नहीं मिल पाने और डाक दरों के बोझ के कारण उदंत मार्तंड को महज 1.5 साल में ही बंद कर देना पड़ा। लेकिन इस अखबार ने भारत के लोगों के हित के लिए जो संकल्प लिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मंत्र बन गया। कुछ ही वर्षों बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे साहित्य से जोड़कर जन आंदोलन बना दिया। उनके समाचार पत्र कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन ने समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों पर प्रहार किए। वह दौर पत्रकारिता के मिशनरी स्वरूप का था जहां पत्रकार का अर्थ एक प्रकार से देश का सिपाही होना था। 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशक हिंदी पत्रकारिता के स्वर्ण युग के साक्षी रहे। यह वह समय था जब पत्रकारिता और आज़ादी का आंदोलन एक दूसरे के पूरक बन गए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समाचार पत्र सरस्वती के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली को एक नई पहचान दिलाई जिससे पत्रकारिता की भाषा बहुत समृद्ध हुई। वहीं दूसरी ओर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप के माध्यम से गुलाम भारत में लोगों के बीच क्रांतिकारी चेतना जगाई। उनकी शहादत आज भी पत्रकारिता के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर, शिव प्रसाद गुप्त के आज और महात्मा गांधी के नवजीवन जैसे अखबारों ने देश के कोने कोने में स्वराज की अलख जगाई। उस दौर के पत्रकार लाठी और जेल से नहीं डरते थे। उनके लिए कलम एक हथियार थी जिसे वे सत्ता के खिलाफ बेखौफ चलाते थे। वर्ष 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके बाद से पत्रकारिता का स्वरूप भी बदला। अब चुनौती एक बिखरे हुए देश को जोड़ने और विकास की मुख्य धारा से जनता को जोड़ने की थी। 1960 और 70 के दशक में अज्ञेय, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जैसे दिग्गजों ने हिंदी पत्रकारिता को वैश्विक दृष्टि दी। इसी दौर में दिनमान और धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं ने राजनीति, कला और संस्कृति पर गंभीर विमर्श शुरू किया। 1980 के दशक में प्रभास जोशी ने जनसत्ता के माध्यम से बोलचाल की भाषा में पत्रकारिता करके इसे एलिट क्लास के कमरों से निकालकर आम आदमी की चौपाल तक पहुंचा दिया। हालांकि 1975 का आपातकाल हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा। सेंसरशिप के बावजूद कई पत्रकारों ने सत्य को सामने लाने का साहस दिखाया जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता और मजबूत हुई। 1990 के बाद उदारीकरण ने मीडिया को एक उद्योग में बदल दिया। रंगीन अखबार, केबल टीवी और फिर 24 घंटे चलने वाले टीवी समाचार चैनलों के आने से सूचनाओं की बाढ़ आ गई। देखते ही देखते हिंदी समाचार चैनलों की टीआरपी ने अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती दी और उसे पछाड़ दिया। इससे अखबारों के सामने एक नया संकट भी पैदा हुआ। लेकिन हिंदी पत्रकारिता का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, लिहाजा इसने क्षेत्रीय स्तर पर अपना विस्तार किया। राष्ट्रीय समाचार पत्रों के क्षेत्रीय संस्करणों ने ग्रामीण भारत में हिंदी पत्रकारिता की पैठ बहुत मजबूत की। स्थानीय समाचार पत्रों के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया रुझान सामने आया जिसे अखबारों ने समझा और प्रत्येक गांव तक पहुंचने में वह सक्षम हुआ।
अब डिजिटल युग में हिंदी पत्रकारिता ने तेजी से बदलाव

0: अपनाया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रसार ने खबरों की पहुंच को व्यापक बना दिया है। अब समाचार केवल अखबारों तक सीमित नहीं रहे बल्कि मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं। यह सही है कि डिजिटल युग ने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी हैं। पहले जहां समाचार केवल अखबारों और टीवी तक सीमित थे, वहीं आज स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से हर व्यक्ति तक तुरंत पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ऐप्स ने खबरों को तेज, सुलभ और व्यापक बना दिया है। अब गांव-गांव तक हिंदी में समाचार आसानी से पहुंच रहे हैं, जिससे आम आदमी की भागीदारी बढ़ी है। परंतु इस डिजिटल विस्तार के साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। फेक न्यूज, अफवाहें और बिना सत्यापन के खबरें तेजी से फैलती हैं, जो समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। कई बार टीआरपी और क्लिक बटोरने के चक्कर में खबरों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। ऐसे समय में हिंदी पत्रकारिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज 2026 में हम एक बिल्कुल अलग धरातल पर खड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब समाचार लिख रहा है और सोशल मीडिया के दौर में हर नागरिक एक प्रकार से पत्रकार बन चुका है। स्मार्टफोन आज का सबसे बड़ा मीडिया है, लेकिन इस तकनीकी छलांग के साथ कुछ गंभीर संकट भी सामने आए हैं। इनमें सबसे बड़ा संकट है फेक न्यूज। दरअसल सूचना की गति बढ़ने से तथ्यों की जांच यानी फैक्ट चेक का मामला कमजोर हुआ है। वहीं दूसरी ओर टीआरपी और व्यूज की होड़ ने पत्रकारिता की गंभीरता को प्रभावित किया है। विज्ञापन और समाचार के बीच की रेखा धुंधली हुई है। हिंदी पत्रकारिता ने इन दो शताब्दियों में भाषा को बचाया, लोकतंत्र को संभाला और समाज को आईना दिखाया। आज हिंदी पाठक संख्या के मामले में विश्व की अग्रणी भाषाओं में से एक है। डिजिटल पोर्टल्स और स्वतंत्र यूट्यूब पत्रकारिता ने मुख्यधारा मीडिया के एकाधिकार को चुनौती दी है, जो लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत है। कहा जा सकता है कि उदंत मार्तंड से शुरू हुई यह यात्रा आज मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में चुनौती तकनीक नहीं बल्कि वह शाख होगी जिसे हमारे पूर्वज पत्रकारों ने अपने खून पसीने से कमाया था। 200 वर्षों का यह पड़ाव हमें यह याद दिलाता है कि माध्यम चाहे पत्थर हो, कागज हो या फिर पिक्सल, पत्रकारिता का धर्म हमेशा सत्य और लोकहित ही रहना चाहिए। हिंदी पत्रकारिता ने अपने 200 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह यात्रा संघर्ष, समर्पण और निरंतर विकास की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यह यात्रा न केवल गौरवपूर्ण है बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणादायक भी है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, अभिव्यक्ति, संघर्ष और उत्कर्ष की अविरल यात्रा। वार्ताकार थे कन्हैया झा, वरिष्ठ पत्रकार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष द्विवेदी मनोज।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
3: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः 1,000 कोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। कर्णाटक राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस दलात निष्कासित।

0: टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् पक्षे प्रायः षष्टि विधायकाः सन्ति। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डः एकविंशति जनाः मृताः। अपि च भारतं 25-2000 वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकं जातम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इन्धन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः 1000 कोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। एषा सहायता योजना 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थम् अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। आर्थिक सम्बद्धया मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 360 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च एत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति। अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीय वर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक तो विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी और कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं। जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: राष्ट्रपतिः सर्वासां संस्थानां हितधारकान् आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मानजनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम्।
1: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन तो एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए, कहां तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं। लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
0: कर्नाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः शपथ ग्रहणं कृतवान्। कर्नाटक राज्ये कांग्रेस विधानमण्डलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25तमः मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च 12 मन्त्रिणः अपि मन्त्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम। लोकेंद्र भाई देखिए, हम अपने भाइयों से बातचीत करेंगे, उनका मनोरंजन करवाएंगे और एक जानकारी भी दिलवाएंगे। तो आज जैसे कि विश्व साइकिल दिवस है, आपको पता है, और साइकिल के बारे में अगर कहते हैं, जैसे हमारे पहले बड़े बुजुर्ग थे तो कहते थे कि साइकिल की एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया होती है। और साइकिल जो कि हर साल 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, और इसका मुख्य उद्देश्य कि एक किफ़ायती, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधना के रूप में मान्यता है इसकी, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ जलवायु को भी बेहतर रखती है।
1: बिल्कुल वन्ना बहन, और देखिए इसके साथ साथ नियमित रूप से साइकिल चलाने से हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं और साथ साथ शरीर की जो रक्तचाप है वो भी अच्छा रहता है
0: जी।
1: और इसमें देखिए, इसके अलावा जो हमारा व्यायाम है, हम जो कसरत करते हैं, उसके से हमारे हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। और इसमें अतिरिक्त कैलोरी कम करने में मदद करता है, मोटापे के खतरे को घटाता है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी बीमारियों से भी कम करता है।
0: बिल्कुल, ये तो थी हमारे स्वास्थ्य की बात। और देखिए पर्यावरण की अगर बात करें तो साइकिल परिवहन का जो शून्य प्रदूषण है, मतलब उसका कोई प्रदूषण नहीं होता उससे, और इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ईंधन की खपत में भी कमी आती है, जो इसे स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: बिल्कुल देखिए वन्ना बहन, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ अपने भाइयों के, क्योंकि आज का जो दौर है ना, भाग दौड़ बड़ी वाली जिंदगी है, तकनीकी प्रधान जीवन शैली में जो सारी गतिविधियाँ को लगातार कम होती जा रही हैं, उसमें ये साइकिल का जो है बहुत उच्च मतलब वो है योगदान है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि पहले लोग बाग साइकिल से अपना काम कर लेते थे, तो इधर हो जाते, उससे हमारा पर्यावरण भी दूषित होने से बचता था। लेकिन आज जो हमारी जो जनरेशन है, कहीं भी जाती है तो चलो गाड़ी निकाल लें, बाइक निकाल लें, कुछ में उससे जो धुआं होता है उससे पोल्यूशन बढ़ता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है।
0: बिल्कुल देखिए, और आज तो पर्यावरण की बात हुई, लेकिन साइकिल से आर्थिक बचत में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा है। कि अगर जैसे हमारी थोड़ी सी, हमें कहीं जाना है, थोड़ी बहुत दूर जगह जाना है, तो अगर हम बाइक से या कार से या स्कूटर से नहीं जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो हमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं होती, उससे भी हम बच जाते हैं, उसके खर्चे से भी बच जाते हैं, और उसके रख रखाव में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये नाम मात्र को खर्चा होता है। और ये सभी लोगों के लिए बेहतर है, कोई गरीब हो कोई अमीर हो, इसमें ये नहीं है कि भाई बड़ा आदमी है तो कार खरीद सकता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन साइकिल सब खरीद सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतर विकल्प है। और जागरूक करने की ज़रूरत है आज के टाइम में तो ज़रूर, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो आदमी को अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो साइकिल की बात थी, आइए सुनते हैं, मनोरंजन करवाते हैं अमित तेवतिया से।

0: देखिए लोकेंद्र भाई, गाड़ी जरूर लेट हो सकती है लेकिन साइकिल लेट नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल
0: असली बात है ये, हमारा ऐसे लोकगीत को सुनवाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि भाई गाड़ी लेट हो सकती है लेकिन अगर आप साइकिल से चलोगे तो लेट नहीं पहुंचोगे, अपने घर
1: बिल्कुल
0: टाइम से पहुंच जाओगे।
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ते हैं और देखिए, आज हम एक वार्ता अपने भाइयों को सुनवाएंगे जो बहुत ही अच्छी जानकारी है कि गर्मियों के मौसम में किस तरह हमारे जो जलीय जनित
1: बीमारियां हैं।
0: बीमारियां होती हैं, जल से जो हमारी बीमारियां होती हैं उनसे हमें कैसे बचाव हो सकता है उनका, तो ऐसी ही एक जानकारी हमारे भाई सुनेंगे।
1: बिल्कुल अपने भाइयों को बता देते हैं, जिसका विषय है गर्मियों में जल जनित रोगों से बचाव,
0: जी
1: और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंदन कुमार ILBS, जो कि नई दिल्ली से हैं। तो सुन लेते हैं ये जानकारी।
2: श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जल जनित रोग वे बीमारियां हैं जो दूषित पानी पीने से या उनके संपर्क में आने से फैलती है। देखिए, जब पानी में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं तो वह

0: हमारे शरीर में प्रवेश करके विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें दस्त, पेचिश, हैजा, टाइफाइड और पीलिया प्रमुख हैं। जब हम दूषित पानी पीते हैं, वह सीधे हमारे पाचन तंत्र में जाता है। सबसे पहले पेट और आंतें प्रभावित होती है। यही कारण है कि जल जनित रोगों में सबसे अधिक शिकायतें दस्त, उल्टी, पेट दर्द और आंतों के संक्रमण की होती है। दस्त सामान्य लग सकता है, लेकिन यह विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में खतरनाक भी हो सकता है। लगातार दस्त होने से शरीर में पानी और लवणों की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। यदि समय पर उपचार ना मिले तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। कभी-कभी यह जानलेवा भी हो सकती है। देखिए, साधारण दस्त में मल बिल्कुल पतला आता है, जबकि पेचिश में मल के साथ खून या मवाद भी आ सकता है, जिसके साथ पेट में ऐंठन और बुखार भी हो सकता है। यह आंतों के गंभीर संक्रमण का संकेत है। हैजा एक गंभीर जल जनित रोग है। इसमें रोगी को बार बार पानी जैसे दस्त होते हैं और कुछ ही घंटों में शरीर से अत्यधिक पानी की कमी हो जाती है, जिसे हैजा को चिकित्सा जगत में आपात स्थिति माना जाता है। जी हाँ, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। इसमें लंबे समय तक बुखार, पेट दर्द, कमजोरी और भूख न लगने वाली समस्याएं होती हैं। यदि समय पर उपचार न मिले तो यह आंतों में जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा यह आंतों के अलावा और अंगों को भी संक्रमित कर सकती है। दूषित पानी के माध्यम से फैलने वाले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस लीवर को संक्रमित करते हैं। इसी संक्रमणों के कारण पीलिया होता है, जिसके प्रमुख लक्षण हैं आँखों और त्वचा का पीला होना, गहरे रंग के मूत्र होना, भूख कम होना, उल्टी जैसा मन होना, अत्यधिक थकान और कभी-कभी पेट में दर्द। यदि यह लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। अधिकांशतः मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में, विशेषकर गर्भवती महिलाओं में, हेपेटाइटिस ई गंभीर रूप ले सकता है। इसीलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बरसात के दौरान सीवेज और गंदगी जल स्रोतों में मिल जाती है। हैंडपंप, कुएं, तालाब और पाइपलाइन का पानी भी दूषित हो जाता है। इसलिए यह मौसम में विशेषकर सावधानी की आवश्यकता होती है। बचाव के कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय हैं। केवल स्वच्छ जल और सुरक्षित पानी का प्रयोग करें। पानी को उबालकर या फिल्टर करके पिएं। पानी को हमेशा ढक करके रखें। शौच के बाद और भोजन से पहले साबुन से हाथ धोएं। खुले में शौच ना करें। फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर खाएं। खुले में रखे खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। सबसे पहले रोगी को ओआरएस का घोल देना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। छोटे बच्चों में स्तनपान जारी रखना चाहिए। यदि बार बार दस्त हो, उल्टी हो या तेज बुखार हो या रोगी बहुत ही कमजोर दिखाई दे तो निकट के स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। मेरा संदेश बहुत ही सरल है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ हाथ और स्वच्छ वातावरण ही जल जनित रोगों से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो दस्त, टाइफाइड, हैजा, पीलिया जैसी बीमारियों से अपने आप को और अपने परिवार, समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार।
1: देखिए लोगनंदन भाई, ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और जैसे कि मानसून आने वाला है और बरसात का मौसम भी आएगा, तो उस टाइम पे हमें पानी से किस तरह अपना बचाव करना है, स्वच्छ पानी पीना है। मतलब गंदा पानी बिल्कुल, पहले बात तो अपने आसपास ही गंदगी ना रखें। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, पानी कहीं भरने ना दें। उससे भी जो मच्छर मक्खी होते हैं वो भी बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। और साथ ही साथ अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। ये सारी बात हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताई। और आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं बहुत ही अच्छा सा एक

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे मस्त राम और सुनीता चौधरी की आवाज़ में ये रागनी। और देखिए, बात कर रहे थे हम स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से ही संबंधी हमारी एक योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी, वंदना बहन।
0: जी
1: और ये योजना जो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए किया, और
0: जी
1: इसका उद्देश्य जो है कि लोग हम ग्रामीण जो भाई बहन हैं उनकी सेहत पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। देखिए, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, ग्रामीण जनता विशेषकर महिलाओं और बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं,
0: जी
1: बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना है।
0: जी बिल्कुल। और ये तो थी स्वास्थ्य की जानकारी। और देखिए, आगे बढ़ते हैं और अपने भाइयों को एक और रागनी सुनवाते हैं करमवीर की
1: और
0: आवाज में।
1: हाँ, किस्सा है गोपीचंद से।
0: जी

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे करमबीर की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था गोपी चंद का। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर, संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट

0: टू पार्टिसिपेट इन दिस उनको एक स्टेबल ETF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: तो वो सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है,
1: हाँ
0: क्योंकि अगर आपको लू लग जाती है या आपको किसी वजह से कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो आप फर्स्ट पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें?
1: देखिए बिल्कुल बंदा, मैंने आपने सही कहा कि देखिए ये मौसम जो इस टाइम गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, उसमें हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, क्योंकि हमारी जो किसान भाई हैं देखिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर मेहनत करने के साथ साथ अगर उन्हें लू लग जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उनको स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल। और देखिए, जब कहते हैं ना, जब लू लग जाती है तो आपको उल्टी, दस्त, सर में
1: हैजा,
0: दर्द, इस
1: टाइफाइड
0: तरह
1: वगैरह।
0: की बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इनसे बचाव करने के लिए आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें, और साथ ही साथ इस तरह का खाना खाएं जो तरल पदार्थ हैं। जैसे आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, अगर फ्रूट्स नहीं है तो खेत में बैठे तो खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीज़ें भी हैं, वो भी खाते रहें। साथ ही साथ अपने पास पानी का घड़े भर के इंतज़ाम रखें कि भाई पानी ज़रूर होना चाहिए। नींबू पानी आप ले सकते हैं, कि भाई फ्रिज का पानी में आप फ्रिज का पानी यूज ना करें। नींबू का पानी अगर आप घड़े के पानी में ही बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नुकसान भी नहीं करेगा और आपके शरीर में भी, आपके शरीर को भी हाइड्रेट करेगा।
1: और देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, इसके साथ साथ जो हमारा पशुधन है उसका भी इस मौसम में विशेष रूप से ध्यान देना है,
0: जी
1: और उनको ऐसी जगह बांधना है कि उनके हवा तो लगे लेकिन धूप ना लगे।
0: बिल्कुल। और गर्म हवा ना लगे, ये भी एक बड़ी बात है कि हवा लगे लेकिन गर्म हवा ना लगे उनको। अगर आप कमरे में बंद करते हैं, किसी मतलब छाया के वाले स्थान पे उन्हें रखते हैं, तो वहाँ पे बोरी जो होती है ना, उसको भिगो के डाल दें, तो
1: उसे
0: जो
1: तुम
0: हवा आएगी वो
1: ठंडी
0: ठंडी होकर
1: लगेगी।
0: आएगी। कूलर का, पंखे का, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह भी पहले ज़माने के लोग ऐसी चिक डाल के उसके ऊपर
1: हाँ
0: पानी डाल देते थे, तो ठंडी हवा बन के अंदर आती
1: हाँ
0: थी।
1: इसके साथ साथ देखिए पशुओं के लिए दिन में कई बार साफ और ठंडा पानी उपलब्ध कराना चाहिए, और
0: जी
1: गर्मी के में शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। अगर पशुओं को अगर ऐसा होता है, पानी की कमी होती है, तो उन्हें परेशानी होगी, और उनके इस मौसम में हरे चारे का संतुलित आहार और खनिज मिश्रण और नमक का उचित मात्रा में शामिल करें, और चारा सुबह और शाम के समय दें, और ठंडा समय मतलब ठंडे समय में भी उसका खिलाना लाभकारी है। इसके साथ साथ वंदा बहन, मैं अपने भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि पशुओं को दोपहर में जो बाहर बांधते हैं उसको ठंडी जगह पर, जैसे हमने पहले भी कहा, उसको ठंडी जगह पर बांधना चाहिए, और उन्हें शुद्ध शुद्ध पानी देना चाहिए, ताकि वो हमारे
0: बिल्कुल।
1: पशुधन हैं उनका विशेष रूप से ध्यान देना है।
0: आपको अपना और अपने पशुधन का विशेष रूप से ध्यान रखना है इस गर्मी भरी लू से भरे हवाओं से। और आइए सुनते हैं ये एक हमारी कृषि समाचार
1: किसान
0: संध्या गुप्ता से, जो कि हमारे
1: भाइयों से
0: किसान
1: बात कर रही
0: भाइयों
1: हैं,
0: से बातचीत कर रही हैं।
1: उन्होंने अपने अपने अनुभवों को साझा किया, आइए सुनवाते हैं अपने भाइयों को।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में आइए सुनते हैं आम की बागवानी करने वाले किसानों के अनुभव।
3: मेरा नाम तरुण अग्रवाल है, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कस्बा कांधला का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में पूर्व से ही बाग और खेती होती आई है, मतलब मैं कहूँ तो पिछली 7 पीढ़ियों से, और हमारे परिवार में फिलहाल लगभग 550 बीघा खेती की भूमि है। अगर आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखें तो मल्टी लेयर फार्मिंग, मल्टी क्रॉप फार्मिंग में ज्यादा लाभ किसानों को मिलता है। मैं भी उसी ट्रेंड पे हूँ। आम का हमारा एक पुराना बाग, बाबा जी के समय का 100 बीघे का बाग कांधला में है। उसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, राम केला, डेंगा, मालदा, लेकिन उसके बाद हमारा एक कृषि फार्म 400 बीघे का कांधला से 8 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहां पर 2012 में मैंने एक तो लंगड़ा, चौसा, राम केला तो लगाया ही, लास्ट ईयर ही जो पूसा की नई वैरायटी आई है आम की, कुछ रंगीन वैरायटी है वो मैंने वैरायटी अभी लगाई है, अभी उनपे फ्रूटिंग नहीं आया। लाडवा जो है कुरुक्षेत्र में, वहां पे हरियाणा हॉर्टिकल्चर का एक सेंटर है, वहां पे मैंने जाके वो वैरायटी देखी है, वहीं से प्रेरणा लेके मैंने वैरायटी अपने यहाँ लगाई है। देखिए जिस जमीन में कोई खेती होती है, चाहे गन्ना करें, गेहूं करें, कुछ भी करें, उस जमीन में वो कैसी भी मिट्टी है, वैसे तो दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है, वहां पर आम हो या कोई और वैरायटी हो, कोई भी क्रॉप हो, वो हो जाती है। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां पे आम के आपने देखा होंगे बहुत सारे बाग पहले देखने को मिलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आम से आय उतनी नहीं होती, 15-20 साल पहले आम का जो मूल्य होता था बाजार में वो 15-20-30 रुपए किलो, आज वो मूल्य 40-50-60 रुपए किलो, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ आम के मूल्य में नहीं आया है। हमें बहुत सारे स्प्रे करने की आजकल जरूरत पड़ने लगी, वो

0: पढ़ने लगी कि ये जो बागों के आसपास पोल्ट्री फार्म खुल गए तो वहां पे तरह तरह के कीटाणु होते हैं, वो सब फसलों पे अटैक करते हैं, उसका नुकसान हर फ्रूट्स को होता है। तो सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि जो कम से कम ग्रीन लेयर है जहाँ पे बाग होते हैं ज्यादा, वहां पर इस तरह पोल्ट्री फार्म खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसके नुकसान होता है। इसीलिए आम की तरफ थोड़ा सा कम रुझान हुआ है, लेकिन हम क्योंकि पुराने जमाने से आम की खेती करते आ रहे हैं, मैंने भी नई वेराइटियां भी लगाई हैं, आम एक बहुत अच्छी क्रॉप है अगर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, समय समय पर जब जिस चीज की जरूरत है, मान लिया कोई भी आपको नजर आए कि कोई बीमारी आ गई, कोई कीड़ा आ गया, तो तत्काल किसी वैज्ञानिक से राय लेकर और उसका उसी समय जो भी सही दवाई हो उसका स्प्रे करें। और आम जो है या कोई भी पेड़ है वो भी हमारी तरह ही है, उसको भी सभी आवश्यक पोषक तत्व तो चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि आम की कुछ क्रॉप में एक साल फ्रूटिंग होती है, एक साल नहीं होती, उसका कारण यही है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस। अगर आम के पौधे को आप समय समय पर पूरा पोषक तत्व दें तो आप इस साइकिल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो आम के जो पौधे हम लोग लगाते हैं वो जुलाई बरसात खत्म होने की जब तरफ होती है और गर्मी थोड़ा कम पड़ती है, क्योंकि गर्मी भी मान जाता है नया पेड़ और पाला भी मानता है, तो दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए हम इसको लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जो वेराइटी अब पूसा की नई आई है, हाई डेंसिटी उनको बोलते हैं, मतलब वो कम दूरी पर भी लग जाते हैं, जैसे चौसा और लंगड़ा जो वैरायटी है वो 16 गज पे लगते हैं, यानी कि 16 या 48 फिट पे कम से कम लगाना चाहिए। लेकिन जब आम का पेड़ लगभग 10 साल बाद अच्छे से फल देना प्रारंभ करता है तो उस बीच में हम क्या करें 10 साल तक, उसके बीच में हम ये कर सकते हैं कि आम के बिल्कुल मध्य में यानी कि 24 फुट पे नाशपाती का पेड़ लगा सकते हैं, 24 फुट के बीच में यानी कि 12 फिट पे जैसे कि मैंने किया आड़ू लगा सकते हैं और अमरूद लगा सकते हैं। वो इसलिए आड़ू और अमरूद की जो आयु मानी जाती है वो लगभग 15 से 20 वर्ष मानी जाती है, तो इतने आम फल देना स्टार्ट करता है इतने वो समाप्ति की तरफ होते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं, आम और नाशपाती तैयार हो जाती है, और दोनों ही क्रॉप आज किसान को बहुत अच्छी आमदनी दे रही हैं। जो आम की वेराइटीज हैं वो अलग अलग समय पर तैयार पकती हैं, जैसे मालदा हमारे यहाँ एक वेराइटी है, वो सबसे पहले शुरू होती है, उसके बाद दशहरी आता है, उसके बाद लंगड़ा आता है, फिर उसी बीच में रामकेला आ जाता है जो अचार के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद चौसा आता है। तो जब आम पे हल्का सा येलोइशपन आना शुरू हो जाए पेड़ पे लगे हुए तो उसको तोड़ लेना चाहिए, और उससे पहले भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो वो अधपका होता है, उसके अंदर स्वाद नहीं रहता, उसमें खट्टापन रहता है, और कभी कभी अपने आप जो पेड़ फल तैयार हो जाता है तो वो टपक भी जाता है, जिसको बोलते हैं टपका, तो उसमें जो स्वाद होता है वो किसी में नहीं होता। और मंडी के भाव का तो आपके हाथ में है नहीं कि कब आपको भाव अच्छा मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये सब मांग और पूर्ति का खेल है।
1: मेरा नाम मोहम्मद अंसार है, मैं सियाली का रहने वाला हूँ और बाग आम का भी है। फसल हमारे पास में चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, बम्बई है, ये नस्ल है हमारे पास 4-15 बीघे बाग है अभी फिलहाल हमारे पास में, और तकरीबन 50 साल हमारे पास में हो गए बाग को हमारे पास, यानी तकरीबन 25 फुट पे ये पेड़ लगता है, 25 फीट ऐसे चौड़ाई में, यानी जो आपस में मिले ना पेड़, फासला यानी 25 फीट लगता है, कहीं लंगड़ा लगा हुआ है तो कहीं दशहरी है तो कहीं चौसा है, तो ऐसे है सब, एक पेड़ बीच में लंगड़े का, चौसे का, बम्बई का, ऐसे लगाते हैं दशहरी, ऐसे एक एक एक पेड़ छोड़ के, बस पानी देना है इसको और कुछ नहीं, नलाई वलाई बस इसे ही, पूरा पेड़ हो जाता है या आम आने लगते हैं तो फिर इसकी खुदाई होती है, कसले से फिर इसकी खुदाई होती है, इसमें खाद भी लगता है, इसकी फिर धुलाई होती है, तकरीबन 3 साल के बाद फल देने लग, ये तो अब आने के ऊपर बात है कि एक कितना बड़ा पेड़ है वो भी है, कुंटल भी निकल जाता है एक पेड़ पे, 50 किलो भी निकल जाता है, 25 किलो भी निकल जाता है, आम के ऊपर बात है कैसा फल आना है। यहाँ से तो सारा माल ये आजादपुर मंडी में जाता है दिल्ली, कुछ ऐसे होते हैं व्यापारी जो कलकत्ते से खुद ही व्यापारी लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ, वो तोल के हिसाब से भी लेते हैं, 50 रुपए धड़ी, 100 रुपए धड़ी, जैसा मतलब रेट निकल गया आम का। तो गत्ते के डब्बे, पहले लकड़ी के डब्बे आते थे, अभी तो गत्ते के डब्बे आते हैं छोटे छोटे, उसमें भी ये भरा जाता है, डंकी से टूटते कुछ चढ़ा देते हैं ऊपर, ऊपर चढ़ के नीचे गिराते हैं, अगर पक्का है तो कुछ नीचे वो करना पड़ेगा, कपड़ा वपड़ा बिछाना पड़ेगा कि जिससे आम दगीला ना हो गिरने के बाद, और अगर आप नीचे कच्चा है तो आप ऐसी तोड़ भी झटका मार के डंकी से तोड़ सकती है। सबसे महंगा चौसा है, उसके बाद में फिर ये लंगड़ा है, दशहरी है, ये सब फिर एक भाव में आ जाते, जो आंधी आती है या तूफान आता है तो ये आम को मरज कोई नहीं लगता, बस ये कि झड़ जाता है और बारिश बारिश होती है उसमें कोई वो नहीं है खतरा, उसमें लिखा वो इकट्ठा करके डब्बों में भर के दिल्ली आजादपुर भेज दिया जाता है। हाँ, आम की और फुलवारी की नर्सरी भी है हमारे पास में को। अभी पहले तो ये बरसात के मौसम में ज्यादा लगता था जब बारिश होती थी, लेकिन अभी तो वो थैली में है तो अभी किसी भी मौसम में लगा सकती हो। हमने अभी गुड़गांव में लगवाया है एक। हाँ, हम दिखाते हैं उनको लगा के कि ऐसा लगेगा, या ऐसे बता देते हैं कि इतने इंच पर लगना है, इतने फुट पर लगना है, ऐसे लगना है, ऐसे सब कुछ वो उनको हम बता के जब वो कर लेते हैं तो फिर वो जाकर लगा लेते हैं, या फिर हम लोग खुद ही वो हमें ठेका दे देते हैं कि भाई आप खुद ही लगाओ खुद ही, हम तो जो बताओ कितने का, फिर तो फिर हम उनको उसी हिसाब से पैसे बता देते हैं, वो हमें पैसे दे देते हैं, हम जाकर अपनी लेबर जाकर खुद ही लगवा देते हैं। हम बाग भी लगाते हैं आम का और बागवानी भी करते हैं। आपके देखो, आपके ज्यादा महंगा नहीं रहेगा माल, आपके सस्ता ही रहेगा। ये ऐसा भी हो जाता है यहाँ हमारे पास में, यहाँ 10 रुपए किलो भी मिलता है, क्योंकि यहाँ बाग वगैरह ज्यादा है। यहाँ का माल ज्यादातर आजादपुर मंडी में जाता है, दिल्ली और कहीं नहीं जाता, कलकत्ते भी जाता है, लेकिन वो खुद व्यापारी आते हैं कलकत्ते के आड़ती लेने के लिए।
2: मेरा नाम मलिखान सिंह है, ग्राम पोस्ट बछाछा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। 1 एकड़ में बाग है, मतलब 5 बीघा। बाग लगाए तो करीब करीब 35 साल हो गई हमको, और इसमें दशहरी भी है, लंगड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, टिकारी भी बोलते हैं, फजली भी है, चौंसा भी है, ये देसी भी है, ये जातियाँ प्रजातियाँ हैं। करीब 4-5 पौधे फजली के हैं, बलुई दोमट भी है उसमें भी हो जाता है, और ये मोटी मिट्टी उसमें भी हो जाता है। सबसे जल्दी पकने वाली वैरायटी है दशहरी। चौंसा जो है जुलाई अगस्त में पकता जा करके, और लंगड़ा वो भाई लंगड़ा की पोजीशन है, तो अगर बढ़िया पैदावार ले तो 3 वर्ष के बाद ही, 3 वर्ष पहले पौधे फल नहीं लेते हैं, उसके बाद 4-5 साल का हो जाता है, उसके बाद फल चालू हो जाता है उसमें। 1 वर्ष तो आम बहुत अच्छा आएगा, और द्वितीय वर्ष में उसमें फल कम आएगा, किसी पे आता फल किसी पे नहीं आता फल। सितंबर अक्टूबर में पौधों के नीचे गुड़ाई वगैरह करनी पड़ती है, खाद वगैरह देनी पड़ती है, अप्रैल मई और जून में इनमें सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि फल वगैरह अच्छा आता है, फल में बढ़ोतरी होती है। जाला लगा करके तोड़ते पेड़ों पर चढ़ करके, और ये बांसों में लगी बना करके, और उसमें जाला लगा करके तोड़ते हैं, जो कि आम खराब ना हो, तोड़ करके करेटों में रख करके, और पक जाते हैं आम, और उसके बाद फिर मार्केट में बेचते हैं, खुले मार्केट में, खुले बाजार में अपने अपनी कीमत के हिसाब से बेचते हैं। दशहरी जो आम है वो जून से तोड़ना चालू हो जाता है, करीब करीब लगभग नुकसान हो जाता है जब आंधी या तूफान हो आता है, 20-30% नुकसान हो जाता है। मार्केट मंडियों में ले जाते हैं, मंदा संदा जैसा कुछ है तैसा बेचते हैं। सबसे बढ़िया दशहरी जो मार्केट दशहरी के, दशहरी आम है, उसका बराबर कोई टक्कर नहीं है। उसके बाद चौंसा का है बढ़िया, बम्बई का है, लेकिन बम्बई अपने पास है नहीं, काला बम्बई आता है ना। ज्यादातर बाजार में दशहरी की रहती, दशहरी जल्दी चालू हो जाता है, अगेती चालू हो जाता है दशहरी। दशहरी जब आता है उधर से मलियाबाद फैजाबाद से आता है, तो वो कई एक मतलब उत्तर भारत में दक्षिण भारत में सबकी तरफ जाता है दशहरी। आम का साइज वही करीब 250-300 ग्राम का, 400 ग्राम का हो जाना चाहिए दशहरी का। बढ़िया दशहरी होता है तो करीब 400 ग्राम का हो जाता है, 500 ग्राम का हो जाता है दशहरी। और ये चौंसा है वो उससे ज्यादा वजन का हो जाता है, फजली तो करीब और ज्यादा वजन का हो जाता है। आम की खेती तो बढ़िया है, लेकिन इसमें जब रोग लगता है यही दिक्कत हो जाती है। रोग फिर बार बारे में दुकानदारों से जाते दवाई लेते जा करके, अब जैसे अब इसमें लसी जैसा चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है उसमें लगा हुआ है, तो उस पर जब भी तो स्प्रे कर रहे थे बाग में, तो चिपचिपा जब पदार्थ हो जाए तो ये डंठल पे पहुंच जाता है, तो ये डंठल को कमजोर करता है, आम टपक जाता है अपने आप। आम की खेती बढ़िया है, अच्छा है, और मुनाफा भी अच्छा है अगर मार्केट में सही बिक जाए, लेकिन भाव मिल जाए बस। सबके सबसे बड़ी चीज है भाव राजा होता है। इस बार तो अच्छा रेट रहेगा, इस बार यहाँ मतलब कहीं क्षेत्र में है नहीं आम ज्यादा नहीं है।
3: नमस्ते किसान भाइयों, मैं अलीराजपुर जिले के गांव छटौड़ मध्य प्रदेश में जो आता है वहाँ से मैं किसान युवराज सिंह। मैं आम की खेती किसानी करता हूँ, और मैं विशेष करके केसर के आम ज्यादा लगाए हुए मैंने, जिसमें मेरे 5,000 पेड़ केसर के हैं। केसर का अभी प्रोडक्शन चालू हो गया है, अभी पकना चालू हो गया है। मेरा आम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सभी दूर जा रहा है। केसर का नाम इसलिए केसर पड़ा कि उसको काटने पे जब पकता है तो उसमें केसर की खुशबू आती है, और हमारा केसर की डिमांड बहुत है आसपास के जिलों में, आसपास के राज्यों में यहाँ से केसर जाता है, और बहुत अच्छा उसका कीमत मिलता है। मैं उसके पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, कोई केमिकल नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं, इसलिए हमारे केसर की डिमांड बहुत ज्यादा है। और केसर के आम के साथ में मैंने नूरजहां का पौधा भी लगाया है, जो 4 किलो का फल होता है, 4 किलो की साइज होती है, और हापुस, लंगड़ा, दशहरी उनके भी मैंने बाग लगाए हुए हैं। और मैंने पूसा की जो नवीनतम वेरायटियां हैं, पूसा संदान दिल्ली, वहां से मैंने ला के पिछले साल पूसा की 8 किस्में जो लगाई है, उसमें सबसे बढ़िया अरुणिमा दीपशिखा, श्रेष्ठा, लालिमा, मनोहारी, पीताम्बरी और प्रतिभा। ये भी वेरायटी बहुत अच्छी चल रही है।

0: मेरे वहाँ पे पूछा कि अरुणिमा बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस आ रहा है यहाँ पे, आम के लिए हमारा जिला सबसे अच्छा उपयुक्त जिला है, जहाँ की हमारी जलवायु और हमारी मिट्टी आम के लिए बहुत उपयुक्त है। केसर मैंने 20x20 की दूरी में लगाया, 20 फीट लाइन से लाइन की दूरी और 20 फीट पौधे से पौधे की दूरी पे, उसका तीसरे साल चौथे साल से प्रोडक्शन चालू हो जाता है और उसकी कीमत हमारे वहाँ पे लगभग 120 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक जा रहा है। और केसर में मैंने एक और इस बार नवीनतम प्रयोग किया है, केसर में मैंने एक गोल्डन केसर बनाया है, गोल्डन कलर का केसर निकलता है जिसकी कीमत मार्केट में 200 रुपये किलो तक जा रही है। और उसकी खासियत है कि उसमें सनलाइट सूर्य की रोशनी नहीं लगती है, जिसके कारण उसका कलर बहुत अच्छा निखरता है और मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है। और मैंने अभी उसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी में भी लगाया है, जिसमें उसकी दूरी कम कर दी है, पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट, और उसमें भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है, जिससे हमें पर एकड़ में पौधों की संख्या बढ़ जाएगी और उससे हमें उत्पादन की मात्रा भी ज्यादा मिलेगी। तीसरे साल से केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक तरह से पकाते हैं, झाड़ पे ही पका के उसको सेल करते हैं, इसलिए हमारा मार्केट चलेगा 15 जुलाई तक चलेगा। लगभग 8 से 10 लाख का केसर बुकिंग पड़ा हुआ है।
1: आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यही संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: वन्ना बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे किसी समाचार दर्शन के अंतर्गत आम की बागवानी, और इनसे हमारी जो किसान भाई हैं उनसे अनुभव को साझा किया और हमारे सामने प्रस्तुत किया संध्या गुप्ता ने।
3: जी हाँ, हमारे किसान भाइयों ने भी ये सुना होगा और इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे कि उन्हें अब अपनी आम की फसल को कहाँ और किस तरह से बाहर भेजना है, किस तरह से उसको उगाना है या किस तरह मंडी में भेजना है, इन सब बातों को संध्या जी ने साझा किया हम लोगों से। तो अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं ये उपदेश सुभाष चंद
2: प्रकाश चंद
3: प्रकाश चंद से।

0: और अभी हमारे भाई सुन रहे थे सुभाष चंद्र और प्रकाश चंद की आवाज़ में ये उपदेश, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। और सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर, संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:30 और ठीक 15 सेकेंड्स हुए हैं और हमारे श्रोता जानते हैं ये समय होता है गज़ल और कव्वाली के कार्यक्रम का। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं जगजीत सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में इस गज़ल के संग।

0: और इसी के साथ गजल कव्वाली के इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने की दीप्ति को इजाजत दीजिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और पंचायती राज मंत्री राजीव

0: रंजन सिंह ने 16वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4 लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। कुल 9,585 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत उन ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो BS4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वो उन्हें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सकें। इस परियोजना को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 साल की इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घटना के फौरन बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण CATS एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तेजी से मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया। 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही सभी एजेंसियां दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अधिकारी सभी संबंधित दस्तावेज जुटा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत के पास वैध NOC थी या नहीं।
3: कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है, सब पे कार्रवाई हो रही है।
2: दिल्ली अग्निशमन सेवा के जनसंपर्क अधिकारी AK मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस इमारत में आग लगी है वह अंदर से पूरा पैक है।
4: सामने की तरफ फसाद लगा हुआ था और जितनी भी ओपनिंग बिल्डिंग के अंदर थी वो सारी सील। इस तरह की जो बिल्डिंग होती है दे एक्ट एज ए चिमनी, तो इसमें जब भी कभी फायर एक्सीडेंट होगा तो हीट और स्मोक बहुत तेजी से सारी फ्लोर पर फैल जाता है, जिससे कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिलता।
2: दिल्ली सरकार ने कहा है कि सरकार त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर जनसेवा सदन पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने का अहम मंच है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.

0: .in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं या पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: दिल्ली नगर निगम MCD ने आज जंगपुरा और डिफेंस कॉलोनी अंडरपास क्षेत्रों में चल रहे नागरिक सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सफाई और व्यापक स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा भी की।
2: इस दौरान MCD की जमीन पर अतिक्रमण का भी निरीक्षण किया गया और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हटाने के आवश्यक निर्देश जारी किए गए। नगर निगम ने क्षेत्र में भीड़ कम करने और यातायात की सुगमता बढ़ाने के लिए सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों की प्रगति का आकलन किया। वहीं निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए विकसित की जा रही वर्षा जल संचयन संरचना की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने क्षेत्र में कचरा और निर्माण मलबा फेंकने से रोक के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे बन रही सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। निगम ने लाजपत नगर में चल रहे पार्क पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की और सभी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के माध्यम से राशन व्यवस्था को लेकर कुछ अधूरी और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में भी जनता को हमेशा राशन मिलता रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस व्यवस्था में ये फायदा है कि अगर लोग 2-3 महीने तक भी राशन नहीं ले पाते हैं तो वो राशन अगले महीने की पात्रता में जुड़ जाएगा और लोग उसे बाद में ले सकेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक प्रोग्रामेबल डिजिटल व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इसे अधिकृत राशन दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कोई दूसरी वस्तु नहीं खरीदी जा सकेगी और न ही राशि किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो सकेगी। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस महिला आरोपी के पास से 216 ग्राम मादक पदार्थ और 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। ये बरामदगी दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और सक्रिय पुलिसिंग तथा निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से जन सुरक्षा बनाए रखने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई मादक पदार्थ निरोधी दस्ते ने सुल्तानपुरी से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 16वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास एक विकसित भारत की नींव है। आधुनिक शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए श्री सिंह ने पंचायत प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरणों और नवीन समाधानों को अधिक अपनाने

0: आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते, और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
0: दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में एनपीए 2025 की शेष श्रेणियों को शामिल किया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 6 स्नातकोत्तर और 4 PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल ई काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 8 जून तक संस्थान की वेबसाइट www.iimc.admissions.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। पहली सीट आवंटन की सूची 9 जून को जारी की जाएगी। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली में आज सुबह के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। हेलो, सलाम, नमस्ते। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बार फिर आपका फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका। और आज के गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड में आपके साथ रहूंगी मैं, आपकी अपनी दीप्ति। शुरू करेंगे एकदम शुरू से, लेकिन सबसे पहले एक किक स्टार्ट विद द कप ऑफ कॉफी। व्हाट से

हाँ जी, साथ हो आपका तो बस हमारे लिए क्या, हमें तो बस एक सिंपल सी कॉफी ही किक दे देती है। और अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है विद अ किक ऑफ 1 कप सिंपल सी कॉफी। तो हम और आप तैयार हैं टू एंजॉय द रोलर कोस्टर राइड ऑफ गीत मालिका। तो श्रोताओं, आज के गीत मालिका में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं हिंदी फिल्मों के कुछ ऐसे गीत

जिन्होंने न जाने कितनों को चलना, संभलना और आगे बढ़ना सिखाया। आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे। याद है आपको आपके बचपन की पहली साइकिल? वो ख्वाब, वो गुनगुनाते से गीत, ऐसा लगता था ना साइकिल पर नहीं हम तो पायलट बन गए, हम उड़ा रहे हैं हवाई जहाज। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आज भी आती है। एक्चुअली क्या है ना, साइकिल एक ऐसा पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्ट है जो कि ना तो प्रदूषण फैलाती है और ना ही पेट्रोल मांगती है, और इसीलिए दे जाती है ढेर सारी ताकत और बहुत प्यारी प्यारी मुस्कान।

दोस्तों, साइकिल सिर्फ दो पहियों का जरिया नहीं है, बल्कि यादों, आज़ादी और सेहत का ना खूबसूरत सा मेल है। बचपन की गलियों से लेकर आज के फिटनेस ट्रैक तक, साइकिल हर दौर में हमारे साथ रही है। और इसीलिए आज का दिन और आज का गीत मालिका कार्यक्रम हम समर्पित

बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल 3 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। 2018 में इसे आधिकारिक मान्यता मिली ताकि लोगों को साइकिल के फायदों और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। वैसे आप में से कितनों को अपने बचपन की वो मेमोरी याद है जिसमें डाकिया आया करता था डाक लेकर साइकिल पर?

और बाइसिकल की फ़ायदों की अगर बात करें तो साइकिल चलाना ना सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है, ये आपके हार्ट को भी हेल्दी रखती है। प्रदूषण तो ऑफ कोर्स कम करती ही है, लेकिन ट्रैफिक का बोझ भी कम करती है। और सबसे बड़ी बात, साइकिल चलाने से मन का बोझ बहुत हल्का होता है। याद है जब बचपन में पहली बार बिना सहारे के साइकिल चलाई थी तो जो खुशी मिली थी, आज भी वो खुशी अलग ही है। कितनी भी कार हो, किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप सफ़र कर ले, लेकिन वो खुशी जो आपने पहली बार बगैर किसी सहारे के साइड व्हील्स हटा करके साइकिल चलाने में पाई थी ना, वो खुशी दोबारा पाना, वो बचपन के दिन दोबारा लाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक काम हम लोग कर सकते हैं।

और जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हम उनको याद दिलाते चले कि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। कार्यक्रम चल रहा है गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड को आप एंजॉय कर रहे हैं विद योर वेरी ओन दीप्ति। और आज आप और हम मिलकर के मना रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो एक बार फिर से चलिए पुकारते हैं पुराने दिनों को साइकिल पर।

और दोस्तों सच कहें ना तो साइकिल का रिश्ता सिर्फ सेहत से नहीं बल्कि एहसासों से भी है। वो पहली बार बिना सहारे के चलाना, फिर गिरना, फिर उठ जाना, कहीं किसी ने देखा तो नहीं। दोस्तों के साथ रेस लगाना और ये सब यादें शायद हम कभी नहीं भूलेंगे। आज जब दुनिया तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तब भी साइकिल हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि प्रोग्रेस हमेशा स्पीड से नहीं बल्कि बैलेंस से आती है।

दोस्तों, क्यों ना आज इस खास दिन पर कुछ देर के लिए मोबाइल स्क्रीन से नज़र हटाकर पुरानी यादों की सवारी कीजिए। अपनी साइकिल उठाइए, थोड़ा पैडल मारिए और महसूस कीजिए हवा का वो झोंका जो आज भी बचपन की तरह मुस्कुराना सिखाता है।

दोस्तों, यूं तो आपसे करने को बहुत सारी बातें हैं, सुनवाने को बहुत सारे गीत भी हैं जो कि खास साइकिल को फ्रेम में रखकर फिल्माए गए हैं। लेकिन क्या करें, हमारे स्टूडियो की घड़ी ने भी ना हमारे बचपन की साइकिल की तरह स्पीड ले ली है और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का। तो फिलहाल के लिए गीत मालिका प्रोग्राम की रोलर कोस्टर राइड को लगाते हैं ब्रेक। इजाज़त दीजिए अपनी साथी अपनी मितवा दीप्ति को। मिलूंगी फिर यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब

0: 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे, जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ

0: मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी

0: अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्युआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nods to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize

0: Iranian ballistic missiles and drones struck US military bases across Kuwait and Bahrain in the early hours today. A drone strike broke through Kuwait's air defenses and hit the main passenger terminal at Kuwait International Airport, killing one Indian national and injuring 63 others. Injuries ranged from blast wounds and amputations to head trauma and cerebral hemorrhages. The Indian embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Keralam and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands, and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Aggarde defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritobrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal and West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीताब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंगयांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मंसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाक़े के तहत रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असम्बली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: रीता ब्रता, जो CPIM के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत ज़रूरी 2/3 से ज़्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए रीताब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है, जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीताब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साह को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहिरीन इस वाक़े को जब से वो इख्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर DK शिवकुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर बी परमेश्वर, जिन्होंने सिद्धरमैया काबीना में दाखिली उमूर के फराइज अंजाम दिए थे, उन्हें नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। 12 कानून साजों ने भी काबीना वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सुबह मालवीय नगर के एक होटल में भयानक आग लगने के वाक़े में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया। जनूबी दिल्ली के DCP अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्ज़ाम के तहत FIR दर्ज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: दिल्ली पुलिस ने जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाक़े में गैर इरादतन कत्ल के इल्ज़ाम के तहत FIR दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाक़े की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि DM, DCP और MCD के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका क़यादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने

0: आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। तीन महलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और तीन महलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और जवानों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़िश्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी इस्लाहात के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। टैक्स निज़ाम को सहल बनाया, बैंक कार्य को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निज़ाम ने इस तबके के माली तहफ़ुज़ को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा जीएसटी में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनरिक दवाएं 50 से 80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
3: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दैरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज़, तजारत व सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्ज़ान सेहत, नकलो हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान

बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंगयांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीताब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मानसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो

0: इंफॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि तो फसल जो है पानी से ज़्यादा जरूरी है, तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी की जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे बहुत फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेढ़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पे हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलके क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीएआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के 2 दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि
1: जी
2: नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल
2: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
0: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, इसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा पूर्ण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पैदी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी,
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए, यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पर बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहाँ पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहाँ पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है
1: जी
2: और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
2: करती है,
1: बिल्कुल
2: खासकर
1: डबास जी,
2: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
2: फलों
1: कह
2: में,
1: रहे हैं आप
2: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं।
1: जी।
2: और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारे सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उन प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो कमी देखी जाती है, हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का जो सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एलिनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून

0: के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं, और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा, जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी एक कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है, और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है, और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज़्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है, और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका तो विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
2: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है, और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और
1: डबा
2: साथ
1: जी,
2: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली

0: बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह की जो घटना है जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये घटना इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी, डॉक्टर डबास साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियाँ होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीज़ें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी कृषि का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज़्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ बनाई हैं जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है, ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले, और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग-अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल, मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके कुमार शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जाँच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेगी। आस पास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही है जिसमे राई बराबर भी होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसमें आज हमने सुने गढ़वाली गीत महेश्वरी प्रकाश जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज हम सुनेंगे राग जोग में वॉयलिन वादन। कलाकार हैं सरवर हसन।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज हमने सुना राग जोग। वॉयलिन वादन कर रहे थे सरवर हसन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के

एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: visiting India will soon be able to use their domestic banking and digital payment applications to scan millions of UPI QR codes throughout India. Union Minister for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, today chaired a meeting of the National Council for Transgender Persons in New Delhi. Discussions were held on various aspects of welfare and employment, including enhancing awareness, promoting economic empowerment, strengthening financial inclusion, improving access to essential services, and ensuring effective grievance redressal mechanisms. And in badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Garde defeated Chinese Taipeis Yang Huxuan and Hu Lingfang. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आइए चलते हैं आपके सबसे पहले फरमाइशी गीत की तरफ।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर की तरफ से। आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी का, जिन्होंने अपनी अगली फरमाइश भेजी है। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओ, चलते हैं अगले ईमेल की तरफ, जो कि आया है हमारे पास बीड शहर महाराष्ट्र से। नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवाजी की तरफ से। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म कभी कभी से, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की। आइए चलते हैं अगले मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत की तरफ से, और साधिया भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव टोरोवाल नवा शहर पंजाब से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत

स्वागत है कार्यक्रम में। फजिल का पंजाब भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लड्डी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा और झुमिका झुमका गिरा गाना सुनने की आपने फरमाइश भेजी है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। झुकने वाले इंसान को चारों लोकों में जीत मिलती है। पर्वत हमेशा अकड़ कर ही रहता है, लेकिन झुक कर चलने वाला उस पर आसानी से चढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा सतीश अनेजा जी आपने। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ हम चल रहे हैं, जो आया है नोहर राजस्थान से। नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ चलते हैं आपके अगले फरमाइशी गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म आज से। आवाज़ थी जगजीत सिंह जी की, आप सभी को पता ही होगा। चलते हैं अगले मैसेजेस की तरफ जो हमारे पास आए हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके, श्रीमती नंदा बोडके, हनुमान बोडके, अंबेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, ग्राम सालियाखेड़ी, जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ ही में कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सच्चा सिंह पाठक जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान तायडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरेकर हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, राम देवरा से दिनेश चौहान जो कि नेत्रहीन है, डांगरी से बाबू राम जयपाल जो कि दिव्यांग हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा जो कि रेडियो दीवाना है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।

मैसेज हमारे पास आया है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का, जो कि हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, जिला मोतिहारी बिहार से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। आइए चलते हैं आपके अगले फरमाइशी गीत की तरफ।

श्रोताओं, अगला मैसेज हमारे पास आया है रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा का। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी के साथ हमारे पास जलालाबाद वेस्ट से मैसेज आया है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, माही विश्वकर्मा, संगीता विश्वकर्मा, ग्राम साल्याखेड़ी, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जोही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसहेड़ा बॉर्डर, नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली हमारे साथ शामिल हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है नरिंदर्क सुथार जी का, नोहर राजस्थान से, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लिखते हैं कि नमस्कार दीदी, प्रोग्राम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्रोग्राम सुनते रहिए। नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे हमारे साथ शामिल हैं। खंडवा से श्यामाबाई रायकवार हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मेंडी शर्मा हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता जी, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता जी के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी

का बहुत बहुत स्वागत है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी जी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास कस्बा गुन्नौर यूपी से आया है। फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म मिस्टर इंडिया से, आवाजें थी किशोर कुमार और साथियों की। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है शास्त्री नगर बीड शहर से। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदाफारजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापासहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशाह, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, लगातार आप बने हुए हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पंवार, अलमास बानो पंवार, मोइन छोटू पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन जी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, लेकिन एक और मैसेज मैं पढ़ देती हूँ जो कि आया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, बसंत कुमार, रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, बड़ी बहू, नन्हे मुन्ने, अनविका बेबी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, अगला मैसेज हमारे पास आया है पटेल नगर मलौट से। डॉक्टर रामेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया जो कि गुड्डू के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगली फरमाइश हमारे पास आई है रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बनो, एलिजा नायब का जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगली मैसेज की तरफ मैं बढ़ रही हूँ जो कि आया है गांव भाणा ब्राह्मणनान जींद हरियाणा से। श्रोता हैं सावित्री, बालकिशन, रोशनी, जिगर, पूजा, मुस्कान, मालू, राजा, सुमन, लक्षु, ज्योति और समस्त शर्मा परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, मोहम्मद रफीक पंवार जी का जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए। बाजार फैल शैगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश मुहाल, मोहम्मद रिजवान मुहाल हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आया है कल्लनगंज खंडवा से, कौसर बी पंवार, हसीना बी पंवार, हिना सईद खोकर, अलमास बानो पंवार, सफिया अरहान खोकर, बेबी आयत फातिमा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि आया है दादाजी धुनी वाले मार्ग खंडवा से, मोहम्मद हसनैन हस्सू बाबा, मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल जो कि हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गांव भाणा ब्राह्मण नान जींद हरियाणा से श्रोता है सावित्री, बालकिशन, रोशनी, जिगर, पूजा, मुस्कान, मालू, राजा, सुमन, लक्षु, ज्योति, समस्त शर्मा परिवार हमारे कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे योगासन के वैश्विक खेल मानचित्र पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के वांछित परिणाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक आकांक्षी अनुसूचित जाति समुदायों तक पहुंचने के लिए PM अजय योजना का दायरा विस्तारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत

ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 12:11 और ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत। जी हाँ, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम शुरू का सफ़रनामा। जी हाँ, प्रतिष्ठित देशभक्त कवि लेखक एवं गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी पर आधारित विशेष प्रस्तुति। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र ललित कुमार। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस शख्सियत की यादों, शब्दों, सुरों की दुनिया में जिसने अपनी लेखनी से देशभक्ति को स्वर दिए, प्रेम को शब्द दिए और संवेदनाओं को अमर बना दिया। कुछ लोग इस दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन उनकी रचनाएं समय के पन्नों पर हमेशा जीवित रहती है। ऐसे ही एक अमर रचनाकार थे इंद्रजीत सिंह तुलसी। कहते हैं कि लफ्ज अगर दिल से निकले तो असर रखते हैं, वरना किताबों में तो हजारों सफर रहते हैं। कुछ लोग उम्र से नहीं, अपने कर्मों से जिए जाते हैं और जाते जाते भी दुनिया के दिलों पर घर कर जाते हैं। यहाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त गीतकार, लेखक और ना जाने कितनी विधाओं के एक्सपर्ट हैं। वाकई आज सबसे पहले एक गीत सुनवा रहे हैं, उनका लिखा हुआ शानदार बेहतरीन गीत। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम शुरू का सफरनामा की पहली और शानदार खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोर से, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। लता मंगेशकर और मुकेश और कोरस की आवाज़ में शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचना। शोर फिल्म सन 1972 प्रदर्शित फिल्म रही। गीतकार राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीत से सजाया था इस खूबसूरत गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों,

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन और खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही प्यारे गीत, जी हाँ, फिल्म शोर से। साथियों, इंद्रजीत सिंह तुलसी हिंदी साहित्य के देशभक्ति काव्य और फिल्म गीतों की दुनिया का एक सम्मानित नाम रहे हैं। उन्होंने कविता, गीत, लेखन और फिल्म संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और मानवीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, उनकी लेखनी में देश की मिट्टी की खुशबू थी, शब्दों में आत्मीयता और भावनाओं में गहराई थी। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ, ले जाएंगे ले जाएंगे, दुलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चोर मचाए शोर। जी हाँ, बहुत ही सुपर डुपर हिट गीत रहा है किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। चोर मचाए शोर फिल्म

1973 प्रदर्शित फिल्म रही और गीतकार वही, जी हाँ, इंद्रजीत सिंह तुलसी, और संगीत रविंद्र जैन का था। साथियों, और भी आगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम बता देते हैं। हालांकि इंद्रजीत सिंह तुलसी जी बेहद फेमस, परिचित और बेहतरीन, ख़ास तौर से उनकी जो शैली की हम बात करें तो वाकई उनके प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो सच में इंद्रजीत सिंह तुलसी का जन्म पंजाब की पावन धरती पर हुआ। बचपन से ही साहित्य और कविता के प्रति गहरा लगाव था। विद्यालयी जीवन में ही वे कविता लिखने लगे थे। देशभक्ति और सामाजिक चेतना उनके लेखन की प्रमुख विशेषता रही। उनके परिवार ने भी उन्हें साहित्यिक वातावरण प्रदान किया, जिससे उनकी रचनात्मक प्रतिभा निरंतर निखरती हुई हमेशा रही और हमेशा निखरती गई। साथियों, एक शेर के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो मिट्टी की खुशबू को दो शब्दों में ढाल देते हैं, जो मिट्टी की खुशबू को दो शब्दों में ढाल देते हैं, वो साधारण इंसान नहीं, इतिहास बना देते हैं। कलम जब वतन के लिए चलती है तो पीढ़ियों के दिलों में उजाला कर जाती है ना? आइए सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत गीत, संगीतबद्ध के, ओ माफ कीजिएगा, गीतकार रहे हैं तुलसी, इंद्रजीत सिंह तुलसी। एक फेमस नाम रहा है, लेकिन बहुत ही कम श्रोता साथी जानते हैं। उनके ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम नहीं हुए हैं किसी भी आकाशवाणी में, लेकिन आज प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर, जी हाँ, लिरिसिस्ट यानी कि गीतकार इंद्रजीत सिंह पर। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत बेहतरीन रचना।

0: पिला दो जी पानी।
1: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन पंजाबी। जी हाँ, अगर हम इंद्रजीत सिंह तुलसी जी के परिचय की बात करें तो वाकई बहुत ही सुंदर परिचय है उनका, और क्या कहें। उनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। इंद्रजीत सिंह तुलसी, उनका जन्म 2 अप्रैल 1926 को हुआ था। जन्मस्थान रहा काना कच्छा, यानी कि तत्कालीन लाहौर ज़िला, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान यानी कि पाकिस्तान में। पिता का नाम सरदार मूल सिंह और माता सरदारनी बसंत कौर और पत्नी सुरेंद्र कौर। भाषाएं की अगर बात करें तो वाकई बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। व्यवसाय की बात करें तो कवि रहे हैं, लेखक और देशभक्त रचनाकार, फिल्म गीतकार। और साथियों, जब इनका निधन हुआ 11 मई 1984 मुंबई में। निधन का कारण केवल हृदयघात था। विशेष बात कहा जाता है कि वे मंच पर कविता पाठ करते हुए ही इस दुनिया से विदा हुए थे, और जैसे वे स्वयं चाहते थे। या दोस्तों, और भी बेहद खूबसूरत जानकारियां हैं, और फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं हमारे आप सभी साथियों के लिए। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत फिल्म शोर से एक बार फिर से अभी आप सुन रहे हैं, और वाकई बहुत ही प्यारा गीत रहा जीवन चलने का नाम। जी हाँ, फिल्म शोर जो 1972 प्रदर्शित फिल्म रही, वाकई बहुत ही शानदार फिल्म रही। मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्यामा, और साथ में हैं चितलकर। जी हाँ दोस्तों, चित्तर एंड और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इन सभी साथियों ने वाकई बहुत ही सुंदर काम किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, योगदान तो वाकई बहुत ही ज़्यादा रहा है। और ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत हैं, गीतकार हैं हमारे साथी। कौन से वाले? जी हाँ, वही राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी, और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना, लेकिन उससे पहले कुछ जज्बात बता देते हैं कि हमारी इंद्रजीत सिंह तुलसी हिंदी साहित्य, देशभक्ति, काव्य और हिंदी गीत के दुनिया का एक सम्मानित नाम रहे हैं। उन्होंने कविता, गीत, लेखन, फिल्म, संगीत माध्यम से भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और मानवीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। जी हाँ, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें उनकी मिट्टी की खुशबू की, तो वाकई बहुत ही बेहद खूबसूरत, हालांकि गीत भी उन्होंने गाए हैं और राष्ट्र कवि भी रहे हैं, और वाकई इतनी सारी विधाओं के साथ हमारे जो इंद्रजीत सिंह जी थे, तो वाकई बहुत ही कमाल और बेहतरीन इंसान अपने जीवन में रहे। उन्होंने अनेक फिल्मों के लिए गीत लिखे, और अपने सरल, भावपूर्ण तथा अर्थपूर्ण शब्दों से श्रोताओं का दिल जीत लिया। उनकी रचनाओं में भारतीयता की गहरी छाप दिखाई देती है। एक दिलचस्प किस्सा कहा जाता है कि तुलसी जी किसी भी गीत को लिखने से पहले उसके भाव को आत्मसात कर लेते थे। वे केवल गीत नहीं लिखते थे, बल्कि पात्रों की भावनाओं को जीते थे। इसी कारण उनके गीत सीधे दिल तक पहुंचते थे। जी हाँ दोस्तों, वाकई कभी सुरों में ढल गया तो कभी शब्दों में उतर गया, कभी सुरों में ढल गया तो कभी शब्दों में उतर गया। एक एहसास था जो गीत बनकर बिखर गया। कलम ने जब दिल की आवाज सुनी तो हर मिसरा सुनहरा मुकद्दर बन गया। जी हाँ दोस्तों, वाकई वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत जज्बात इंद्रजीत सिंह तुलसी जी की। जी हाँ, पहचान केवल फिल्मी गीतकार की नहीं थी उनकी। वे एक प्रखर देशभक्त कवि थे, और उनकी कविताओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण, शहीदों के प्रति सम्मान और देश के गौरव की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। कहते हैं ना, वतन की राह में जिसने कलम को दीप बनाया, वतन की राह में जिसने कलम को दीप बनाया, उसने हर अंधेरे में उजालों को सजाया। नाम चाहे किताबों में हो या दिलों में, सच्चे रचनाकार के हर युग में सम्मान पाया। जी हाँ वाकई, सुनवाते हैं एक और बेहतरीन गीत रचना,

जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम फेवरेट, बहुत ही सुंदर, माता की भेंट के तरीके से एक अलग लय में खूबसूरत गीत रहा, बहुत ही शानदार पंजाबी सॉन्ग, वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। जी हाँ, और ये गीत वाकई वाकई अपने आप में बहुत ही अनमोल और बेहद खूबसूरत गीत रहा है। इस हर हर हर टाइम जब भी आप सुनेंगे इस गीत को, वाकई आपके दिल में रूह में बस जाती हैं ऐसी बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, और ये वाकई बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो फिल्म बॉबी से ये शानदार बेहतरीन रचना रही, और हालांकि आवाज़ नरेंद्र चंचल जी की थी और संगीत से सजाया था इस शानदार गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बढ़ते हैं और उनकी जानकारी की ओर। जी हाँ साथियों, परिवार और व्यक्तित्व की बात अगर हम करें, तुलसी जी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और विनम्र था। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने सादगी नहीं छोड़ी। परिवार, मित्रों और साहित्यकारों के बीच में वे अपने सहज व्यवहार के लिए जाने जाते थे। एक और अनसुना प्रसंग की हम बात करें तो एक बार हुआ क्या कि एक युवा कवि ने उनसे पूछा कि अच्छा गीत कैसे लिखा जाता है। तो तुलसी जी ने मुस्कुराकर कहा, गीत लिखने से पहले इंसान बनो, गीत लिखने से पहले इंसान बनो, क्योंकि दिल से निकले शब्द ही दिल तक पहुंचते हैं। वाह क्या बात है, कितना सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। वाकई यही विचार उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है ना साथियों। उनकी रचनाओं की विशेषता सरल भाषा, गहरी भावनाएं, भारतीय संस्कृति का सम्मान, देशभक्ति का स्वर, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, इन्हीं गुणों ने उन्हें श्रोताओं और पाठकों के बीच लोकप्रिय बनाया। भावपूर्ण शायरी की अगर हम बात करें तो वाकई बहुत ही शानदार, अलग अलग सुंदर खूबसूरत शायरी लिखी हैं। कुछ नाम समय की धूल में खो जाते हैं, कुछ नाम समय की धूल में खो जाते हैं, कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर सो जाते हैं, लेकिन जो दिलों की धड़कन बन जाए वो कभी नहीं मरते, अमर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाकई

समय में उनकी जो विरासत थी, तो विरासत समय का चक्र चलता रहा और एक दिन यह महान रचनाकार इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उनकी कविताएं, गीत और विचार आज भी जीवित हैं। उनकी विरासत नई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ जी हाँ साथियों, वाकई फ़कीरा चल चला चल, फ़कीरा चल चला चल, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा और बेहद खूबसूरत गीत, ऑल टाइम फेवरेट ये गीत रहा है हमेशा फ़कीरा फिल्म से ही। वाकई बहुत ही सुंदर रचना, और बता देते हैं फ़कीरा चल चला चल चल, फ़कीरा फिल्म वाकई महेंद्र कपूर साहब की बेहतरीन आवाज़। फ़कीरा फिल्म 1975 प्रदर्शित फिल्म रही है, वाकई बहुत ही खूबसूरत लाजवाब रचना। साथियों, बस समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी एक गीत के साथ छोड़े जाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ थोड़ी सी जानकारी और बता देते हैं। साथियों, आज इस तीन जी हाँ आज इस बेहतरीन खूबसूरत जो रचनाएं, जो जानकारियों के साथ जो कार्यक्रम हुआ था, तो वाकई देशभक्ति का स्वर दिया। और इंद्रजीत सिंह तुलसी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लेखनी आज भी हमारे दिलों में जीवित है। विदा लेने से पहले कुछ पंक्तियां समापन कर रहे हैं, और सफर खत्म हुआ है मगर कहानी नहीं। ये वो नाम है जिसकी कोई निशानी नहीं, हर गीत में, हर एहसास में, हर धड़कन में आज भी जिंदा है वो। ये कोई पुरानी बात नहीं, जो शब्दों से रोशनी फैला चले गए, जो शब्दों से रोशनी फैला कर चले गए, वो आज भी सितारों की तरह चमकते हैं। हम उन्हें याद नहीं करते साहब, हम उन्हें याद नहीं करते साहब, हम तो उन्हें हर पल महसूस करते हैं। एक गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं, और इसी बेहतरीन खूबसूरत गीत के साथ आज का स्वर सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

10 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत और बेहद लाजवाब कार्यक्रम। जी हाँ, कार्यक्रम गीत सुनहरे। जी हाँ दोस्तों, गीत सुनहरे, ऐसे गीत जो हमेशा हमेशा सुने जाते हैं, हर पीढ़ी के श्रोता साथी सुनते हैं, और ख़ासतौर से जो पुरानी जनरेशन रही है, वाकई एक से एक सुंदर बेहतरीन गीतकार, अदाकार, संगीतकार, और आज इस फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ है, एक से एक बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतकार भी रहे हैं, संगीतकार भी रहे हैं, अदाकार भी रहे हैं। वाकई जब आप इन गीतों को सुनेंगे तो आप खो जाएंगे, ऐसी रचनाएं जो रूह में बस जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम शुरू का, माफ़ कीजिएगा, गीत सुनहरे का। गोल्डन एरा फिल्म संगीत, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो साथियों, आज सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम के सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना से शुरुआत कर रहे हैं, और इस खूबसूरत कार्यक्रम यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं ये आज का सुंदर बेहतरीन खूबसूरत पहला शानदार गीत।

देखो ये बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा नाता इतना ही है कि तुम गुरु हो, मैं चेली हूँ।

जी हाँ दोस्तों, वाकई मन पाचे भागे, वाकई बहुत ही सीरियस यानी कि गंभीर, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। मन भागे, वाकई क्या कहें इस गीत के बारे में। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं होती हैं, वाकई बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, अनमोल गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। आइए बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं आपको। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहद खूबसूरत गीत रचना।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं

पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी जालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

दोस्तों, वाकई हमने तो जान गंवाई रे आए ने अब तक बालों में। बाकी बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, काहे को देर लगाई रे। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन रचनाएं आज आप सुन रहे हैं, काहे को देर लगाएं लगाई रे, फिल्म दाग से लता मंगेशकर की बेहतरीन खूबसूरत आवाज में शानदार रचना। ये फिल्म दाग 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत हसरत जयपुरी के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। आइए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत रचना की ओर। ये रचना आ रही है बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत गीत रचना है, तू रात खड़ी थी छत पे, फिल्म हिमालय की गोद में, जो 1965 प्रदर्शित फिल्म रही। रफी मोहम्मद रफ़ी साहब और उषा टिमोथी की आवाज़ में और साथ में कोरस यानी कि साथियों की आवाज़ में शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचना। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन शानदार गीत।

0: क्या बात है, क्या मस्ती भरा खूबसूरत गीत। अभी आप सुन रहे थे वाकई लाजवाब बेहतरीन गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही शानदार रचना। जैसे कि इतने सारे गीत अभी आप सुन रहे थे, वाकई कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी जो पसंद है वाकई बहुत ही शानदार रही हैं, वाकई खूबसूरत भी है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, जी हाँ, फिल्म तीन देवियाँ जो 1965 प्रदर्शित फिल्म रही, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में शानदार रचना। गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और गीत और संगीत SD बर्मन साहब का। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

जी हाँ दोस्तों, सुनो सजना के आए दिन बहार के। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ,

वाकई बहुत ही कमाल और बेहतरीन रचना। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम बेहतरीन खूबसूरत गजल, जी हाँ, गीत सुनहरे के कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: जी हाँ साथियों, इन्हीं सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीतों के साथ आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 2 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACALEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों UPI QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ललित कुमार। तो आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही सुंदर, बेहतरीन और खूबसूरत गीत से। जी हाँ, आजकल इन दिनों कहीं ना कहीं शादियों का मौसम चल रहा है, शादियों की बातें कुछ अलग होती है, है ना। तो आज उनके प्यार की यानी कि यार की खूबसूरत शादी का दिन है, तो आइए सुनवाते हैं मेरे यार दी शादी है। जी हाँ, यार दी शादी, खूबसूरत लाजवाब गीत। आइए सुनते हैं ये शानदार, बेहतरीन खूबसूरत रचना, और इस खूबसूरत गीत को संगीत से नवाजा है नदीम श्रवण ने, और गीत राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। यार दी शादी फिल्म दोस्ती से है, सोनू निगम, अभिजीत, अलका याग्निक और सारिका कपूर की बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ में है। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की बेहतरीन खूबसूरत पहली सुंदर रचना।

0: छुटकी कहीं की। अपने आप को बहुत चालाक।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छुटकी मत कहा करो, अब मैं छुटकी नहीं हूँ।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम छुटकी नहीं रही।

रेशमा जवान हो गई, रेशमा जवान हो गई, रेशमा जवान हो।

0: जी हाँ साथियों, इन्हीं सुंदर खूबसूरत गीतों के साथ आज का गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी

0: मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for the domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, "This is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers."
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip to in Odisha. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said, today he will join the first World Yogasana Sports Championship 2026 virtually. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said, the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. United Kingdom Secretary of State for Foreign Commonwealth Affairs, Yvette Cooper, arrived in New Delhi on a two-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on the Prime Minister Narendra Modi today. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar this evening. The Ministry of External Affairs said her visit will provide an opportunity to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership. In a major political development in West Bengal, Ritu Brata Banerjee has been appointed as a leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. Delhi police said that the deceased include 9 Indian nationals and 12 foreign nationals. The police said a case has been registered and an investigation is underway. They further informed that Lovekish Bajaj, the owner of the building in which the fire broke out, has been detained. Meanwhile, Delhi Chief Minister's office said that the lapses that culminated in the tragic fire in the guest house will be examined with utmost seriousness and accountability will be fixed wherever it lies. The United Arab Emirates has expressed its solidarity with India following a deadly guest house fire in New Delhi that claimed several lives and left others injured. In a statement, the UAE Ministry of Foreign Affairs has conveyed its condolences to the families of the victims and reaffirmed its support for India in the aftermath of the tragedy. The newly sworn in Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has announced free bus passes for all students in his first cabinet decision. Briefing the media, the Chief Minister said students can register and obtain free passes. He also announced measures for employment generation for youth registered with employment exchanges, stating that the private sector will be encouraged to provide job opportunities. Additionally, the Chief Minister announced a grant of 2,000 crore rupees with the Greater Bangalore Authority to improve road infrastructure. National Payments Corporation of India has officially partnered with ACLEDA Bank to launch Unified Payments Interface UPI acceptance in Cambodia. The Ministry of Finance said that the first phase enables millions of Indian travellers to make seamless QR payments at over 4.5 million Cambodian merchants with a two-way corridor to follow. It said that the subsequent phases, the corridor will become fully bidirectional. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wing Hong Yang. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 3:10 और 10 सेकेंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम गीत और गजल का।

अब प्रस्तुत है भगवान मुर्गन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं। स्वर TM सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है NS चिदंबरम की रचना।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम में अभी आपने पी रामाचंद्रन द्वारा गाया राग मध्यमती सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून 2026 सुबह के 4:58 और 43 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: सुबह के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में रुकी विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार तथा लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृह मंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलानबतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। 4 दिन की प्रतियोगिता में भारत की ओर से पुरुष फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein
3: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnaw also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Orissa. Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi and one of the world's oldest living cities, is once again set to witness a historic international event. After successfully hosting G20 meetings, Varanasi will now host the second meeting of the BRICS Culture Working Group today and tomorrow. Representatives from 11 countries, including China, Brazil, Egypt, Ethiopia and Indonesia, will take part in this meeting. The meeting will bring together senior diplomats, policy makers, and cultural experts. A special exhibition of car

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपो थायरॉइडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती।

एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आए। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी

0: एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने उज्जयी प्राणायाम और वृक्षासन के बारे में जानकारी हासिल की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित राजेंद्र सिंह द्वारा गाया राग गुणकली।